0: against Tasman at 5. Rugby with shift 4. And in the NRL, the Warriors beat the Broncos last night in their second home of Brisbane. The Warriors women are away against the Tigers today. Kickoffs at 3:45.
1: Sports News.
2: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
3: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस।
4: सूचित किया जाता है कि अनुराधिका, डेविड, जेनेट और जोसेफ की मां तथा ज्वालापाल की पत्नी मेंगरी ओकलैंड की तरुण देवी ज्वाला और राधा की मृत्यु ओकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार सोमवार यानी कल दिन में 11 बजे ओकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप डेविड को 021-0434-283 पर कॉल कर सकते हैं। सूचित किया जाता है कि अनुराधिका, डेविड, जेनेट और जोसेफ की मां तथा ज्वालापाल की पत्नी मेंगरी ओकलैंड की तरुण देवी ज्वाला उर्फ राधा की मृत्यु ओकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार सोमवार यानी कल दिन में 11 बजे ओकलैंड इंग्लैंड इंडियन फ्यूनरल होम में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप डेविड को 021-0434-283 पर कॉल कर सकते हैं।
3: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
1: Playing Bollywood's biggest hits. Just chill.
4: क्या रहा बुला सलाम नमस्ते सस्त्रीय काल नमस्कारम केम छो। मैं हूं अभी आपके साथ में और आज लेकर आए हूं आपके लिए खास, जबकि 16th of August है तो जस्ट चिल का ये कारवा है जो आपके साथ में अभी से लेकर शाम 6 तक चलता रहेगा। आज के इस प्रोग्राम में खास आपके लिए, आप जो भी सुनना चाहेंगे, किसी भी गीत को आप सुनना चाहेंगे, 5599 पर आप हमारे साथ मैसेज करके हमारे पास में आप इसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कोई डेडिकेशंस है इसका भी आप जो तोड़े निकाल सकते हैं 5599 पर, और 0800-004-866 पर आप कॉल करके बातें भी कर सकते हैं। कुछ प्रमोशंस के बारे में भी बात होगी और इसके अलावा कुछ इधर उधर की बातें भी रहेंगी, कुछ अपनी कहेंगे, कुछ आपकी भी सुनेंगे। और आपको ये बता दें कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू बी kind to yourself। जी हाँ, अक्सर आप दूसरों के लिए, दूसरों के प्रति kindness दिखाते हैं, लेकिन खुद के लिए जब खुद की बात आती है तो आप कहीं ना कहीं इसमें पीछे रह जाते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद को भी थोड़ा सा kindness शो करें, ताकि आप जब भी अपने आप को देखें, आप हमेशा आप खुद के लिए सेल्फ क्रिटिक बिगेस्ट होते हैं, खुद को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, खुद के लिए टफ टफ डेडलाइंस भी सेट करते रहते हैं। इसके लिए बदले में आपको खुद को थोड़ा सा प्यार देना चाहिए, पेम्पर योरसेल्फ, और इसके साथ में खुद को भी थोड़ा सा काइंडनेस शो करें। इसी के साथ में आज का जो प्रोग्राम है शुरुआत करते हैं इसको, और जो पहला गाना है इसको आपको के आवाज़ में सुनवाते हैं। इसी तरह से मेरा प्यार आप तक पहुंचते रहे, 6 तक हमारा और आपका ये कारोबार चलता रहेगा।

हम पर मैं हूँ आपका साथी अभी और ये है जसशील का कारवा। जैसा कि आपने समाचारों में सुना है कि बोटनी टाउन सेंटर ईस्ट ओकलैंड में यहाँ पर आग लगी है और फायर क्रू अभी पूरी की पूरी कोशिश कर रही है इस आग को बुझाने में। और जो लेटेस्ट अपडेट्स आई है कि ऐसा लग रहा है कि ये शायद सिनेमा से इस आग की शुरुआत हुई है। लेकिन जो भी हो, अगर जो आप उस एरिया में रह रहे हो तो बोटनी टाउन सेंटर से अभी के लिए बिल्कुल दूर रहे ताकि आप खतरे से बाहर रहे। लेकिन इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि हमने अभी हमारे फेसबुक पेज पर एक रिडल अपलोड किया है खास आपके लिए और आपसे उन्हें अभी पूछना चाहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अभी तक इसे सॉल्व नहीं कर पाया हूँ। तो ये सुनिएगा आप, How do you go from number 98 to 720 using just one letter? How do you go from number 98 to 720 using just one letter? इसका जवाब आप 5599 पर हमारे पास में भेजिए ताकि हमें पता लगे कि कितने मैथमेटिशियंस हमारे बीच में हैं और जिनको मालूम है इसका जवाब। मैं हूँ अभी आपके साथ में और इस तरह से कारवा चलता रहेगा। कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ अपडेट्स और लेकर आएंगे आपके लिए, कुछ प्रमोशंस के बारे में भी बात करते रहेंगे। लेकिन इन द मीन टाइम यही बताइए, हाउ डू यू गो फ्रॉम नंबर 98 टू 720 यूजिंग जस्ट वन लेटर।

हम पर जस्सी लेकर मैं हूँ अभी आपके साथ में और मौसम की ओर देखते हैं तो आज के लिए अभी शायद आफ्टरनून या इवनिंग में आपके एरिया में काफ़ी बारिश हो सकती है, इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहेगा। लेकिन जो भी हो, कल के लिए बताया जाता है कि वेदर जो है फोकास्ट, जबकि मैं देख रहा हूँ तो मोस्टली फाइन एंड क्लियर बताया जा रहा है अभी के लिए। लेकिन आज के लिए आप अगर जो आपके एरिया में फाइन वेदर है तो बाद में चलकर बारिश हो सकती है। इसके अलावा कुछ हेवी थंडरस्टॉर्म्स भी फोकास्ट किए जा रहे हैं और इसके साथ में सनसेट आज का 5:49 पीएम पर रहेगा। इसके साथ साथ में जो मिनिमम टेम्परेचर्स ओवरनाइट रहेंगे जिसे आप फील करेंगे अराउंड 6 डिग्रीज तक। इसके साथ में अगर जो नेशनली देखें तो काफ़ी जगहों पर जैसे गिस्बन हुआ, नेपिया हुआ, वेलिंगटन हुआ, यहाँ पर कंडीशंस ओवरकास्ट बताए गए हैं आज के लिए। साउथ आइलैंड में कहीं ना कहीं बीच बीच में धूप भी खिलती रहेगी लेकिन बारिश भी होती रहेगी। तो ये सभी कुछ वेदर फोरकास्ट आपके लिए है, शेयर करते रहते हैं ताकि आप भी अपने डे को प्लान कर सकें अच्छी तरह से। लेकिन वापस आते हैं उस सवाल पर जो हमने आपसे पूछा था, हाउ डू यू गो फ्रॉम नंबर 98 टू 720 यूजिंग जस्ट वन लेटर। एक ही लेटर का आपको इस्तेमाल करना है और 98 से आपको 720 तक जाना है। तो टेनाज ने हमारे पास में कॉल किया था और शी इज़ ऑन द राइट ट्रैक। इसके साथ में मोनिका ने फेसबुक पर अटेम्प्ट किया है, थैंक यू सो मच। इधर मैसेज के प्लेटफॉर्म पर देखे तो बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, कोई जवाब नहीं आया। तो 98 से आप 720 तक कैसे जाते हैं एक ही लेटर का इस्तेमाल करके, अगर जो आपको मालूम है तो 5599 पर अपना जो जवाब है आप भेज सकते हैं।

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: हम पर इट्स 14 अवे फ्रॉम वन और मैं हूँ आपका साथी अभी आप सुन रहे हैं जस्ट चिल अपने फेवरेट डायल हम पर 104.2 एफएम साथ में रोवा पर और जो सवाल हमने आपसे किया था इसका जवाब काफ़ी लोगों ने दिया है और 7861 आपने भी लिखा है साथ में आनिया थैंक यू फॉर ट्राइंग इसके साथ में हाय अवी लव द प्रोग्राम वी कैन यूज़ लेटर एक्स बिल्कुल सही लेटर एक्स ही आपको इस्तेमाल करना है और हाउ कैन यू गो फ्रॉम नंबर 98 टू 720 लेटर एक्स को जो कि मल्टीप्लिकेशन का साइन है 90 और 8 के बीच में लगा दे तो आपको जवाब मिल जाता है 720 का तो इसी तरह से आपके साथ में और भी बातें होती रहेंगी थोड़ी देर में आर यू आर प्राउड ओनर ऑफ अ रेड कलर का यानी कि आपकी गाड़ी लाल रंग की है या फिर आप सोच रहे हैं कि अगला जो गाड़ी आपकी हो अगली गाड़ी जो हो आपकी ये लाल रंग की हो तो ऐसे में रेड कलर का इनसे क्या होता है इसके बारे में भी बातें करेंगे बस थोड़ी देर में ये सभी कुछ आपके साथ में है और चलते रहिए इस सफ़र को तय करते रहेंगे साथ मिलकर टिल सिक्स मैं हूँ आपके साथ ही

0: everyone. हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
0: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
1: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
0: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूटरूम में। उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर।
3: Do you know why so many of your neighbors are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mold and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
4: Shower dome.
5: Welcome to Kebabs Kitchen. I am Chef Alex और ये है मेरी गेस्ट सेरा।
6: क्या बनाते हैं इन कबाब को स्पेशल Chef Alex?
5: Perfect blend of spices, tender meat और fresh vegetables. हर कबाब बनता है with love and passion.
6: Wow, these kebabs are amazing. Spices एकदम right and meat is so juicy.
5: ये है अम्मास कबाब्स promise delivering happiness bite by bite. अम्मास food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
6: 100% authentic and pure as mother's love.
7: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This is to Bali and Bangkok. One epic trip. 5-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner sorted. Return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
8: Briscoe's is taking savings to the extreme with at least 40% off store-wide and incredible 60% off thrill-seeking savings. Don't miss at least 40% off store-wide end Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
9: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई-वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे। तमाकी तुरुकी, All Together Auckland.
10: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस। बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
11: The beat of Bollywood.
12: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
13: Just chill.
14: That's right, it's a beautiful Sunday. Chill कीजिए अभी के साथ में on हम।

0: Just chill.
1: You're listening to Avineet.
2: जी हाँ, मैं हूँ अभी आपके साथ में। और समय की ओर देखते तो हमारे स्टूडियोज में 1 बज रहे हैं, जबकि 6 तक हमारा और आपका साथ रहेगा। अगले आओ पर आपके लिए रहेगा एपिक बॉलीवुड चैलेंज भी, जहाँ पर एक और एक इंटरेस्टिंग गाने को हमने चुना है आपके लिए, जिस पर कंपटीशन खेलेंगे आपके साथ में स्ट्रेट आफ्टर 2। लेकिन अभी के लिए हम बातें कर रहे थे कि आप अगर जो किसी रेड कलर्ड कार के मालिक हो, तो ये आपके लिए क्या मतलब हो सकता है, या फिर आपके क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। अगर जो आप देखें कुछ कुछ मॉडल की जो गाड़ियाँ होती है, विदाउट नेमिंग देम, ये काफ़ी अच्छी लगती है लाल रंग में, लेकिन रेड कलर्ड पेंट ये जो है ये इट फेड्स अवे वेरी क्विकली। अगर जो रिपोर्ट्स की माने तो AI ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था कुछ साल पहले, जहाँ पर इन्होंने बताया था कि कोई मिथ नहीं है कि लाल रंग की जो गाड़ी होती है इसका जो पेंट है ये जल्द फेड हो जाता है। और इसका रीज़न ये बताया गया है क्योंकि इनका जो जब ये लाल रंग बाहर धूप में खड़ी होती है तो जो सन रेज होती है इसका जो एक छोटा वेवलेंथ ऑफ लाइट स्पेक्ट्रम है, जो ब्लू लाइट होती है, ये आकर ज़्यादातर डैमेज कर देती है लाल रंग पर। यानी कि ब्लू लाइट सिट्स एट अ छोटा वेवलेंथ ऑफ द लाइट स्पेक्ट्रम, और इसी कारण से ज़्यादा डैमेज लाल रंग की गाड़ी को होती है। तो AI ने अपने रिपोर्ट में बताया है, और उसके बाद में ये भी बताया है कि आधा कलर्स के बारे में कि जो सबसे सेफेस्ट कलर बताया गया है कि कहीं ना कहीं लोग प्रिफर करते हैं वाइट कलर का को गाड़ी को। इसके साथ में ये भी बताया गया है कि एक और एक रिसर्च में ये पता लगा था जो डार्क रंग की गाड़ी होती है, शायद ये ब्लैक आप कह सकते हैं या फिर डार्क का शेड ऑफ ग्रे, इनका चांसेस है 47% मोर लाइकली टू बी इन्वॉल्व्ड इन एक्सीडेंट्स। तो ये भी एक फैक्ट बताया गया है, इफ़ यू हैव अ डार्क कलर्ड का अगर जो ब्लैक ले रहे हैं। वैसे ब्लैक भी काफ़ी खूबसूरत लगती है, खासकर कूप्स पर जो स्पोर्ट्स मॉडल की गाड़ियाँ होती हैं ब्लैक में काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन देर इज़ अ हायर पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी फॉर देम टू बी इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट्स अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च बाय मोनाश यूनिवर्सिटी। तो अब तो रंगों को भी लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं, और ऐसे में अकॉर्डिंग टू लास्ट 6 months ऑफ स्टेट्स, जहां पर न्यूजीलैंड पुलिस 2020 में एक स्टडी किया है कि मोस्ट कॉमन स्टोलन कार्स आर आधा सिल्वर देन फॉलोड बाय वाइट एंड देन ब्लैक। यानी कि ये भी एक स्टेट्स कुछ सामने आई है रंगों को लेकर। तो अब तो कौन सी गाड़ी या किस रंग की गाड़ी आप अभी भी प्रिफर करेंगे? कुछ कुछ ऐसे मॉडल्स होते हैं जो ट्रेडिशनली रेड में आते हैं, और इनको अगर जो आप इनके बारे में बात करें तो फरारी इनमें से एक है, दे स्टिल कम इन रेड। लेकिन शायद आगे चलकर कुछ पेंट में कुछ बदलाव हो रंगों को लेकर, ताकि ईजली फेड अवे ना हो। ये सभी कुछ आपके साथ में शेयर कर रहे हैं ताकि अगर जो आप अगली गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो किस रंग को आप प्रिफर करेंगे, इसके बारे में आप एक समझदार डिसीजन बना सकें।

हम पर 1:15 हो चुके हैं और पहला जो रिक्वेस्ट है आ चुका है हमारे पास में, और शेल्विन ने मैसेज किया है इन अ ब्यूटीफुल चॉइस आई मस्ट से, कि एक ऐसा गाना जिसे शायद मैंने भी काफ़ी दिनों बाद आज सुनूंगा, क्योंकि इन बिटवीन कहीं ना कहीं जब इतने सारे रिलीजेज होते हैं तो कुछ गाने ऐसे होते हैं कि काफ़ी अरसे बाद सुने भी आपको उतना ही मज़ा आता है। तो शेल्विन आपके लिए खास अरिजीत सिंह की आवाज़ में अगला ये तराना है, इंजॉय करिए।

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक, स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
6: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
4: मुझे भी।
6: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
7: Bathroom moisture from shower steam. It's a problem in most homes. So eliminate steam with a Shower Dome shower top. With Shower Dome, you get a warmer, drier bathroom and a lifetime guarantee. That'll give you the warm fuzzies. Showerdome.co.nz.
8: Adore your floor for less with Flooring Extra's Affordable Floor Makeover Sale. Save on their best-selling range, including 15% off all Quick Step. Visit your local Flooring Extra showroom today.
9: Flooring Extra. Adore your floor.
10: At Southern Cross Pet Insurance, we know your pets are your besties. They love cheering you up when you're down, and they're always there for you, even when you'd much rather be left alone. So show your pet bestie some love by signing up to Southern Cross Pet Insurance with the promo code BESTIE by 31st of August, and you could win one of 25 $200 prezi cards for you and your pet bestie to enjoy. Offer ends 31st of August. TCs and exclusions apply.
11: Auckland's growing, with more people on our roads every day. So we need to make better use of the spaces around your hood. AT is proposing to connect bus and transit lanes along Mount Eden Road, Sandringham and Remuera Roads to ease congestion and create smoother journeys for all road users. And we want to hear from you. To have your say, search Keeping Central Auckland Moving on the AT website. AT, your city moving.
12: Right now, your team could be winning, sprinting, pitching, kicking, sin-binning, and you need to know about it.
13: Join our tribe!
12: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
13: join our tribe!
14: Non-stop Bollywood.
15: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
14: हम playing Bollywood's biggest hits.
16: Just chill.
17: Just chill है ये, मैं हूँ अभी आपके साथ में. और जब आप एयर न्यूजीलैंड में इन फ्लाइट ट्रेवल करते हो तो आपको एक लोली दिया जाता है इंजॉय करने के लिए, उसे टेस्ट करने के लिए, या फिर जब इन फ्लाइट होता है तो आपको कहीं ना कहीं एक खट्टी मीठी एक्सपीरियंस आपको देने की कोशिश होती है. क्या आपको मालूम है जो अभी की एयर न्यूजीलैंड में लोलीज सप्लाई की जा रही है, इनके पीछे कौन है? तो थोड़ी देर में आपके साथ में शेयर करेंगे एक ऐसी फैमिली के बारे में जो अभी करंटली सप्लाई करती है एयर न्यूजीलैंड को लोलीज, जहाँ पर आप ये जो कन्फेक्शनरी इसे इंजॉय करते हैं. बस थोड़ी देर में सुनते रहिए, हम लेकर आएंगे आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी.

हम पर जसशील पर आपके लिए लेकर आए हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जहां पर होप और साथ में इंस्पिरेशन की बात है, जबकि अब आपके साथ में शेयर करने वाले हैं एयर न्यूजीलैंड की आइकॉनिक लोली के पीछे की कहानी। जी हाँ, जब भी आप एयर न्यूजीलैंड में ट्रेवल करते हो तो आपको एक लोली दिया जाता है, स्वीट दिया जाता है, जिसे आप बड़े ही अच्छे तरीके से इन्जॉय करते हो। तो इसके पीछे की जो कहानी है, जो सप्लायर्स है अभी, ये कोई और नहीं धीरू बीका और इनकी फैमिली है जो एयर न्यूजीलैंड को लोलीज प्रोवाइड कर रही है। और इनकी कहानी शुरू होती है जबकि 2005 में ये एक फ्लाइट में गोल्ड कोस्ट जा रहे थे और इन्होंने एक बड़े ही बोल्ड स्टेटमेंट दिया अपने देन टीनेज सन को कि एक दिन हम यही लोली सप्लाई करेंगे एयर न्यूजीलैंड को। और ये जो पैसेंजर फ्लाइट में ये थे, तब इनके बात जो हुई आगे चलकर सच, क्योंकि इनके पास में 1984 में एक लोली फैक्ट्री थी जिसे इन्होंने ख़रीदा था। इसका नाम था होनस कॉन्फेक्शनरी और बैक देन ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जो कुछ ना कुछ नया करना चाहते थे। तो धीरू भिका ने शुरुआत की और इनकी शुरुआत हुई एक छोटे से शहर तेक्विटी में इन वेकाटो, जहाँ पर धीरू अपने पत्नी वीना के साथ में एक छोटी सी फैक्ट्री इन्होंने लिया। उसके बाद में हालांकि इनको शुरू शुरू में लोलीज़ के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन ये अंडरस्टैंड करते थे कि फैक्ट्रीज कैसे वर्क करती है, ऑटोमेशन कैसे वर्क करती है, और साथ ही साथ में ये डेली बेसिस पर सीखते रहें। और इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि ये अक्सर लोलीज शुरू शुरू में अपने हाथों से बनाया करते थे और फिर ट्रायल एंड एरर मेथड में ये आहिस्ते आहिस्ते लोली मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी जो ट्रिक एंड ट्रेड है इसको हासिल किया है। इसके बाद में 1980s में, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ एक स्वीट स्टोरी नहीं है, ये खट्टी मीठी स्टोरी है, क्योंकि 1980s में इनको एक थोड़ा सा झटका लगा जबकि काफ़ी चीप इम्पोर्टेड सामान या लोलीज़ या कॉन्फेक्शनरीज ओवरनाइट मार्केट में आ चुके थे। तो ऐसे में इनको काफ़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ा, लेकिन इनको ये एक जो स्टेप था बैकवर्ड्स, इनको एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि ये आगे चलकर और भी अच्छा काम कर सकते हैं, अपने आप को रेलेवेंट रख सकते हैं। इसीलिए 1989 में इन्होंने USA से एक शिप किया कैंडी केन मेकिंग मशीन, और उसके बाद में ये काम करते रहे। और टेक्विटी इनकी जो फैक्ट्री थी वो उतनी बड़ी नहीं थी, तो इनको स्पेस बनाना पड़ा मशीन्स को फिट करने के लिए, और वहाँ से आहिस्ते आहिस्ते बिजनेस टेक्विटी से आउटग्रो हुई, और जो ऑपरेशन है ये आई ओकलैंड में 1999 में। और फिर जो एयर न्यूजीलैंड की कहानी है जहाँ पर इन्होंने लोली सप्लाई करनी शुरू की, ये ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ के पास में आई जबकि कैडबरी पास्कल शुरू शुरू में सप्लाई थी एयर न्यूजीलैंड लोलीज़ की फॉर डिकेड्स, यानी कि डिकेड्स एंड डिकेड्स ये सप्लाई करती थी। और फिर अचानक से उन्होंने मिड 2000s में अनाउंस किया कि ये अपना जो डोमेस्टिक फैक्ट्री है इसको क्लोज करेंगी। इसके बाद में एक और एक अपॉर्चुनिटी अराइज़ हुई और यहाँ पर फिर होनर्स को मौका दिया गया, क्योंकि इनका जो इंटरनेशनल रेपुटेशन था काफ़ी हो गया था, तब तक लोग विश्वास करने लगे थे धीरू के एफर्ट्स पर और साथ में इनके बेटे राज के एफर्ट्स पर। तो यहाँ पर आगे चलकर होनस ग्रुप को ये मौका दिया गया कि ये आगे चलकर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करे, ये एयर न्यूजीलैंड को ये लोली सप्लाई करे। लेकिन बात ये थी कि कैडबरी पास्कल ने रेसिपी नहीं दिया था और धीरू को रिवर्स इंजीनियर करना पड़ा कि जितने भी कलर्स है, फ्लेवर्स है, इनको ये सही तरीके से विद इन अ मंथ एक अपने खुद का एक रेसिपी तैयार किया, ताकि उसी क्वालिटी को ये मैच कर सके, उसी फ्लेवर्स को ये मैच कर सके। और फिर ये सभी कुछ करते हुए, तो जो आप फ्लाइट में लोलीज अभी इंजॉय कर रहे हो एयर न्यूजीलैंड की, इसके पीछे किसी और का नहीं, हाथ है धीरू का। जी हाँ, धीरू भीका और उनके बेटे हैं राज भीका, साथ में पत्नी है वीना जो मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। तो ऐसे में एक इंस्पायरिंग स्टोरी, 4-5 मिनट में इसको मैं जस्टिफाई तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैंने सोचा कि आपको ये शेयर करूँ कि ऐसे जो आइकॉनिक लोली है इसके पीछे धीरू भीका एंड फैमिली का हाथ है।

0: ऑफ बॉलीवुड
1: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: लेडीज एंड जेंटलमैन
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: Just chill.
1: 10 मिनट बाकी है 2 बजने में और 2 पर आपके लिए रहेगा समाचार और समाचारों के सीधा बाद आपके लिए लेकर आएंगे एपिक बॉलीवुड चैलेंज.

0: You're listening to Avineet.
1: That's right, मैं हूँ अभी आपके साथ में और ये है जसचिल का कारवा. 2:02 हो रहे हैं. ऐसे में आप समय हुआ कि आपके साथ में खेले एपिक बॉलीवुड चैलेंज, जहाँ पर हर वीक कोशिश यही रहती है कि कुछ ना कुछ आइकॉनिक गानों को आपके लिए लेकर आए इस कॉन्टेस्ट में, जहाँ पर बेस्ड ऑन क्लूज और ट्रिविया आप उस गाने को पहचान सके. जो सबसे पहले गाने को पहचानता है वही उस वीक का कॉन्टेस्ट का विनर ठहराता है. जैसे कि लास्ट वीक दिवनेश आनंद ने पहचाना था तुम बिन का टाइटल ट्रैक, और ऐसा करके वो ठहरे थे विनर. और इस वीक भी एक चैलेंजिंग गाना है आपके लिए, लेकिन आई एम क्वाइट श्योर आप इस गाने को भी पसंद करेंगे और जो गाने को हमने चुना है उसे भी आप राधा पहचान ही लेंगे. तो ये सभी कुछ आपके साथ में है. 5599 इज़ द नंबर जहां पर आपको टेक्स्ट करना है. और आपको ये बता दें कि समय सिर्फ इतना ही है. जैसे ही क्लूज बताना शुरू करें और गाना बजाने से पहले का जो बीच का समय है, आपको उसके दौरान इस गाने को सॉन्ग को आइडेंटिफाई करना होगा. तो हियर इट गोज, आप ध्यान से सुनिएगा एंड फ्लेक्स योर फिंगर्स. 1999 में साउथ में बनी ओरिजिनल मूवी सेथु का ये बॉलीवुड रीमेक है, जिसका टैगलाइन था अनफॉर्चुनेटली अ ट्रू लव स्टोरी. सतीश कौशिक की डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 2003 में रिलीज़ हुई. भूमिका चावला ने बॉलीवुड में डेब्यू की इस फिल्म के साथ में. आज जिस गाने को हमने आपके लिए चूज़ किया है वो भी एक टाइटल ट्रैक है. अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, ये जो अनफॉर्चुनेटली अ ट्रू लव स्टोरी का जो टैग है, ये फिल्म की ओरिजिनल डायरेक्टर यानी कि सेतु की डायरेक्टर की एक दोस्त की कहानी थी, और उसी कहानी पर बेस करके इस फिल्म को बनाया गया. इस फिल्म के जो लीड एक्टर थे जबकि इस फिल्म को बॉलीवुड में बनाया गया था, वो थे सलमान खान, जिसे आपने राधे की रोल में देखा था. और इनकी जो करेक्टर है, इनका ये करेक्टर का हेयर स्टाइल काफ़ी फेमस हुआ, यहाँ तक कि सलमान खान की डुप्लिकेट्स ने एक कॉमन और कंसिस्टेंट लुक ये है. और जहाँ तक जितने भी रील्स बनते हैं इसमें आप ज़रूर इनको देखेंगे. इसके अलावा इनिशियली इस फिल्म की हिंदी राइट्स राम गोपाल वर्मा के पास थी, लेकिन फिर वो किसी कारण इसे बना नहीं पाए. फिर प्रोड्यूसर्स ने बॉलीवुड में राइट्स लिए और शुरू में अनुराग कश्यप वॉज सपोज टू डायरेक्ट, लेकिन वो हुआ नहीं. फिर लेट एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक को हायर किया गया, और ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है. सतीश कौशिक एक फिल्म प्रोड्यूसर के लिए एड शूट करते थे. फिर एक दिन इस प्रोड्यूसर को सेतु की राइट्स मिल गई और कोई डायरेक्टर नहीं मिल रहा, क्योंकि अब सब इसको एक क्लासिफाई कर रहे थे डिप्रेसिंग लव स्टोरी और साथ में काफ़ी डार्क है, ये सभी कहकर डायरेक्टर्स इससे वॉक अवे कर रहे थे. फिर इसी प्रोड्यूसर ने सतीश कौशिक को ऑफर किया और बस एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस इवेंचुअली. इस फिल्म के सारे गाने बम्पर हिट्स हैं, लेकिन खास ये टाइटल ट्रैक एक लव स्टोरी की ट्रेजेडी को एक्सप्रेस करती है. म्यूजिक कंपोज किया है हिमेश रेशमिया ने और गाना लिखा है समीर अनजान ने. इसकी भी अलग कहानी है, क्योंकि समीर इनिशियली हिमेश के साथ में काम नहीं करना चाहते थे. सतीश कौशिक ने जब अप्रोच किया समीर को गाने लिखने के लिए, तो समीर ने कहा मैं हिमेश के साथ में काम नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस म्यूज़िक डायरेक्टर में बहुत एटीट्यूड है. फिर काफ़ी पर्सुएशन के बाद में इनको कन्विंस किया गया, और फिर इन्होंने जाकर इसको अग्री किया कि हाँ ये उनके साथ में काम करेंगे. तो आपको एक क्लिप सुनवाता हूँ जहाँ पर समीर ने एक्चुअली इस बात को अपने ही ज़बान में कहा है.
2: देख के लगता था बड़ा एटीट्यूड वाला आदमी है, इसके साथ मेरा जमेगा नहीं. मगर जब हमने काम शुरू किया, पहली पिक्चर तेरे नाम की थी मैंने, तो उसके बाद से मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया बच्चा है, इसके साथ काम करने का मजा ही अलग है.
1: तो ये समीर का कहना है कि शुरू शुरू में इनको विश्वास नहीं था कि इनकी जो ट्यूनिंग है ये हो पाएगी. और फिर समीर ने आगे ये भी बताया कि रियल लाइफ में भी सलमान की रोमांटिक लाइफ में एक ट्रेजेडी चल रही थी, तो पिक्चर की टाइमिंग बिल्कुल सही थी क्योंकि ऐसा ही रोल उनको निभाना था. और सलमान की रियल लाइफ सिचुएशन को ध्यान में रखकर इस फिल्म के लिए एक और एक गाना लिखा गया, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती. ये गाना समीर से लिखवाया गया, और अब तो आपको फिल्म का पता चल गया होगा. एक कॉलेज ब्रेट राउडी की कहानी जिसे प्यार हो जाता है और फिर बाद में काफ़ी ट्रेजिक एंडिंग होती है जब इनकी सैनिटी ये लूज़ कर देते हैं. तो रिलीज़ होने पर फिल्म की म्यूज़िक को बहुत पसंद किया गया और ख़ासकर अवार्ड्स भी मिले म्यूज़िक को लेकर। अगर जो आपको मालूम है तो 5599 पर जल्द से टेक्स्ट करें और फिल्म का नाम तेरे नाम और उसी का टाइटल ट्रैक अलका याग्निक साथ में उदित नारायण की आवाज़ में।

एक ब्यूटीफुल गाना जिसे हमने आपके लिए लेकर आए हैं इस प्रोग्राम में, और ख़ासकर अगर जो आपने अक्सर आपने सलमान खान को देखा होगा एक नोटी या फिर ऐसे कॉमेडी मूवीज़ में, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक उनकी सीरियस फिल्म थी, और आप इसे अगर जो अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक ब्यूटीफुल टाइम टू वॉच इट। और जबकि टेक्स्ट मैसेजेस की ओर देखते हैं तो हमारे पास में डेजी आपने भी सही पहचाना था, रफ़ीक आपका भी जवाब सही था, इसके साथ में इम्तियाज़ अमन आपने भी सही मैसेज भेजा, इसके अलावा रकुल ने भी अपना जवाब दिया था, शबनम ने भी दिया था, सनीता आपका भी मैसेज आया है, इसके अलावा अगर जो प्लेटफॉर्म पर देखें तो फाल्गुनी आपका भी जवाब आया है, इसके साथ में 90224 आपने भी सही जवाब दिया था। लेकिन आज का जो फर्स्ट मैसेज हमारे पास में आया है ये है श्रुति का, और श्रुति इस कंपटीशन को इस वीक जीत चुकी हैं, एक सीरियस कॉन्टेंडर हो गई है, क्योंकि जब मैं देख रहा था अपने टेली को यहाँ पर, हाँ इतना सीरियसली इसको लेते हैं क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड्स बना कर रखते हैं, और इसको हालाँकि इस कॉम्पटिशन को फाल्गुनी ने 5 बार जीता है, अब श्रुति इज़ पोजिंग अ चैलेंज, और इन्होंने इस कंपटीशन को चार टाइम्स जीत लिया है अब, और ऐसे में आने वाले दिनों में और भी इंटरेस्टिंग रहेगा, और अगले वीक एक और एक कोई नया चैलेंज आपके लिए लेकर आएंगे। ये सभी कुछ आपके साथ में, आपने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच। अगला तराना आप सभी के नाम। Play

0: हम पर यह है जसिल का कारवा अभी का साथ है और जल्दी से आपको कम्युनिटी न्यूज़ में कुछ मैसेजेस पास ऑन कर दूँ, जबकि न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपको इनवाइट कर रहा है टू द फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट जो रहेगा 22nd और 23rd अगस्त को एट बेकनहेड स्काउट्स हॉल। अगर जो आपको जाने की रुचि है तो इसकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपको मिल सकते हैं न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन के फेसबुक पेज पर, या फिर NZCA के प्रेसिडेंट पंकज को आप 02109085067 पर कॉल कर सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जो एसोसिएशन है ये इनक्रेज करता है, आप किसी भी लेवल के खिलाड़ी हो, आपका स्किल लेवल चाहे बिगना हो या फिर आप एक अच्छे खिलाड़ी हो, आप इस पर इस टूर्नामेंट में बिल्कुल एंटर करें, ये आपको इनक्रेज किया जा रहा है। इसके अलावा अनफिल्टर्ड में सेंडी और उसबे ने बातें की हैं पंकज से, खासकर इस गेम को लेकर कि जो टूर्नामेंट है या जो गेम को लेकर जैसे कोई बातें हैं जो आपको इस रूल्स को लेकर यहाँ पर सुनने को मिलेगी। इसके साथ में शायद कैरम बोर्ड आपके लिए बिल्कुल नया खेल है और इसके बारे में आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप सिर्फ CB लिखकर, लेटर्स CB लिखकर 5599 पर टेक्स्ट करें, इस एपिसोड को सुने, शायद इसको सुनने के बाद में आपकी भी जो इंटरेस्ट है कैरम बोर्ड में हो जाए। तो ये सभी कुछ बातें आपके साथ में। इसके अलावा एक और एक मौका आपके पास में है, ओकलैंड भक्ति सत्संग लेकर आ रहे हैं ग्रैंड त्रिकोना कीर्तन नाइट, जहां पर आर्टिस्ट रहेंगे अच्युदन नायर सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, नितिन गाउंडर ओकलैंड के, साथ में अश्विन कुमार अप्पा लोटोका फिजी के। फ्राइडे 21st अगस्त को ये वैदिक सेंटर में परफॉर्म करने वाले हैं, टिकट से सिर्फ $20। स्पॉन्सरशिप और इंक्वायरी के लिए आप अश्निल को 02106672 36 या फिर 02155888 पर कॉल कर सकते हैं।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

0: driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हूँ.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं है उसको.
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया अभी वो.
2: अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुस्बे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Jen didn't think she needed a DVS system.
5: Oh, I've got insulation in that.
4: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
5: Ah, yeah.
4: So Jen got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
6: The heart of a healthy home, DVS.
7: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Enjoy a stopover in sunny Fiji on your way to epic destinations. Live your California dreams in LA or San Fran. Relax in Honolulu. Head to Dallas and experience Southern hospitality at its finest. Or take a trip to Asia, Tokyo, Singapore, or Hong Kong. Fiji Airways on sale now. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
8: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल. 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री. परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टब से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस ऑलवेज देसी. अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड. ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन. कशिश नेचुरल योगर्ट.
9: Reliance Ventilation System.
10: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
9: Moisture और ventilation का problem लगता है.
10: और पता है मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
9: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
11: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 80 years.
12: Rebel's 30th birthday continues with $30 deals on now. That's selected kids' clothing, hydro flasks and Nike equipment for only $30. Plus save $30 off selected casual running and kids' shoes. $30 deals and so much more on now at Rebel Sport. See online for T's and C's.
13: It's business month at Warehouse Stationery with big deals on business essentials like 20% off lightweight whiteboards and pinboards, and buy one get one half price on WS whiteboard markers. Don't miss big deals for your business at Warehouse Stationery. Conditions apply.
14: Zabardast hits.
15: Shuru ho jaye to rukte nahi.
14: Playing Bollywood's biggest hits.
16: हम पर यह है जसचिल का कारवा अभी के साथ में. और अगले वीकेंड पर जो इंग्लिश प्रीमियर लीग है, इसका नया सीज़न शुरू होने को है. और जो 22 अगस्त को जो पहला गेम रहेगा, यह रहेगा डिफेंडिंग चैंपियंस आर्सेनल का, जो फेस करेंगे कोवेंट्री को. उसके साथ में उसी रात मैन यूनाइटेड और हल के बीच में गेम रहेगा. साथ ही साथ इप्सविच और सन्डरलैंड जैसी टीमें भी खेलेंगी, और साथ में एवर्टन और क्रिस्टल पैलेस भी एक दूसरे का सामना करेंगे. ये सभी कुछ जो खेल है ये आने वाले दिनों में रहेंगे, जबकि अभी जो इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब्स है ये अपनी तैयारी कर रहे हैं बाय प्लेइंग अ फ्यू फ्रेंडली मैचेस. आप रेडियो सुन रहे हैं, आप इंग्लिश प्रीमियर लीग के अपडेट्स भी सुन रहे हैं. आप अगर जो फॉलो करते हो इस सीज़न को, इस प्रीमियर लीग कंपटीशन को, तो अपने जो फेवरेट टीम है आप इसका नाम लिखकर 5599 पर भेजें, ताकि हमें पता लगे कि हमारे लिसनर्स में कितने लोग इंग्लिश प्रीमियर लीग को फॉलो करते हैं, एक, और दूसरा किन टीम्स को ये सपोर्ट करते हैं ये भी पता लगेगा.

0: Investment Broking.
1: Liverpool Investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.
2: जस्टिल में हमारा काम है आपको याद दिलाना, और ये भी याद दिला देते हैं आपको कि जो ओकलैंड सिटी काउंसिल का लेटेस्ट स्टेटमेंट है सिटी रेट्स का, ये अब पोस्ट हो चुका है, तो ऐसे में आपके मेल बॉक्स में शायद ये अभी भी होगा, इसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। जबकि कुछ 7.9% से रेट्स इंक्रीज हुई है, और कैसे आप अपने जो रेट्स है इसको मैनेज करते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, जो रेट्स है ये 7.9% इंक्रीमेंट के बाद में कुछ एनुअली मेरे ख्याल से कुछ $320 के करीब से ये इंक्रीज होगी ऑन अ एवरेज हाउस होल्ड बेसिस। तो हाँ, आप क्या कर सकते हैं, यू कैन मेक सम पेमेंट्स, और साथ में वीकली पेमेंट्स भी आप करना चाहते हैं फॉर इजी इंस्टॉलमेंट्स, तो ये सभी कुछ ऑप्शंस ओकलैंड काउंसिल की वेबसाइट पर अवेलेबल है, या फिर आप उनके साथ में अरेंज कर सकते हैं।

0: Astray by me.
1: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
2: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
3: Let's go.
2: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
4: It's easy for life admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunizations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider.
5: It's Woolworths Multi-Buy Week. Get more for less, like white button or Swiss brown mushrooms 200 gram, any two for $5. And our fresh beef mince 500 gram, two for just $18. T's and C's apply.
6: Ma, it's already your dinner.
7: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी जब खाने में होगी इतनी शुद्धता इतना स्वाद तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा
6: मुझे भी।
7: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड खुशियाँ पकाए खुशियाँ खिलाए
8: हम पर मैं हूँ आपका साथी अभी विद जस्ट चिल और कोशिश करेंगे कि आफ्टर थ्री आपके साथ में खेले रक्षाबंधन ऑन एयर सिबलिंग परफॉर्मेंस रिव्यू ताकि जब ये ड्रो फ्राइडे 28 अगस्त को हो इसमें चांसेस रहे आपका भी नाम निकलने का तो जबकि दो लकी विनर्स ठहरेंगे जो $250 का इनाम जीत सकेंगे तो ऐसे में आपको सिर्फ क्या करना होगा आफ्टर थ्री जब आपको हम मौका दें तो कॉल करके अपने सिबलिंग के बारे में एक अच्छा रिव्यू जो कुछ भी है जैसा भी है अच्छा है तो आप अच्छा बोल सकते हैं या फिर किसी आदतों से आप ना खुश है तो इसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं और इतना ही करके आपके हाथ में चांस लगेगा $250 का इनाम जीतने का जिससे आप अपने सिबलिंग के लिए कुछ प्यारा सा तोहफा ले सकेंगे तो आफ्टर थ्री ये रहेगा आपके साथ में और वैसे 6 तक हमारा और आपका साथ बना है

आप सुन रहे हैं हम पर, मैं हूं आपका साथी अभी, और ये है जसशील 104.2 FM, साथ में रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं। इसके अलावा हम फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि यहां पर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट अपडेट्स हम डालते रहते हैं।

0: breakfast show with Vijay and Pooja.
1: Puri planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप। वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: हुनुआ और वेटाकरे।
2: अच्छा, हुनुआ वेस्ट में?
3: किधर है हुनुआ?
0: The breakfast show with Vijay and Pooja.

0: You're listening to Avineet.
1: That's right, मैं हूँ आपका साथी अभी और 3 बज रहे हैं. ऐसे में वी आर हाफ वे थ्रू द शो. बस देखते देखते 6 तक हमारा और आपका साथ रहेगा. और इस आवा पर अभी आपको मौका दे रहे हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. जी हाँ, सिबलिंग्स परफॉर्मेंस रिव्यू, जहाँ पर रक्षाबंधन के अंतर्गत ये जो प्रमोशन चल रहा है, जहाँ पर आप उन्हें आकर बातें कर सकते हैं. 0800-004-866 कुछ अच्छी बातें भी बता सकते हैं अपने सिबलिंग के बारे में. और इसके अलावा अगर जो किसी चीज़ से आप खुश नहीं है, इसको भी आप शेयर कर सकते हैं. ये मौका हम आपको दे रहे हैं. एक एंट्री की ज़रूरत है इस शो में. और 0800-004-866 पर आप कॉल करें, हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं, ताकि जब आप इनाम जीते ना, तो इस इनाम के साथ में अपने सिबलिंग को आप कुछ तोहफा दे सकते हैं और ख़ुद के लिए भी कुछ ले सकते हैं. तो इतना ही करना है, जबकि 28 अगस्त को ये ड्रॉ होगा. तो आपके पास में अभी मौका है. 0800-004-866 पर आप कॉल करें. एक भाई या बहन की ज़रूरत है जो आकर अपनी दिल की बातें बता सके हम पर, हमारे साथ में. और याद रहे, नंबर है, टोल फ्री है. 0800-004-866 आपको कॉल चार्जेस नहीं लगेंगे बिल्कुल. और इनफैक्ट आप कहीं ना कहीं कुछ पुरानी यादों को भी ताज़ा कर सकेंगे. यू कैन चेरिश दोज मेमोरीज जो आपके साथ में हैं, जो एक्सपीरियंसेस है आपके बहन या भाई के साथ में, इसके बारे में आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं. और ये शेयर करने पर आपको ये भी एक मौका मिलेगा ताकि आप प्राइज़ जीत सकें. इसके साथ में जो एक और एक कॉम्पटिशन हम रन कर रहे हैं, जो हमारे हम सोशल मीडिया पर है, जो फेसबुक पर, जहाँ पर आपके पास में मौका है $300 कैश इनाम जीतने का. यहाँ पर किसी भी एक चीज़ को लेकर, कोई ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होगा, गिफ्ट होगा, जो आपके लिए बिल्कुल स्पेशल है, बहुत स्पेशल है, इसको लेकर आप हमारे हम फेसबुक पेज पर एक फ़ोटोग्राफ अपलोड कर सकते हैं. और अपलोड करने के बाद में आपको सिर्फ क्या करना होगा, ये जो गिफ्ट है क्यों स्पेशल है आपके लिए, रक्षाबंधन के मौके पर आपके भाई ने जब दिया था या आपकी बहन ने जब आपको दिया था, क्या सेंटिमेंटल वैल्यूज़ है इसके पीछे, ये सभी कुछ आप 2-3 लाइन्स में लिख सकते हैं. और लिखने के बाद में अपने सिबलिंग को आप टेक करें, और जैसे ही टेक करोगे तो यू आर इन द ड्रॉ टू विन $300 प्राइज मनी. तो इतना इजी, आसान है आपके लिए, बस इतना ही आपको करना है. और वो ड्रॉ जो है वो भी रहेगा 28 अगस्त को. और इसके लिए, जबकि मैं हम फेसबुक पेज में देख रहा था, जहाँ पर लाइफ टाइम इन वन ऑब्जेक्ट ये जो पोस्ट है, उसके नीचे अभी तक सिर्फ 7 लोगों ने ही अटेम्प्ट किए हैं. तो अगर जो अभी तक आपने कोई फ़ोटोग्राफ नहीं अपलोड किया है, जो जिस चीज़ को लेकर आपके लिए बिल्कुल स्पेशल हो आपके रिश्ते में, भाई बहन के रिश्ते में, तो अभी ही कर लीजिए. क्योंकि जब ये ड्रॉ होगा, इन 7 लोगों के ही बीच में रहेगा और आप मिस आउट कर जाओगे. तो ये मौका आपके पास में है.

हम पर यह है जशिल का कारवा, जबकि 3:15 हो चुके हैं। ऐसे में आपको याद दिला दूं, अभी के टाइम पर दो चीज़ों पर क्लोजर नहीं मिल पा रही है। पहली तो डोनाल्ड ट्रंप और साथ में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कोई डिस्कशन का जो क्लोजर है ये नहीं आ रहा है। और दूसरी टॉपिक ये है कि बॉलीवुड में गोविंदा और सुनीता आहूजा के बीच में जो तूतूमैमैं चल रही है, इस पर भी कोई क्लोजर नहीं मिल रही है। जबकि अभी हाल ही में सुनीता ने एक बार फिर अपने हस्बैंड गोविंदा पर अटैक किया है और कुछ ऐसी बातों को कहा है जहाँ पर गोविंदा ने अपने डिफेंस में कहा है कि ये अपनी हदें पार कर रही हैं। और जो भी हो, जैसे कि मैंने कहा है कि क्लोजर दो चीज़ों पर चाहिए, एक तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ताकि फ्यूल बच सके, और कहीं ना कहीं इन कपल को लेकर बॉलीवुड में एक क्लोजर चाहिए।

0: Attention everyone, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
0: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
1: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
0: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूटरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंटेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर।
3: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
4: Does your floor need a makeover? Adore your floor for less with Flooring Extra's affordable floor makeover sale. For a limited time, you can save on their best-selling range of carpet and hard flooring, including 15% off all Quickstep laminate and timber. Plus, enjoy 36 months interest-free with QCard. To get your flooring makeover underway, visit your locally owned Flooring Extra showroom today. T's, C's and credit criteria apply.
5: Flooring Extra. Adore your floor.
6: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
7: Busy subah ho ya shaam ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
8: Briscoe's is taking savings to the extreme with at least 40% off store-wide and incredible 60% off thrill-seeking savings. Don't miss at least 40% off store-wide. End Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
9: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई-वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे। तमाकी तुरुकी, All Together Oakland.
10: Non-stop Bollywood.
11: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
10: हम playing Bollywood's biggest hits.
12: That's right, हम पर आपके लिए लेकर आते रहते हैं लेटेस्ट नंबर्स, क्योंकि वी प्ले बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। ऐसे में हमने आपको कल सुबह बताया था कि इंडोनेशिया में एक एर्थक्वेक आया था जहां पर 7.7 मैग्नीट्यूड तक ये थी, और जो लेटेस्ट अपडेट्स बीबीसी के अनुसार ये हाथ लगे हैं, जो रेस्क्यू टीम से ये अभी भी काम कर रही है, सर्वाइवर्स को ढूंढने की कोशिश कर रही है, और अभी तक इनके हाथ कुछ लगभग जो फेटेलिटीज़ रिकॉर्ड्स है, 47 लोगों की मौत हुई है इंडोनेशिया में लेटेस्ट एर्थक्वेक में। और आपसे पूछना चाहेंगे, आप हमें ये बताइए 5599 पर जो मैग्नीट्यूड 7.7 की जो क्वेक इसको नापी गई है, किस इंस्ट्रूमेंट पर एर्थक्वेक रीडिंग्स ली जाती है? 5599 पर अपने जवाब भेज सकते हैं, किस इक्विपमेंट पर जो एर्थक्वेक का जो रीडिंग है इसको नापा जाता है।

हम्पर इज 25 अवे फ्रॉम 4 और आपको पता है कि ओकलैंड एयरपोर्ट पर जो रिफर्बिशमेंट का जो प्रोजेक्ट है ये चल रहा है और इंटरनेशनल टर्मिनल को अब अगले स्टेज में लेकर जाया जा रहा है, जहां पर अभी तक के लिए बताया गया है कि सबसे क्रूशल स्टेज है, क्योंकि इस एरिया में काफ़ी फोकस ये कर रहे हैं, जहाँ पर ड्यूटी फ्री एरियाज पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डिपार्चर्स और अराइवल्स में अब काम किए जा रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि शायद जब आप फ्लाई इन या फ्लाई आउट करेंगे तो आपके लिए इंटरनेशनल डिपार्चर्स और अराइवल्स में कुछ नया रीअरेंज्ड एक ड्यूटी फ्री एरिया हो सकता है, तो इसके लिए भी आप बिल्कुल तैयार रहें। और ये बताते हैं ओकलैंड एयरपोर्ट के चीफ कमर्शियल ऑफिसर मार्क थॉम्सन कि जो चेंजेस है ये एम कर रही हैं कि ट्रेवलर्स को एक नया और एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस ये प्रोवाइड कर सके विद अ ग्रेटर चॉइस। तो ये जो अपडेट्स है मैं आपके साथ में शेयर कर रहा था ऑन हम।

0: Brunch নিয়ে।
1: We gotta go. Are you ready? Come and take a trip with me.
2: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
3: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
4: Let's go.
3: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
5: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। Kashish Premium Basmati Rice. Eat better, live better. For more information, log in to www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
6: Bollywood ke sabse bade hit gaane.
7: Kabhi bhi, kahi bhi. Mast malang jo.
8: हम पर जश्न में बातें करते हैं कुछ सेल्फ लव और सेल्फ केयर के बारे में, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दुनिया को छोड़ो पीछे, सबसे पहले आप उसको खुश रखो जिसे आप रोज़ सुबह सबसे पहले आईने में देखते हो। यानी कि आप खुद को भी एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया करें, साथ में बी काइंड टू योर सेल्फ, इसके बारे में हमने और भी बातें की हैं। और साथ ही साथ में अपने एक लाइफ में कहीं ना कहीं हम दूसरों के लिए बहुत खो जाते हैं, तो एक इम्पोर्टेंट मैसेज ये भी है कि खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए।

0: You're listening to Avineet.
1: हम पर जस्सी लेकर मैं हूं अभी आपके साथ में और इस हवा की शुरुआत करते हैं एक ऐसे नोट पर. क्रोध तेज हवा की तरह है, कुछ देर बाद ये ठंडा हो जाता है, लेकिन तब तक कई शाखाएं और पत्ते टूट चुके होते हैं जिन्हें फिर दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता.

हम पर आप सुन रहे हैं मुझे, मैं हूं अवि एंड लेकर आया हूं आपके लिए जसशील। आपको बता दें हम बोर्डिंग कोल के बारे में, विच इज़ नाउ ओपन, आपका ड्रीम आइलैंड एस्केप, और ये सिर्फ एक बोर्डिंग कोल अवे है। आप जीत सकते हैं टू रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुआतु विद सोलोमन एयरलाइंस प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी। ये सभी कुछ आपका हो सकता है, आपको सिर्फ एंटर करना होगा जब भी आप वीकडे पर हमको सुने। खासकर बी ऑन द लुकआउट फॉर जो क्यू कॉल है फॉर स्पेशल बोर्डिंग कॉल, तो ये सुबह 8 पर आपके लिए लगेगा, दिन में 11 बजे आपके लिए लगेगा, साथ में 1 PM और 5 PM इन द आफ्टरनून।

तो ये एक टाइमिंग से जो आवा पर इसके आसपास या हाफ आइट तक ये आपके लिए लग सकता है, इसके लिए आपको सुनते रहना है। और जैसे ही आप इस क्यू कॉल को सुने, बोर्डिंग कॉल को सुने, आपके पास में 60 मिनट्स है कि आप रोवा पर जाकर टाइप करें बोर्ड नाउ और क्लिक करें सबमिट। बस इतना ही करके आप अपने आप को ड्रॉ में शामिल कर लेंगे। और अगर जो आपको एक इस कॉम्पिटिशन पेज तक जाने के लिए लिंक चाहिए तो बीसी लिखकर 5599 पर मैसेज करें। दैट्स इट। और इतना ही करके आप एक ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे जहां पर आप जीत जाएंगे एक अनफॉरगेटेबल वनुआतु गेटअवे। सो डोंट मिस योर फ्लाइट बिकॉज दिस वन कुड टेक यू टू पैराडाइज। हम बोर्डिंग कॉल थैंक्स टू सोलमन एयरलाइंस फ्लाइंग 4 टाइम्स ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ओकलैंड टू वनुआतु। विजिट flysolmons.com। T's and C's do apply।

0: मैट्रेस पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
3: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
2: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
3: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
2: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
4: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
5: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.
6: उन्नीस साल बाद शिवम इज बैक, अ मैन हॉन्टेड बाय ग्रीफ एंड लॉस, सर्चिंग फॉर अ पर्पस इन लाइफ। आवारापन 2, स्टारिंग इमरान हाशमी एंड दिशा पाटनी।
7: मौत, मेरा उससे एक पुराना रिश्ता है, एक कर्ज है जो मुझे चुकाना है।
6: आवारापन 2, नाउ शोइंग इन सिनेमास। डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फॉर अ फिल्म। आवारापन रेटिंग TBC।

0: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है। कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800-862-342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।
1: Non-stop Bollywood.
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम playing Bollywood's biggest hits.
3: हम पर यह है जसशील का कारवा और आपने अक्सर सुना होगा कि एक से भले दो। तो ऐसा ही कुछ स्टोरी जो सामने आया है, जबकि स्टफ ने रिपोर्ट किया है कि एक माँ और एक बेटी ये खुद पर अकेले से अपना घर नहीं खरीद पा रहे थे, तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, दे कंबाइंड दे फोर्सेस, यानी कि साथ मिलकर दोनों ने अब एक प्रॉपर्टी ले ली है जो कि कुछ वैल्यूड है अराउंड $700,000। और यहाँ पर इनकी जो प्रॉपर्टी है कई आवा में 50 मीटर्स फ्रॉम द बीच है। और इनका कहना है, जो 52 ईयर ओल्ड मम है कैटरीना गेली, कि इनका हमेशा एक ड्रीम था कि ये एक प्रॉपर्टी ओनर रहे, लेकिन हालांकि इन्होंने अकेले बहुत कोशिश की और इन सभी अटेम्प्ट्स के बाद में नाउ शी हैज फाइनली डिसाइडेड कि अपनी बेटी के साथ में ये अपना खुद का घर लेना चाहेंगी और साथ ही साथ में अपने खुद का मोगज भरना चाहेंगी। तो ऐसे में एक इम्पोर्टेंट मैसेज है हमारे लिए, कहीं ना कहीं अगर जो आप किसी के साथ में टीम अप हो सकते हैं तो वाई नॉट, एज लॉन्ग एज आप उस पर्सन को बिलीव कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो, और अगर जो साथ मिलकर आपकी जो लक्ष्य है सेम है तो इसके लिए आप बिल्कुल साथ में काम भी कर सकते हो।

This is me, Avi, keeping you company on Hum, और ऐसे में पामी से ऐश हमारे साथ दे रहे हैं रोवा पर आपकी खास रिक्वेस्ट पर अगला जो गाना है हिमेश की आवाज में. Enjoy this one out there.

हम पर यह है जशील आपके साथ में और मैं हूं आपका साथी अभी। आपको बता दूं भजन जेम्स के बारे में, जहां पर साउथ ओकलैंड ड्राइविंग लिमिटेड और एनजेड कल्चरल ट्रस्ट ये साथ मिलकर लेकर आ रहे हैं रवितेश देव को, जो परफॉर्म करने वाले हैं लाइव बैंड पर। आपके लिए प्रेजेंट करेंगे डिवोशनल म्यूजिक, फ्यूजन भजन्स और कीर्तन्स। यहां पर आपके पास में मौका है इस इवेंट को जाकर आप लाइव विटनेस करें। ऑन 22nd of August इसी शनिवार को 7 PM एट वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो एवेन्यू पापाटोई में ये इवेंट रहेगा। टिकट्स है सिर्फ $30। चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 इनके लिए फ्री एंट्री है। स्नैक्स और रिफ्रेशमेंट्स यहाँ पर बेचे जाएंगे। और अगर जो आपको टिकट्स चाहिए eventbrite.com पर जाइए, या फिर जेस फ्रेश पापाटोई, वैली फ्रेश पापाटोई, साथ में शिव प्रसाद केल्स्टन से आप टिकट्स ले सकते हैं। इसके साथ में सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जितने भी प्रोसीड्स रहेंगे ये दिए जाएंगे इन एड ऑफ गिफ्ट ऑफ लाइफ फिजी। तो इस नेक कार्य का आप भी एक हिस्सा बन सकते हैं।

0: ऑफ बॉलीवुड
1: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: We gotta go. Are you ready?
3: Come and take a trip with me.
4: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
5: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
6: Let's go.
5: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
7: Hello. NZHL helps you get ahead on your mortgage without needing a sugar mama, faking a back injury for the payouts.
6: Oh, my back.
7: Becoming a contributing member of onlytoes.com. Doing your own dental work. Then cashing in with the Tooth Fairy.
8: Score!
7: Selling your swimmers, staycationing in Hamilton, dumpster diving, moonlighting, scrimping, skimping, re-gifting, login sharing, or sucking up to your rich lip-kissing uncle. Mwah. Nope, there's a better way to have a mortgage and a life with NZHL.
9: NZHL. 19 saal baad, Shivam is back. A man haunted by grief and loss, searching for a purpose in life. Awarapan 2, starring Imran Hashmi and Disha Bharti.
10: Moth, mera usse ek purana rishta hai, ek karz hai, jo mujhe chukana hai.
9: Awarapan 2, now showing in cinemas. Distribution partner for a films. Awarapan. Rating TBC.
11: You filled the piñata before I sealed it, right?
12: No, you did.
11: I thought you did.
13: Get groceries in as little as 60 minutes with New World Express Delivery. T's and C's and exclusions apply. See online for details.
14: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi, $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Centre, Auckland.
15: Playing Bollywood's biggest hits.
16: हम पर आप सुन रहे हैं मुझे, मैं हूं अभी आपके साथ में और ये है जस्ट चिल का कारवा. क्या आपने मनी मेहम के बारे में सुना है? ओमिस्टन सीनियर कॉलेज के चार स्टूडेंट्स ने मिलकर अपने स्कूल प्रोजेक्ट को बना दिया है एक रियल लाइफ वेंचर. इन स्टूडेंट्स ने मोनोपोली जैसे गेम से इंस्पिरेशन ली है और बाकी बच्चों के लिए जो 9 to 15 ईयर्स ऑफ एज के बीच में है, इनके लिए एक और एक गेम तैयार किया है जहां पर ये खुद के लिए अपना खुद एक फाइनेंशियल डिसीजन बना सकते हैं. ये सभी कुछ ड्यूरिंग द गेम है और इस गेम को कहते हैं मनी मेहम. और कैसे इनके पास में ये आइडिया आया है, कैसे इन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर सारे व्हील्स को मोशन में किए हैं, ये सभी पर बातें करते हुए उन्होंने सेंडी और रुजबे को उनके अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट में बताया है. आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कैसे इस टीम ने काम किया है मनी मेहम को बनाने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, तो आपको सिर्फ क्या करना होगा, ड्राइव लिख कर 5599 पर भेजना होगा और आपको यहाँ से एक लिंक मिलेगा जिससे आप इसे फॉलो कर सकेंगे और शायद ये भी आपको मिल जाएगा कि कहाँ से आपको मनी मेहम मिल सकता है. और यंग एंटरप्राइज स्कीम प्रोग्राम ने जैसे ही इनके चैलेंजेस सामने आई हैं इन पर इनको सपोर्ट किया है. तो ये सभी कुछ ऑन द अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट 5599 पर ड्राइव लिख कर भेजें.

हम पर, दिस इज जस्ट चिल, मैं हूं अभी आपके साथ में। अगर जो सुबह सुबह किसी कारण आप ब्रेकफास्ट शो मिस कर देते हो, जहां पर विजय और पूजा काफी इंपॉर्टेंट और हार्ड हिटिंग टॉपिक्स को लेकर आते हैं, तो इसके लिए आप BF लिखकर 5599 पर मैसेज करें और आपको एक लिंक मिलेगा जिससे आप पॉडकास्ट सुन सकेंगे।

0: driving you home? Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं है उसको.
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया अभी.
2: अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुस्बे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.

0: Elite Bathroomware help you create a bathroom you'll love.
1: With a huge range of vanities, tapware, showers and baths, Elite Bathroomware makes it easy to compare, choose and customise.
0: The team's there to help with plenty of options to suit your bathroom space, your style and your budget.
1: For quality that fits the way you live, browse online or visit the spectacular Allens Road East Tamaki showroom. It's worth the visit.
0: Elite Bathroomware.
1: A reflection of you.
2: Playing Bollywood's biggest hits.
3: Put your head to Gandhi.
4: Yo,
5: you're listening to Avineet.
6: हम पर पांच बज चुके हैं, ऐसे में दिस इज द फाइनल आवर ऑफ द शो. छह तक हमारा और आपका साथ रहेगा और इस आवर भी ढेर सारी बातें आपके साथ में रहेंगी और मोर इम्पोर्टेंटली आपके लिए, आपके एंटरटेनमेंट के लिए कुछ अच्छे अच्छे गानों को भी बचाते रहेंगे. ये वादा रहा हमारा आपसे. 104.2 FM साथ में रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं. इस आवर पर भी आपका खास खास स्वागत है.

हम पर यह है जशील, आपके साथ में आपने इस वीकेंड टिकट्स लिए थे और शायद आपके नंबर्स नहीं मिले हैं, कोई बात नहीं, जो 12 मिलियन की पावरबॉल जैकपॉट थी अब ये रोल ओवर होकर 15 मिलियन डॉलर्स हो चुकी है। तो वेंसडेज और सैटरडेज को आप अपने टिकट्स ले सकते हैं ताकि यू कैन ऑलवेज बी इन इट टू विन इट, और शायद लाइफ कहीं ना कहीं बदल सकती है। मंडे सुबह आपको उठकर काम पर नहीं जाना होगा।

0: biggest hits. Hum.
1: We gotta go. Are you ready?
2: Come and take a trip with me.
3: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special Hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines, plus $1,000 spending money. Vacation.
4: Hum boarding call, thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu.
5: Let's go.
4: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
6: 99 Centaur here, with more 99 cent deals this week at Pack and Save. Yeehaw! Ah, come here. Ah, gotcha. Yeah, this isn't my first rodeo. 99 cent week, on now at Pack and Save.
7: Kiwi kids are active kids, creative kids, sporty kids. Are you a Weet-Bix kid?
8: Spend $30 at Trade Depot and get fast, free delivery. 12-panel hybrid solar system, fully installed for just $9,999. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast, free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
9: Reliance Ventilation System.
10: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि drying windows, sealant आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
9: Moisture और ventilation का problem लगता है.
10: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
9: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
11: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
12: अब आपको बताने जा रहे हैं खादी बियॉन्ड बॉर्डर्स के बारे में जो रहेगा न्यूजीलैंड फैशन वीक के अंतर्गत ट्यूसडे 18th अगस्त को. जी हां, जो शो है 8:30 PM को स्टार्ट होगी एट शेड 10 क्वींस वर्फ 89 की स्ट्रीट ओकलैंड सीबीडी में. यहां पर आपके पास में एक ऐसा मौका रहेगा जहां पर इंडियन डिज़ाइन शोकेस आप देख सकेंगे यहीं ओकलैंड में. और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो खादी मटेरियल है, फैब्रिक है, जिसे हैंड वूवन किया जाता है, साथ में इसको बुना जाता है, इसका एक री इमेजिन्ड लुक है जहाँ पर इसको एक ट्विस्ट दिया गया है बाय नन अदर देन राजेश प्रताप सिंह. ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनली ये फैशन की दुनिया में बहुत ही माने जाने नाम है. और इन्होंने ऐसे ऐसे डिजाइन को तैयार किया है आपके लिए जिसे आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं. तो ये सभी कुछ ट्यूसडे 18 अगस्त को 8:30 PM से रहेगा, जिसका टिकट्स आप ले सकते हैं nzfashionweek.com से. इसके अलावा अगर जो आप चाहते हैं तो डबल पासेस आप जीत भी सकते हैं. आपको सिर्फ क्या करना होगा, खादी लिखे KHADI लिखकर अपने नाम के साथ में 5599 पर टेक्स्ट करें ताकि आपके नाम को ड्रॉ में शामिल किया जाए जहां आपके हाथ डबल पासेस लग सकते हैं.

संडे इवनिंग आप प्रिफर करते हैं वाइंड डाउन करना, इसीलिए आपको बताते हैं हम म्यूजिक स्टेशंस के बारे में, जहां पर जो 60s और 70s के गाने हैं आप हम रिवाइंड पर सुन सकते हैं। इसके अलावा 80s के जो मेलोडियस नंबर्स हैं, इसके लिए हम 80s जुक बॉक्स है, साथ में फीजी भजन है, जहां पर वीकेंड में आप अपने कन्वीनियंस पर इन भजनों को सुन सकते हैं। इसके साथ साथ में फॉर ऑल योर पंपिंग पंजाबी हिट्स चर्दी कला है आपके साथ में, और इसके अलावा फीजी कीर्तन संग्रह भी है, जहाँ पर फीजी के प्रमुख आर्टिस्ट की आवाज़ों में यहाँ पर कीर्तन का एक प्लेटफॉर्म रखा गया है। इसके साथ में राहत फ़तेह अली खान, इनकी जो अलग एक अंदाज़ होती है, सुरीली अंदाज, जो सूफ़ी और कवालियाँ ये गाते हैं, इसका भी ऑप्शन आपके लिए खास है हमारे हम म्यूज़िक स्टेशंस पर ओनियन रोवा, तो इसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं।

0: beat of Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं. शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. We have lots of fun basically with the cold weather.
3: कौन है?
4: Hunua और Waitakere.
3: अच्छा Hunua west में.
4: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

हम 104.2 एफएम साथ में रोवा पर मैं हूं आपका साथी अभी बस थोड़ी देर तक और हमारा और आपका साथ रहेगा ऐसे ही साथ देते रहिएगा।

आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही, और 12 से आपने हमारा साथ दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे कल एक बार फिर मिलेंगे, जबकि लेकर आएंगे 12 पर आपके लिए लंच बॉक्स, इसका भी हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। लेकिन आज के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अभी भी संडे बाकी है काफ़ी, अपनी इवनिंग को इन्जॉय करिएगा और औरों का भी ख्याल रखिएगा। इन्हीं बातों के साथ आपसे जुदा हो रहा हूँ, कल एक बार फिर 12 पर मिलूंगा। इन द मीन टाइम डू टेक केयर, बाय।

0: Attention everyone, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
0: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
1: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
0: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूटरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स, बॉटनी टाउन सेंटर।

सीधी और साफ बात बोलने वाला कठोर हो सकता है लेकिन धोखेबाज नहीं। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस पीपल जो आपको, आप जैसे हैं आपको उसी तरह से ट्रीट करते हैं। अगर आप गलत हैं तो आपको कह देते हैं कि भैया आप गलत हो, ये सही है ये गलत है। ऐसे लोग दिल के साफ होते हैं। हाँ, दे माइट बी प्रिज्यूम्ड या फिर इनको जज किया जा सकता है सेइंग दैट दे आर वेरी रूड। तो कहावत यह है कि सीधी और साफ बात बोलने वाला कठोर हो सकता है लेकिन धोखेबाज नहीं। तो यू मस्ट हैव पीपल अराउंड यू जो आपको सीधी साधी भाषा में डायरेक्टली आपको बता सके कि कब आप गलत हो कब आप सही कर रहे हो। तो अगर आपको भी ऐसा हमसफर चाहिए तो बस जुड़ जाइए हमारे साथ में ऑन संडे नाइट मेलोडीज। मैं हूं जिकाश और आज है रविवार 16 तारीख अगस्त। आपका वीकेंड बहुत ही बढ़िया गया, आई होप आपका वीक बहुत ही अच्छा गया है और अब हमारा साथ देने के लिए आई होप आप तैयार हैं। अभी से लेकर रात 12 बजे के बीच यहाँ पर हम मस्ती करने वाले हैं, अनवाइंड करने वाले हैं और आपको रेस्ट कराने वाले हैं ताकि आप तैयार हो सके फॉर अनदर वर्क वीक स्टार्टिंग टुमारो। जितने भी लोग आज शायद काम पर जाने वाले हैं आपसे भी हम बातें करेंगे, प्लस ऑल आवर लॉन्ग हॉल ऑपरेटर्स जो रास्ते पर हैं आपसे भी कुछ ज़रूरी बातें करनी है, प्लस आपके कम्युनिटी में क्या कुछ हो रहा है ये भी जानेंगे और ये वीक कैसा गया फॉर दी स्पोर्टिंग फैंस। तो भाई ये सभी बातें जानने के लिए हमारे साथ में यूं ही जुड़े रहेगा, बस कदम से कदम मिलाकर हम सफर तय करने वाले हैं राइट टिल मिडनाइट। मैं हूं जिकाश, आप सभी का स्वागत कर रहे हैं ऑन संडे नाइट मेलोडीज। नमस्ते, क्योरा।

कम्युनिटी इवेंट्स, कम्युनिटी न्यूज के बारे में आपको हम बताते रहते हैं। एंड इफ यू हैव समथिंग दैट्स कमिंग अप जिसके बारे में आप जानकारी तमाम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, इफ यू आर होस्टिंग एन इवेंट या फिर किसी बड़े इवेंट का आप हिस्सा है, तो गेट इन टच विद अस, वी विल ग्लैडली टेक यू अक्रॉस ऑल आवर लिसनर्स और उनको बताएंगे कि आप क्या कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि यू गेट मोर देन एक्सपेक्टेड ट्रैफिक और आपका बिजनेस या फिर आपका इवेंट और भी सक्सेसफुल हो सके। द न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन इनवाइट कर रहा है द कम्युनिटी टू द फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट ऑन द 22nd एंड 23rd ऑफ अगस्त एट बर्कनहेड स्काउट्स हॉल। नाउ इफ यू आर अ प्लेयर ऑफ एनी लेवल, शायद आप सीख रहे हैं और सोचते हैं कि क्या मैं कैन आई हैव अ क्रैक एट दिस, या फिर आप प्रो लेवल के खिलाड़ी हैं एंड यू वॉन्ट टू नो कि क्या न्यूजीलैंड में आपके बराबर कैरम कोई खेल सकता है नहीं, देन यू हैव टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड। गो टू फेसबुक, फेसबुक पर न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन का पेज है, वहाँ पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं या फिर यू कैन कॉल पंकज मोंगा, NZCA के प्रेसिडेंट है, ऑन 02109085067 पर, दैट इज 02109085067, और इनसे बातें की है सैंडी एंड रुजबे ने इन अनफिल्टर्ड। दे हैड अ लुक एट पंकज जर्नी एंड कुछ कॉमन मिथ्स है सराउंडिंग कैरम, इसको डिबंक किया गया है और डिस्कस किया गया है कि व्हाई नेशनल टूर्नामेंट्स आर एसेंशियल फॉर कीपिंग दिस क्लासिक स्पोर्ट अलाइव। क्या आप खेलते हैं कैरम? वेल, यू गॉट योर वीकेंड सॉर्टेड, अगले वीकेंड आपको जाना है बर्कनहेड स्काउट्स हॉल जहां पर न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट, द फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट होगा 22nd से 28th अगस्त के बीच में। इसके अलावा ग्रैंड थ्री कोना कीर्तन नाइट हो रहा है फ्राइडे 21st ऑफ अगस्त को, आने वाले शुक्रवार को, एट वैदिक सेंटर। टिकट है $20 और इस थ्री कोना कीर्तन नाइट में आप सुनने वाले हैं, परफॉर्म करते हुए देखने वाले हैं अच्युतन नायर कमिंग फ्रॉम सिडनी ऑस्ट्रेलिया, बहुत ही वेरी प्रोमिनेंट तमिल कीर्तन सिंगर, नितिन गाउंडर ओकलैंड न्यूजीलैंड से और अश्विन कुमार आपा लोतोका फिजी से आने वाले हैं। तो मैजिकल एंड अ वेरी पावरफुल नाइट ये होने वाला है, थ्री ग्रैंड थ्री कोना कीर्तन नाइट ब्रॉट यू बाय ऑकलैंड भक्ति सत्संग। तो स्पॉन्सरशिप अगर आप करना चाहते हैं या फिर यू हैव एनी इंक्वायरीज, गेट इन कॉन्टेक्ट विद अश्नील ऑन 02106672 पर।

I've noticed a trend in major news outlets जो ये report करती है and जो भी government in power होती है उसको criticize बहुत किया जाता है. One such news is कि भाई national के रहते हुए इतनी सारी companies बंद हो गई हैं, they've closed their doors, वो profit नहीं कर रही थी and it's a bad thing for New Zealand. लेकिन ये बात कोई नहीं बताता है कि कितनी companies नई शुरू हुई हैं and in New Zealand official data through mid-2026 ये बताता है कि new business incorporations continue to outnumber business closures and removals despite a challenging economic environment. तो year to July RNZ ने रिपोर्ट किया है कि 62,061 new companies were incorporated. Second quarter that is April to June, इसमें 16,353 न्यू इनकॉर्पोरेशंस थे एंड इन द फर्स्ट क्वार्टर देयर वर 15,743 न्यू इनकॉर्पोरेशंस. तो मिलान किया जाए टू द नंबर ऑफ कंपनीज दैट हैव क्लोज्ड, सेकंड क्वार्टर में 9,654 कंपनीज बंद हुई, फर्स्ट क्वार्टर में 10,530 कंपनी रिमूव्ड हुए थे फ्रॉम न्यूजीलैंड बिजनेस रजिस्ट्रा. तो all in all, there have been quite a significant number of new companies being formed compared to number of companies that have shut their doors. So, ये बात अगर आप हमें सुनते हैं, हमें फिल्म को सुनते हैं, ये बात हम आपको बताते हैं. क्योंकि ऐसा नहीं है कि कंपनी सिर्फ बंद ही हो रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज businesses register भी हो रही है and that is a good thing for New Zealand and for New Zealanders.

0: स्टार बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।

0: You're listening to Chikash.
1: Speaking about government and elections and businesses, तो क्या आपको मालूम है कि इस साल is the New Zealand general elections happening November 7th. Have you enrolled yet? अगर आपने हाल ही में in the last two or three years आपने citizenship प्राप्त किया है या फिर PR आपने प्राप्त किया है तो you are eligible to vote. If you want to find out कि आप eligible है या नहीं, you should have a Realme account by now. अगर नहीं है तो go to enroll.vote.nz and वहाँ पर अपना पहला नाम और surname डाले plus date of birth डाले. If you are registered already, you will see your details there. या फिर आप जाकर register कर सकते हैं. Realme account तो भाई सभी over 18s के पास होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि it's an easier way for logging into government websites. तो Realme account आप बनाएं या फिर go to enroll.vote.nz. यहाँ पर जाकर आपको पता लगेगा कि if you are enrolled or not. अगर नहीं तो do your enrollment now. इंतज़ार मत कीजिए, enroll कीजिए and start finding out about parties, their policies, what they are campaigning on. Does it align with what you want for yourself in New Zealand? ये सब बातें सोचना और इस पर विचार करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि November 7th is the day जब आपको वोट करना है.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाने चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: This is your business. This is your business supercharged with the help of Xero Accounting Software. This is managing cash flow. This is managing your cash flow with the help of Xero Accounting Software. These are your customers paying you. These are your customers having more ways to pay you with the help of Xero Accounting Software. This is your business supercharged with the help of Xero, helping you sort your cash flow by giving your customers more ways to pay, so now you can focus on making your business boom. Supercharge your business today with the help of Xero.
7: You filled the pinata before I sealed it, right?
8: No, you did.
7: Oh, I thought you did.
9: Get groceries in as little as 60 minutes with New World Express Delivery. T's and C's and exclusions apply. See online for details.
10: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ, अच्छा बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस, साड़ा कुछ नहीं।
11: मिसेस सिंह,
12: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
0: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
13: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the winter sparkle celebration at Malabar Gold and Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. साथ ही $2,000 की हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेज पर पाइए फ्री गोल्ड कॉइन। प्लस हैव ओल्ड गोल्ड ऑफ 18 कैरेट और मोर, तो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कीजिए। हरी, विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स एट बॉटनी टाउन सेंटर, ऑकलैंड।
14: So, you've been looking at adding a modular home to your property.
8: Yeah, but nothing quite reaches my standard.
14: Well,
8: Within my budget?
14: Zillow?
8: Zillow
14: by Ashcroft Homes. A range of stylish modular homes from 1 to 4 bedrooms with 1 or 2 bathrooms, all packed with premium inclusions.
8: Price?
14: $139,000 for a fully complete 1-bedroom home and $215,000 for a 3-bedroom home.
8: Zillow. I like the sound of that.
14: Discover the Zillow difference at zello.co.nz.
1: The beat of Bollywood.
2: World's best. Hamari koi branch nahi
1: hai. Dil se. Dil tak.
15: Welcome back to Sunday Night Melodies, jahan par main Jikash aapke saath mein shamil hu. Now, pizza. Aapne khaya hoga. आपका शायद ये फेवरेट है। आई डू लव अ गुड पिज्ज़ा। लेकिन पिज्ज़ा के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना खर्च कर सकते हैं? मान लिया जाए अ फैमिली ऑफ 4, इनके लिए आप कितना खर्च कर सकते हैं? फॉर मी जनरली, फॉर अ गुड पिज्ज़ा और 2 पिज्ज़ास विद सम साइड्स, आई वुड गो समवेयर अराउंड 50 to 60 बक्स, विच टेक्स केयर ऑफ द होल फैमिली एंड इंश्योरिंग कि द पिज्ज़ा इज़ गुड। लेकिन भाई, एक शख्स है हु पेड $183 फॉर 2 पिज्जास। कहां पर और कैसे हुआ ये जानकर आपको भी आश्चर्य हो जाएगा। तो हमें सुनते रहें, थोड़ी देर में इसके बारे में जानकारी आपको हम प्रदान करेंगे। $183 फॉर 2 पिज्जास कैसे हो सकता है?

0: पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: हे, The boss shouted us coffees this morning from BP.
3: No way.
4: We in trouble?
2: Nah, it's BP Plus.
4: What is that?
2: A fuel card that saves a business on BP fuel. Plus, we get free coffees.
5: Sweet. Fuel you and your crew with 14 cents off every litre of eligible fuel for 6 months. Plus 25 free Wild Bean Cafe coffees through BP Me. Apply for a BP Plus fuel card today at bp.co.nz. T's and C's apply. New customers only for a limited time.
6: Rebel's 30th birthday continues with $30 deals on now. That's selected kids' clothing, hydro flasks and Nike equipment for only $30. Plus save $30 off selected casual running and kids' shoes. $30 deals and so much more on now at Rebel Sport. See online for T's and C's.
7: Dinner is sorted with fresh deals at New World North Island. Get skinless chicken thigh fillets, $17.99 per kilo. And Pam's carrots or brown onions, select size, $3.49 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.

Hey, Bula, welcome back to Sunday Night Melodies, jahan par main Jikash aapka saath de raha hoon. Now, I had started talking about pizza jo cost kiya kisi ko $183. Kaise hua? Well, iski jankari bas thodi der mein aapko hum denge. Aur between 7 and 8, aaj Nostalgia Nights bhi aapke saath mein hame shamil karna hai. To, aapka welcome kar rahe hain on this hour aur is gaane ke baad mein pizza जो $183 कॉस्ट किया है इसके बारे में आपको बताएंगे और फिर विल डाइव इनटू सम सॉन्ग्स जिसको सुनकर यादें कुछ ताज़ा हो जाती हैं तो उन यादों को आज आपके सामने हम लेकर आएंगे कौन कौन से साल में कौन कौन सी फिल्में आई गाने आए जो हम सुनेंगे और उस साल में क्या कुछ हुआ था इफ़ यू हैव सम नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स जो आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं सेंड इट टू 5599 विल ट्राई टू टेक अलोंग एंड शेयर सम मेमोरीज डाउन दिस लाइन इन दिस आवर बिटवीन 7 and 8 ऑन संडे नाइट मेलोडीज मैं हूं जिकाश आप सभी का स्वागत कर रहा हूं इन दिस आवर ऑफ संडे नाइट मेलोडीज दिल से कार्यक्रम आप सभी के लिए जारी है शैल सेतिया और विशाल मिश्रा की आवाज़ हम शामिल करने जा रहे हैं

0: your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rover app and enter Board Now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
1: Hum boarding call, thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: From climate change to a lack of loose change, from small changes to changes in global power, change is constant. And so is the news on this station, your source for everything changing. In association with RNZ News, change is in the air.
4: चाहे आप स्लो रोस्ट कर रहे हो, बेकिंग कर रहे हो या फैमिली के लिए डिलीशियस फीस्ट बना रहे हो, द डी एंटोनियो विंटर सेल हैज यू कवर्ड. शॉप कीजिए माइटन मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन में और पाइए कुकवेयर और किचन एसेंशियल्स पर जबरदस्त डील्स. द डी एंटोनियो विंटर सेल ऑन नाउ, एंड्स अगस्त 16th.
5: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस. बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है. तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए.
6: वेलकम टू कबाब्स किचन. आई एम शेफ एलेक्स और ये है मेरी गेस्ट सेरा.
7: क्या बनाते हैं इन कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
6: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स. हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन.
7: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग. स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी.
6: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट. अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स.
7: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव.
8: Playing Bollywood's biggest

Nostalgia Nights between 7 and 8 p.m. on radio on Sunday Night Melodies. Hum aapke liye lekar aate hain every Sunday ko. And the next song, now this has two parts. Kyunki ye song ko revive kiya gaya tha 7-8 saal pehle in the year 2018. Abhi se 8 saal pehle by Sanam Band Sanam Puri dwara is agle geet ko gaya gaya hai. Now the original song was sung by Silk Root. क्या आपको ये बैंड सुना सुना सा लगता है? Silk Root एक बहुत ही बढ़िया बैंड थी. मोहित चौहान जिसमें लीड वोकल और गिटारिस्ट थे, अतुल मित्तल गिटार क्लेरिनेट और बैकिंग वोकल्स करते थे, केम त्रिवेदी कीबोर्ड्स पर और केनी पुरी ही यूज्ड टू बी ऑन ड्रम्स एंड पर्कशंस. दैट वाज दिस बैंड वाज फॉर्मड इन 1996 एंड दे रिलीज देयर डेब्यू एल्बम बूंदे 2 years later, that is in 1998. The band, they broke up in 2002. Iske piche koi zyada reasons nahi diya gaya. Shayad everyone got busy in their life. Lekin ek bahut hi badhiya band thi Silk Root aur Mohit Chauhan dwara, Atul Mittal aur Kem Trivedi and Kenny Puri dwara is agle geet ko pehli baar compose kiya gaya, and then this song was redone in 2018 by Sanam, the band Sanam, led by Sanam Puri. To aiye enjoy karte hain Duba Duba by Sanam Puri.

एनजेड फैशन वीक में इंडिया का धमाल। नाउ ये क्या है, खड़ी बियॉन्ड बॉर्डर्स एनजेड फैशन वीक 2026 के तहत यू कैन एक्सपीरियंस अ नाइट ऑफ इंडियन फैशन कल्चर एंड क्रिएटिविटी राइट हियर इन न्यूजीलैंड। ये बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप देख सकेंगे इंडियन फैशन ऑन द न्यूजीलैंड फैशन वीक रनवे। खड़ी बियॉन्ड बॉर्डर्स ये है क्या, दिस ब्रिंग्स फोर लीडिंग इंडियन डिजाइनर्स टू ऑकलैंड जो शोकेस करने वाले हैं कि किस तरह से ट्रेडिशनल हैंडस्पन हैंड वोवन फैब्रिक कड़ी ये रीइमेजिन किया जा रहा है इन कंटेम्प्रेरी फैशन। अ मेजर इंटरनेशनल फैशन नेम आ रहे हैं जिनका नाम है राजेश प्रताप सिंह। ये इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डिजाइनर्स है, नोन फॉर हिज सोफिस्टिकेटेड टेलरिंग एंड मॉडर्न टेक ऑन ट्रेडिशनल क्राफ्ट। It's more than just a fashion show. The showcase celebrates the connection between India and New Zealand, जहाँ पर four renowned designers आ रहे हैं जो demonstrate करने वाले हैं कि कड़ी can be luxurious, contemporary, experimental and seriously cool. कब हो रहा है, 18th August को, आज है 16th, तो मंगलवार को रात को 8:30 बजे शेड नंबर 10 क्वींस वोव 89 Key Street, Auckland CBD mein. This will be an international Indian design showcase right here in Auckland. So, tickets aapko le lene hain from nzfashionweek.com ya phir aap abhi hame likhkar bheje kadi, K-H-A-D-I, and your name will go into the draw to win double passes. 5599 par apne naam ke saath aap likhe K-H-A-D-I and just like that you will be in the draw.

0: थे उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
1: White separated, pockets checked, cold wash, gentle cycle, powder measured just right. You close the door and push start. Then you see it. One red sock. One sock can ruin the whole wash. It's the same when you put soft plastics in your recycling bin. Let's sort it out. Search Auckland Council recyclable items. Tāmaki Tūriki, All Together Auckland.
2: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
3: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
4: अब हमारा क्या होगा?
5: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना,
3: तो क्या करें?
0: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
6: South Auckland Driving Limited presents Bhajan Jams, live concert by Ravitesh Dev, devotional fusion bhajans or kirtans with live band. Saturday 22nd August, 7 PM, Vedic Center, Papatoy. Tickets sirf $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds, Gift of Life, Fiji ko donate honge, providing free heart surgeries. Powered by Events Auckland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jay's Fresh and Valley Fresh, Papatoy or Shiv Prasad, Kelston.
7: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
8: Indelible Homes, your building expert. Indelible Homes.
9: Non-stop Bollywood.
10: जो भी करते शिद्दत के साथ करते।

Sunday Night Melodies में मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ. Nostalgic Nights Nostalgia से हम गुजर रहे हैं इन दिस आवर, एंड दिस नेक्स्ट सॉन्ग बहुत सारे लोगों के दिल के बहुत ही करीब है. एंड द ईयर वाज 2013. ये साल वो साल था जहाँ पर मिडल ईस्ट डिप्लोमेसी दी P5+1 एंड ईरान रीच्ड एन इंटरिम अकॉर्ड ऑन द ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम टू कर्ब एस्केलेशन रिस्क. ग्लोबल ट्रेड का भी काफ़ी प्रोग्रेस रहा है इस साल में. द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अचीव्ड ए ब्रेक थ्रू बाली पैकेज टू स्ट्रीमलाइन ग्लोबल ट्रेड नेगोशिएशंस एंड कस्टम्स. इंस्पिरेशनल ग्रास रूट्स एक्शन भी इस साल में लिया गया था. 6-year-old Dylan Siegel wrote a book called Chocolate Bar that raised over $400,000 for rare liver disease research for his best friend. ये story आपको ज़रूर चेकआउट करनी चाहिए. Dylan Siegel या फिर Chocolate Bar book, इसको आप लुकअप करें and you'll find the full story behind this. 2013 शायद आपकी ज़िंदगी में भी बहुत ही important रहा है. मुझे personally 2013 was a life-changing year, क्योंकि this was the year when I got a call कि you are going to New Zealand, and this was the year when my life changed for the better. Fiji को छोड़कर I came all the way here in New Zealand to start a new life with my family, and I couldn't have asked for better. I think that was one of the most important and the best decisions of my life. For coming to New Zealand. आपका ये सफ़र कैसा रहा, या फिर 2013 जो 13 साल पहले हुआ था, ये गाना भाई 13 साल पहले आया है. अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की आवाज़, फिल्म का नाम ये जवानी है दीवानी.

ROVA Rova. ये बात और ये वर्ड आपके दिमाग में, आपके जहन में एकदम से घुस जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा ऐप है जिसको इस्तेमाल करते हुए यू गेट द बेस्ट एंटरटेनमेंट इन द वर्ल्ड, और इसके साथ में यू गेट द बेस्ट चांसेस ऑफ विनिंग ग्रेट प्राइजेस. एंड वन सच थिंग हैपनिंग राइट नाउ इज आवर हम बोरिंग कॉल. एवरी वीकडे सुबह 8 बजे, 11 बजे, 1 बजे और 5 बजे दिन में और शाम को हम बोरिंग कॉल करते हैं फॉर यू टू गेट इन टू द ड्रॉ टू विन योर सेल्फ अ चांस टू गो टू वनुआतू. एक नहीं, 2 रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुआतू विद सोलमन एयरलाइंस. और इतना ही नहीं, इसके साथ में आपके लिए $1,000 स्पेंडिंग मनी भी हम आपको देना चाहते हैं. बस आपको इतना करना है, एवरी वीकडे हमें आप सुनते रहें, सुबह 8, सुबह 11, दिन में 1 बजे और शाम 5 पर वी विल डू ए स्पेशल बोर्डिंग कॉल. जैसे ही आप बोर्डिंग कॉल सुनते हैं, आपको जाना है रोवा पर, आपके पास 60 मिनट्स रहेगा एंड आपको इस बोर्डिंग कॉल में बोर्ड नाउ लिखकर सबमिट करना होगा. एंड जस्ट लाइक दैट यू विल गेट इनटू द ड्रॉ, जहां पर आप जीतने वाले हैं 2 रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुआतू विथ $1,000 स्पेंडिंग मनी, ऑल थैंक्स टू सोलमन एयरलाइंस, जो हफ्ते में 4 बार नॉनस्टॉप फ्लाई करती है फ्रॉम ऑकलैंड टू वनुआतू. टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई. तो कंपटीशन पेज लिंक के लिए आप BC लिखकर 5599 पर भेज सकते हैं.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: दिस इज इलेक्शन ईयर और इलेक्शन के लिए तैयारी सभी पार्टीज कर रही हैं एंड पीपल आर ऑल्सो गियरिंग अप एंड ट्राइंग टू डिसाइड कि किस पार्टी को किस कैंडिडेट को वोट देना है. लेकिन जबकि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है कि अगली गवर्नमेंट क्या करने वाली है. फिलहाल जो गवर्नमेंट है दे हैव गिवन क्वाइट अ बिट ऑफ रिलीफ इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस. और एज आई सेड मेरे दो सालों से टैक्स रिटर्न्स में मुझे पैसे वापस मिल रहे हैं एंड दिस नेवर हैपेंड सिंस आई हैव कम इनटू दिस कंट्री. 2013 से अभी तक 2013 से 2024 तक एक भी टैक्स रिटर्न मुझे नहीं मिला. कुछ जगहों पर तो मैंने खुद उल्टा ही भरा है लेकिन पिछले दो सालों से मुझे टैक्स में वापसी कुछ पैसे मिल रहे हैं. आई थिंक इट्स अ बेटर डील फॉर मी. दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन. इंटरेस्ट रेट्स ये अंडर कंट्रोल आ चुके हैं एंड सॉर्ट ऑफ स्पेंडिंग पावर थोड़ा सा आई थिंक बढ़ा हुआ है. लेकिन हाउ डू यू कंपेयर विद दिस सिनेरियो. हाउ आर न्यूजीलैंडर्स फीलिंग अबाउट मनी. तो एक पोल हुआ है थ्रू स्टफ एंड stuff.co.nz/money. यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर कुछ कंपेरिजन्स हुए हैं एंड ये पता लगाया गया है कि 39.2% आर फाइनेंशियली वर्स ऑफ. मेनी क्यूज फील दैट दे आर इन अ वर्स फाइनेंशियल पोजिशन देन दे वेयर अ ईयर अगो. तो 39.2% आर फाइनेंशियली वर्स ऑफ. इसका मतलब है कि 60.8% दे आर डूइंग बेटर इजंट इट. तो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि मीडिया आउटलेट्स आर पोर्ट्रेइंग द नेगेटिव्स. यहाँ पर 39.2% आर फाइनेंशियली वर्स ऑफ. इसका मतलब है 60.8% आर ओके एंड दैट्स अ बिगर नंबर. 34% हैव लिटिल सेव्ड. मोर देन अ थर्ड ऑफ क्यूवीज हैव लेस देन $1,000 इन सेविंग्स और एन इमरजेंसी फंड. मतलब 66% ये इन्होंने ठीक ठाक सेविंग करके रखी है. 31% हैव डिलेड बिग स्पेंडिंग. मेनी क्यूवीज हैव डिलेड मेकिंग अ मेजर परचेस और ट्रेवल डिसीजन इन द पास्ट 12 मंथ्स. अगेन इसका मतलब है कि 69% दे आर डूइंग गुड. 50.4% नीड $10,000 to $50,000 मोर. अ हाफ ऑफ क्यूवीज से इंक्रीज वुड मेक अ मीनिंगफुल डिफरेंस. ये भैया कौन नहीं चाहता है. सभी 100% ऑफ क्यूवीज वुड वांट एन एक्स्ट्रा $10,000 इन द बैंक. कौन कहेगा कि नहीं भैया मुझे $10,000 to $50,000 नहीं चाहिए, मैं जैसे चल रहा है ऐसा ठीक है. नहीं, 100% ऑफ द क्यूवीज वुड बी बेटर ऑफ इफ दे हैड $50,000 एक्स्ट्रा. 32% वुड स्ट्रगल इफ इनकम स्टॉप्ड. ये ब्रैकेट में तो और ज़्यादा लोग होने चाहिए. किसी का अगर इनकम खत्म हो जाए तो उनका जमाया जो पैसा है ये खर्च होने लगेगा एंड पीपल वोंट बी कंफर्टेबल डूइंग दैट. 30.7% वुडंट टेक ए डिसलाइक्ड जॉब फॉर मोर मनी. दैट इज़ अ पर्सनल प्रेफरेंस. क्योंकि अगर ऐसा जॉब आपको करना पड़े जो आप पसंद नहीं करते तो फिर एवरी डे आपका बेकार ही रहेगा. तो दिस वेयर सम आंकड़े सम स्टेट्स जो स्टफ पर है. हाउ डू यू कंपेयर विद दिस. इसके लिए एक हम लिंक शेयर करेंगे ऑन आवर फेसबुक पेज.
1: अच्छा.

0: एवरीवन, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग है हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
0: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
1: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
0: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूटरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर।
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के।
3: At Bunnings, you'll find gifts built for Dad. Put a smile on Dad's face with a gift from Bunnings.
4: When Dad's come in here, it's like a kid in a toy shop.
5: Dad loves to shop at Bunnings. You know, there really is something for every dad. A new water blaster, a new drill, a new barbecue, lawn mowers, edges.
4: Any type of dad. Landscaper dad, builder dad, worker dad. And if they've got projects that they want to work on around the house.
6: Dads are always working on a project.
4: Bunnings is the best place to find a Father's Day present.
7: Bunnings Warehouse.
3: Lowest prices are just the beginning.
8: South Auckland Driving Limited presents Bhajan Jams, live concert by Ravitesh Dev, devotional fusion bhajans or kirtans with live band. Saturday 22nd August, 7 PM, Vedic Center, Papatoi. Tickets serve $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds, Gift of Life, Fiji ko donate honge, providing free heart surgeries. Powered by Events Auckland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jay's Fresh and Valley Fresh, Papatoi or Shiv Prasad, Kelston.
9: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
10: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
11: Award goes to Indelible Homes.
10: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
12: कहानी of Indelible Homes.
13: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Golden Diamonds at Botany Town Center, Auckland.

दुनिया में अलग अलग तरह से लोगों को कैटेगराइज किया जा सकता है, एंड एक कैटेगराइजेशन है विच आई फाइंड इज वेरी सिंपल, लेकिन उसी समय पर वेरी जजमेंटल है. यू कैन जज पीपल बाय दिस. सो द कैटेगरी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, वन हु ड्रिंक स्पार्कलिंग वाटर एंड द अदर ग्रुप दैट डजंट. आप किस ग्रुप में फॉल होते हैं? आई पर्सनली स्पार्कलिंग वाटर इज नॉट माई थिंग. हाँ, अगर फ्लेवर्ड स्पार्कलिंग वाटर हो, ये तो एनी फिजी ड्रिंक हो गया, लेकिन हल्का सा इसमें अगर फ्लेवर है, आई माइट टेक इट. बट डायरेक्ट स्पार्कलिंग वाटर, ये मेरे हलक से उतर तो जाता है लेकिन जहन में फिट नहीं होता है. तो आर यू अ स्पार्कलिंग वाटर पर्सन या फिर आर यू नॉट अ स्पार्कलिंग वाटर पर्सन? और स्पार्कलिंग वाटर को लेकर कई सारे लोग कई सारी बातें करते हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है, दे एक्सप्लेन व्हाई बबली वाटर इज फार मोर एसिडिक देन टैप वाटर. लो, द फर्स्ट थिंग टू नो व्हेन यू आर ड्रिंकिंग स्पार्कलिंग वाटर इज दैट यू आर ड्रिंकिंग एन एसिड. लेकिन इससे पहले कि आपका माइंड फिल हो जाए विद विजन्स ऑफ टीथ डिजोल्विंग इन एसिड बाथ, द सेकेंड थिंग टू नो इज नॉट ऑल एसिड्स आर क्रिएटेड इक्वल. ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी केमिस्ट्री प्रोफेसर एलन ब्लैकमैन का कहना है कि अ बिट ऑफ साइंस इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड एसिडिटी एटलीस्ट एज इट रिलेट्स टू द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस वाटर्स ऑन योर टीथ. वाइल मोस्ट पीपल नो दैट द पीएच स्केल मेजर्स हाउ एसिडिक और अल्कलाइन अ सब्सटेंस इज, and many know that the pH of 7 is neutral, people often don't understand that pH scale is logarithmic. Iska matlab kya hai? For those of us that struggled in high school maths, is that each step down on the scale equates to multiples more acidity than at the previous step. In this case, 10 times more. In other words, compared to a pH of 7, a pH of 6 is 10 times more acidic. A pH of 5 is 100 times more acidic than a pH of 5. It's not 20, it's 100 times. And a pH of 4 is 1,000 times more acidic than a pH of 7. Aaya samajh mein? Right. The reason acidity matters is that when your teeth are exposed to a pH level below 5.5, the layer of dental enamel can start to weaken, and this is when holes start to develop. One way to mitigate the risk of this is to drink a glass of plain still water straight afterwards. This will help neutralize the acids and help restore the pH balance of your saliva. So, are you a sparkling water person or are you not? Because the other thing to understand is that not all sparkling waters are created equal. Where any particular sparkling water falls on a pH scale depends on many factors, including the quantity of carbon dioxide used to give it its fizz and mineral content of the water. As a guide, the New Zealand Dental Association lists the pH of soda water at 5.1 and the pH of sparkling mineral water at 3.9. By way of comparison, the pH of Coca-Cola is 2.3. Coca-Cola, yeah. 2.3 pH पर आता है. Discovering that your sparkling water is 0 to 100 times more acidic than something that's pH neutral might give you pause as you lift it to your lips, but as Blackman says, 10 to 100 times a very very very very very small number is still a very very very small number. तो personal preference है कि अगर आप चाहते हैं sparkling water पीना या नहीं. For me, I don't think so.

सन्डे नाइट मेलोडीज 104.2 एफएम और रोबो पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ। दिल से कार्यक्रम जारी है और 9 से 10 बजे के बीच में हर रविवार को आपके लिए हम कहकशन कार्यक्रम लाते हैं, जहाँ पर एक से एक दिलचस्प गजल आपके लिए हम पेश करते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं आपका, इस्तकबाल करते हैं आपका इन दिस आवर ऑफ ऑसम ऑसम गजल्स राइट हियर ऑन सन्डे नाइट मेलोडीज। थोड़ी देर में आपके साथ एक आर्टिकल मैंने पढ़ा है अबाउट वेकिंग अप एट 3 AM। क्या ज़्यादातर आपकी नींद खुलती है सुबह के 3 बजे के समय? तो ऐसा क्यों है और कैसे इसको फिक्स कर सकते हैं, आप जानना चाहते हैं तो यूं ही हमारे साथ में जुड़े रहें। 9 बजने का आए हैं, थोड़ी देर में आपके साथ में हम शेयर करेंगे वेदर न्यूज़ की आने वाला सप्ताह कैसा होने वाला है। एंड फॉर दोज ऑफ यू हु आर नॉकिंग ऑफ आफ्टर योर आफ्टरनून शिफ्ट, 10 बजे के आसपास आप नॉकऑफ करने वाले हैं, शायद अभी से टूल्स डाउन आपने कर दिया है एंड अब साफ सफाई कर रहे हैं, वाइंडिंग अप एंड रैपिंग अप व्हाटएवर यू आर डूइंग, मेक श्योर कि हड़बड़ी आप ना करें, घर जाने की जल्दी में आप चोट चपेट में ना आए, मेक श्योर यू आर सेफ। जो लोग तैयारियां कर रहे हैं टू स्टार्ट देयर नाइट शिफ्ट या फिर नाइट शिफ्ट शुरू कर चुके हैं, आई होप आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दे आर इन ऑर्डर, आपके आसपास कोई हैजार्ड्स नहीं है, है भी तो इसको आपने मिटिगेट करने का तरीका ढूंढ लिया है, मिटिगेट कर लिया है एंड यू हैव एग्जीक्यूटेड ओ स्टार्टेड योर वर्क सेफली। जो भी हो अपना ध्यान आप खुद रखिएगा ज़रूर, ताकि जिस तरह से आप काम पर आए हैं सही सलामत, उसी तरह सही सलामत आप लौट कर अपने घर अपने प्रियजनों के पास जाए। आप सभी का स्वागत कर रहे हैं इन सन्डे नाइट मेलोडीज ऑन दिस आवर कहकशन में। और ये अगला गज़ल, पहला गज़ल पंकज उदास की आवाज़ में हम शामिल करने जा रहे हैं। इज़ टॉकिंग अबाउट शराब। अगर आपके हाथ में भी शराब है प्लीज़ ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। आप थकान मिटाने के लिए पी रहे हैं या फिर कोई याद है जिसको शराब और भी ताज़ा कर देती है या फिर उसको सहन करने में आपकी मदद करती है, जो भी हो प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल एंड ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। आइए इस गज़ल का हम मज़ा लेते हैं। किसी ने लिखा है कि लगता है बारिश भी मैखाने जाकर आती है, लगता है बारिश भी मैखाने जाकर आती है, कभी गिरती है कभी संभलती है तो कभी लड़खड़ा कर आती है।

अगले शनिवार को एक बहुत ही औसम कॉन्सर्ट होने जा रहा है एट वैदिक सेंटर 32 ग्लासगो एवेन्यू पापाटोटोए में 7 PM से सैटरडे 22 अगस्त को भजन जेम्स लाइव ये होने जा रहा है जहां पर बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही टैलेंटेड अकम्पलिश्ड म्यूजिशियंस आने वाले हैं एंड रवितेश देव इज वन नेम जो आप तो जानते ही हैं presented by South Auckland Driving Limited and NZ Cultural Trust this concert is being held in aid of Gift of Life Fiji Gift of Life Fiji kya hai Gift of Life Fiji ek project hai in Fiji which is a medical initiative run by the Sai Prema Foundation that provides 100% free heart surgeries to children suffering from congenital heart disease in Fiji and the South Pacific to nanne munne bacche jinko paidaishi के समय हार्ट प्रॉब्लम्स है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ऑपरेशंस और ऑपरेशंस सर्जरीज फिजी में होते ही नहीं है तो वहाँ पर स्पेशलिस्ट को ले जाकर ये सर्जरीज किए जाते हैं एंड दिस इज़ बीइंग फंडेड बाय गिफ्ट ऑफ लाइफ फिजी तो उसके लिए ये कॉन्सर्ट किया जा रहा है जहाँ पर सिर्फ $30 में यू विल बी एक्सपीरियंसिंग ए नाइट ऑफ सोलफुल म्यूजिक इन अ कंटेम्प्रेरी अरेंजमेंट जहाँ पर ट्रेडिशनल डिवोशन विल बी ब्रॉट टू लाइफ और ये एक वाइब्रेंट लाइव कॉन्सर्ट सेटिंग होने वाला है जिसमें बहुत बहुत बढ़िया कलाकार आप देखने और सुनने वाले हैं तो मेक श्योर यू गेट योर टिकट्स फ्रॉम eventbrite.com जेस फ्रेश पापाटोटोए वेली फ्रेश पापाटोटोए या फिर शिव प्रसाद कैल्सन से आप टिकट ले लें एंड एवरी पेनी दैट यू विल स्पेंड हियर विल मेक अ डिफरेंस इन अ चाइल्ड्स लाइफ एंड द लाइफ ऑफ देयर फैमिली एक सिर्फ एक बच्चे को नहीं एक फैमिली को आप अ रे ऑफ होप दे सकते हैं बाय जस्ट गोइंग टू दिस कॉन्सर्ट एंड स्पेंडिंग $30 बाय बाइंग योर टिकट्स टिकट्स eventbrite.co.nz आई पर्सनली वांट दिस इवेंट टू बी अ सोल्ड आउट शो एंड आई थिंक इट विल बी क्योंकि हमारे लिसनर्स मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं तो सैटरडे 22 अगस्त भजन जेम्स लाइव happening at Vedic Center from 7 PM. Tickets are $30.

कहकशन कार्यक्रम जारी है और एक से बढ़कर एक गजल आपके लिए हम पेश कर रहे हैं। लगात आपको याद दिला दे अबाउट आवर रक्षाबंधन कंपटीशन। दो प्रमोशन चल रहे हैं, एक ऑन एयर जहां पर आप कॉल करके अपनी भाई बहन की खिंचाई कर सकते हैं, उनका परफॉर्मेंस रिव्यू दे सकते हैं कि कितने अच्छे भाई कितने अच्छी बहन हैं, या फिर एकदम से शैतान चुड़ैल किस्म की बहन है आपकी, तो आप ये भी हमें बता सकते हैं। तो जब भी हम आपका मौका दें टू कॉल ऑन एयर, आप ऑन एयर कॉल करके अपने भाई या बहन का परफॉर्मेंस रिव्यू दे सकते हैं एंड यू विल गो टू द ड्रॉ जहाँ पर दो लोग $250 जीत सकते हैं ऑन दी 28th of August। इसके अलावा हमारा जो रक्षाबंधन ऑन आवर सोशल मीडिया ये भी चल रहा है एंड हेड टू आवर सोशल मीडिया पेज, हम FM फेसबुक पेज पर यहाँ पर जाए, हमने एक पोस्ट डाला हुआ है फॉर रक्षाबंधन। उसके कमेंट सेक्शन में आपको एक फ़ोटो अपलोड करनी है। अब ये फ़ोटो किस चीज़ की? एक ऐसी चीज़ जो आपको अपने भाई या अपनी बहन के साथ में बांधता है, शायद एक गिफ्ट है जो आपकी बहन ने आपको दिया था, आपके भाई ने आपको दिया था, एंड थ्रू दैट यू हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज अटैच्ड टू इट, और देयर इज अ स्टोरी अटैच्ड टू इट। शायद एक राखी है जो आपने बचा कर रखी है सालों से, एंड दैट जस्ट टेक्स यू बैक इन टाइम। शायद एक ऐसा गिफ्ट है जो पहली बार आपकी बहन ने आपको दिया था या आपके भाई ने आपको दिया था। जो भी हो, उसका फोटो आप डालें कमेंट सेक्शन में एंड राइट 2-3 सेंटेंसेस अबाउट दैट फोटो एंड टैग योर सिबलिंग जस्ट लाइक दैट यू विल गो इनटू द ड्रॉ। द विनिंग स्टोरी विल बी रेड लाइव ऑन एयर ऑन August 28th फ्राइडे को, अलोंग विद $300 बीइंग गिवन टू द विनिंग एंट्री। तो ये दो चीज़ें हैं फॉर आवर रक्षाबंधन कॉम्पिटिशन। मेक श्योर समय रहते आप इसमें ज़रूर शामिल हो। मैं हूं जिकाश, सन्डे नाइट मेलोडीज में कहकशन कार्यक्रम जारी है।

वेलकम बैक टू हम, जहां पर कहकशन कार्यक्रम जारी है. कहकशन आवाज जारी है इन संडे नाइट मेलोडीज. नाउ द नेक्स्ट गजल. मुझे गाने को मन करता है, लेकिन गाने से पहले सीखना बहुत ज़रूरी है. तो आई विल टेक सम टाइम आउट, थोड़ा मोड़ा हारमोनियम में प्ले कर लेता हूँ, और आई थिंक इट विल बी अ गुड गज़ल टू प्रैक्टिस एंड टू सिंग, अगर मौका मिला कभी तब. लेकिन स्वर्गीय जगजीत सिंह की आवाज़ हम अब की बार आपके लिए लेकर आने वाले हैं. मोहब्बत और मोहब्बत के सफ़र के बारे में ये बातें कर रहे हैं. तो क्या है ये मोहब्बत? What is love? मोहब्बत क्या है आपके हिसाब से? मोहब्बत क्या है? शायद आपके लिए आपका मोहब्बत आपके महबूब है, या फिर आपकी मोहब्बत एक अधूरे मोहब्बत की दास्तां है. क्या है ये मोहब्बत? महबूब का मिल जाना मोहब्बत है, या महबूब को खो देना मोहब्बत है? महबूब के करीब रहना मोहब्बत है, या महबूब से दूर रहकर साथ निभाना मोहब्बत है? महबूब को गलतियों के साथ अपना लेना मोहब्बत है, या महबूब को गलतियों पे समझाना मोहब्बत है? क्या है ये मोहब्बत? महबूब के ख्वाब पूरे करना मोहब्बत है, या महबूब के साथ ख्वाब देखना मोहब्बत है? महबूब की खुशियों में खुश रहना मोहब्बत है, या महबूब के दुख में दुखी होना मोहब्बत है? मोहब्बत महबूब का ख्याल रखना है, या महबूब को दो पल अकेले छोड़ देना है? महबूब की नाराज़गी में उसे मना लेना मोहब्बत है, या फिर मोहब्बत महबूब की मनाने पर मान जाना मोहब्बत है? क्या है ये मोहब्बत? मोहब्बत तकलीफ़ है, मरहम है, एहसास है, या बेचैनी है? मोहब्बत सुकून है, ख्वाहिश है, ख्याल है, या ज़िंदगी है? ये मोहब्बत, या फिर मोहब्बत तकलीफ़ों में मरहम, बेचैनी में सुकून, ख्यालों का एहसास, या ज़िंदगी की ख्वाहिश है? क्या है ये मोहब्बत?

Hey, kia ora and bula. Welcome back to Sunday Night Melodies, jahan par main Jikash aapka saath de raha hoon. I hope you enjoyed Kahkashan between 9 and 10, jahan par aapke manpasand ghazals humne shamil kiye hain. If you are looking for a particular ghazal jo aap chahte hain ki hum include kare in Kahkashan, do let me know. 5599 par apna request aap bheje and we'll get through the formalities kyunki licensing ka bhi issue hota hai. Aise hi nahi hum kahin se bhi gaane utha kar baja sakte hain. All the songs that we play, we have to go through proper licensing taki royalties jahan kahin par bharni ho wahan par diya jaye aur in a proper way hum aapke liye aapka music lekar aaye. To zarur do let me know ki agar koi गज़ल है जिसकी ढूंढ जिसकी खोज आप कर रहे हैं शायद वो हमारे पास हो आपके लिए हम अगले सप्ताह लेकर आ सकते हैं. एनीवेज मूविंग फर्दर इनटू द प्रोग्राम 10 बजने के आए हैं एंड इफ़ यू हैव जस्ट ज्वाइन आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं. जितने भी हमारे राइड ऑपरेटर्स हैं जो लोग अभी फ़िलहाल रास्ते पर है चाहे घर की ओर जा रहे हैं या फिर ड्राइविंग इज़ समथिंग दैट यू डू फॉर अ लिविंग इससे आपको पैसे मिलते हैं. जितने भी राइड शेयर ऑपरेटर्स हैं जितने भी हमारे लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर्स हैं यू आर द वंस दैट आर कीपिंग दिस कंट्री टिकिंग ओवर. थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट्स जो आप ओड आवर्स में ड्राइव करते हैं. आई होप आप यू आर ऑल सेफ आउट देयर. अपनी सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखें. अपनी लॉग बुक्स है ये ज़रूर आप फिल करें एंड डोंट कट कॉर्नर्स. शॉर्टकट्स जब ज़्यादा होने लगते हैं तो सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती है. तो जो भी कुछ कर रहे हैं आप आई होप यू आर पुटिंग योर सेफ्टी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. आप सभी का स्वागत कर रहे हैं इन दिस आवर जहां पर सन एंड नाइट मेलोडीज़ में हम आपके लिए लाइनअप करके लेकर आ गए हैं सम ग्रेट 90s म्यूज़िक. 90s दिल से कार्यक्रम ये अभी से लेकर 12 बजे के बीच चलता रहेगा और एक से एक बढ़कर मेलोडियस ट्रैक्स आपके लिए हम शामिल करने जा रहे हैं इन दीज टू आवर्स. तो कीप हमिंग एंड कीप एन्जॉइंग. हमने कहा था एक आर्टिकल के बारे में आपको हमने बताना है कि क्यों ज़्यादातर लोग 3 बजे के आसपास जग जाते हैं. मे बी इट्स जस्ट एजिंग या फिर इसके पीछे क्या राज है एंड कैसे इससे आप छुटकारा पा सकते हैं. वील डिस्कस अबाउट दैट इन जस्ट अ फ्यू बिट्स. और वेदर नेक्स्ट वीक कैसा होने वाला है जानने के लिए हमारे साथ में शामिल रहे. फिलहाल मैं हूं जिकाश सनडे नाइट मेलोडीज़ में 90s दिल से अभी से लेकर 12 बजे के बीच. क्योरा

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं है उसको.
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया आप लोग.
3: अभी ब्रांड हो गया ना.
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: Wo Indelible Homes wali kahani sunao na.
6: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
7: Award goes to Indelible Homes.
6: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite Master Builder.
8: Kahani of Indelible Homes.

some really loved tracks from the 90s aapke liye hum shamil kar rahe hain. And we were talking about sleep. कैसे नींद आती है, कैसे आना चाहिए और क्यों लोग सुबह 3-4 बजे के आसपास जाग जाते हैं. वेल, देयर समथिंग कॉल्ड ब्रह्म मुहूर्त. जो लोग ब्रह्म मुहूर्त के बारे में जानते हैं, सुबह जल्द 3:30-3:30 बजे के बीच उठकर पूजा पाठ करते हैं अपना शौच करने के बाद में. देयर इज़ समथिंग एल्स. लेकिन जो लोग सोना चाहते हैं टिल 6 o'clock, बीच में नींद खुल जाती है. तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आर्टिकल हम शेयर कर रहे थे. तो वाई Do we wake up around 3 a.m. और क्या ये एक प्रॉब्लम है? The answer starts well before you go to bed. It comes down to light. You may have heard the term lux before in high school science. Lux क्या है? This is how the unit of light, जिस तरह से light measure होता है, जितना ज़्यादा lux उतनी ज़्यादा रोशनी. It is the measurement unit for the amount of light. Our ancestors spent their days outdoors under brilliant sunlight, which is around 100,000 lux. Then watch the world fade naturally into twilight to 30 to 40 lux. लेकिन अब क्या होता है? अब opposite है. We spend our days inside under relatively dim artificial office lighting, जो होते हैं around 400 to 500 lux. फिर हम घर आते हैं and exactly around 400 to 500 lux हमारे घर पर ही होता है. Plus televisions, phones late in the night, a bright phone can be 800 लक्स. तो हम उल्टा जा रहे हैं, सुबह से शाम तक हम 400-500 लक्स के अराउंड रहते हैं और फिर रात को ब्राइट फोन यूज़ करते हैं 800 लक्स. आपका जो सिकेडियन क्लॉक है आपके अंदर, दिस रीड्स लाइट. द मिड डे ब्लू लाइट इज़ व्हाट रेगुलेट्स मेलाटोनिन, अ क्रिटिकल स्लीप हार्मोन. और डेली सन इज़ एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर स्लीप हेल्थ, एज आर dim evenings. तो जैसे जैसे दिन गुजरता है, we should be going from bright lights to dimmer lights, ना कि the other way around. We can't pretend to live in a world of our ancestors because we don't. But there are small habits with big impacts that add up to longer and deeper sleep. 5 golden rules for better sleep. Good sleep isn't one big fix, it's a handful of small habits. Keep the same bedtime and wake time even on weekends. Get your phone out of your bedroom. Go easy on alcohol, number 3. Number 4 is have a hot bath or sauna before bed. And number 5 is move your body outside during the day. Exercise might be the most powerful lever of the lot. Sleep, ye ek luxury nahi hai. It's the brain's essential maintenance time. Aur ye aapke liye bahut hi important hai ki aap good sleep le har raat ko. The good news is that better sleep really starts with an expensive gadget. A super expensive bed or miracle supplement. It starts by giving your brain the signals it has evolved to expect. Light and tiredness. तो जितना कम रोशनी आप डालेंगे अपनी आँखों के भीतर रात्रि को, उतना easy होगा for you to have a good night's sleep.

0: Sexy.
1: Earlier in the program, हमने आपसे शेयर किया था अबाउट द प्रोग्राम अडल्ट लर्नर्स प्रोग्राम वर्कशॉप्स होने जा रहे हैं और अलग अलग डेट्स पर अलग अलग जहाँ पर लाइब्रेरीज में फ्री वर्कशॉप्स फ्री क्लासेस फ्री एक्टिविटीज होने वाली हैं एंड वन सच क्लास इज स्टार्टिंग अ बिजनेस इन न्यूजीलैंड. ये एक वर्कशॉप है जो आई थिंक वुड बी वेरी बेनिफिशियल टू पीपल जिनके पास में बिजनेस करने का आइडिया है, यानी कि यू नो कि किस चीज़ को लेकर बिजनेस करनी चाहिए लेकिन कैसे, जैसे कि बिजनेस प्लानिंग स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन कैसे करें, कंप्लायंस अगर नीडेड है तो कहां पर करें, किस तरह से बजट करना चाहते हैं, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड एंड सम क्यूए सेशन. सो दिस फ्री कम्युनिटी सेशन कवर्स द बेसिक्स ऑफ स्टार्टिंग अ स्मॉल बिजनेस इन न्यूजीलैंड. दिस इज होस्टेड बाय सिटीजन्स एडवाइस ब्यूरो बॉटनी में. इफ़ यू आर इन बॉटनी एरिया यू कैन गो On the 9th of September, Botany Library में सुबह 10 से 11 बजे के बीच एंड फ्री इवेंट है भाई. यू कैन लर्न फ्रॉम पीपल हु हैव एन एस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस या फिर बिजनेस गुरुज, इनके साथ में होकर आप सीख सकते हैं कि खुद का बिजनेस कैसे शुरू करें. ये इवेंट इज़ अ पार्ट ऑफ अडल्ट लर्नर्स वीक सपोर्टेड बाय अडल्ट एंड कम्युनिटी एजुकेशन Aotearoa, यूनेस्को न्यूजीलैंड नेशनल कमीशन एंड द टर्शरी एजुकेशन कमीशन. तो दिस आर सम ऑफ द थिंग्स जो आप चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि अदर थिंग्स आर ओवरव्यू ऑफ अ हार्ट डिजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन सेशन, ब्रेन चार्ज इन मैंडरिन और बेसिक क्लोथ्स मेंडिंग वर्कशॉप. ये सभी हो रहा है ड्यूरिंग द अडल्ट लर्नर्स वर्कशॉप जो ऑल अक्रॉस न्यूजीलैंड होने जा रहा है अलग अलग लाइब्रेरीज में. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने लाइब्रेरीज में आप चेक करें कि क्या हो रहा है आपकी लाइब्रेरीज में.

0: breakfast show with Vijay and Pooja.
1: Buri planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है temperature.
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. We have lots of fun basically with
2: क्या?
3: The cold weather.
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere.
2: अच्छा Hunua west में.
3: किधर है Hunua?
0: The breakfast show with Vijay and Pooja.

संडे नाइट मेलोडीज का सफर जारी है। मैं हूं जिकाश 104.2 एफएम और रोवर पर आप हमारा और हम आपका साथ दे रहे हैं। आई होप यू आर एंजॉयिंग द प्रोग्राम सो फार। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड द गेम नॉट द गेम्स द सॉन्ग्स दैट यहां से हम प्ले कर रहे हैं दे आर ऑल्सो सम ऑफ माई फेवरेट्स एज वेल। तो आपके फेवरेट्स हमारे फेवरेट्स को मिलाकर एक बहुत ही औसम सा हमने इन्वायरमेंट क्रिएट किया है इन दिस 90s दिल से कार्यक्रम इन संडे नाइट मेलोडीज। आई होप यू आर एन्जॉइंग। फाइनल आवर में हम और आप प्रवेश कर चुके हैं एंड आफ्टर दिस सॉन्ग वी विल लुक एट द वेदर ताकि आप भी जान जाए कि आपको अपना वीक कैसे प्लान करना है। तो आइए एंजॉय करते हैं उदित नारायण की आवाज़। दिस सॉन्ग इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स। तो डू एंजॉय एंड देन मिलते हैं इस गीत के उस पार। वी विल बी टॉकिंग अबाउट वेदर। इट इज़ लुकिंग सॉर्ट ऑफ गुड फॉर नेक्स्ट वीक, इतना मैं आपको बता सकता हूँ।

The final stroke of winter, मतलब August is the final month of winter, और ठंड ये कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है. You must have noticed कि जब बादल ज़्यादा होते हैं तो ओवन की तरह बन जाता है हमारा न्यूजीलैंड, एंड इन विंटर वी नीड दिस ओवन क्योंकि ठंड ये कम हो जाती है. तो द कमिंग वीक भाई ओवन जैसा माहौल नहीं होने वाला है क्योंकि बादल गायब होने वाले हैं फॉर मंडे एंड ट्यूसडे. मंडे ट्यूसडे बहुत सारी धूप आपको मिलने वाली है ड्यूरिंग द डे. तो टेम्परेचर दिन में 12-14 डिग्री रहने वाला है ऑन मंडे एंड ट्यूसडे. ओवरनाइट टेम्परेचर 6 and 7 डिग्रीज फॉर मंडे एंड ट्यूसडे. बुधवार को थोड़े बादल वापस आने वाले हैं लेकिन सर्दी उतनी ही रहने वाली है. 14 डिग्रीज ड्यूरिंग द डे. शाम को 5 डिग्रीज टेम्परेचर जाने वाला है. बारिश नहीं होगी. थर्सडे को भी औसम सा मौसम रहने वाला है. 15 डिग्रीज ड्यूरिंग द डे. ओवरनाइट टेम्परेचर 5 डिग्रीज डिप होने वाला है. फ्राइडे को कुछ बादल दिखेंगे लेकिन टेम्परेचर ये ड्रॉप होते होते 5 डिग्रीज पर रुकने वाला है फ्रॉम 15 डिग्रीज ड्यूरिंग द डे. तो ऑल इन ऑल आप बढ़िया वाला वीक सेलिब्रेट आप कर सकते हैं क्योंकि बारिश नहीं होगी, एंड दैट जस्ट गिव्स मी सो मच जॉय. विंटर में मुझे किसी चीज़ की तकलीफ नहीं है लेकिन जब विंटर में एकदम से पिच होकर बारिश होने लगे तो मुझे आफत हो जाती है. तो आई एम ग्लैड कि आने वाला वीक ये फ्री ऑफ रेन होने वाला है. ठंड को तो हम मैनेज कर सकते हैं. आई होप यू आर शेयरिंग द सेम सेंटीमेंट्स एज वेल क्योंकि नेक्स्ट वीक इट्स अ गुड वीक फॉर getting the kids to school from school, going out for a run, for a walk, whatever you can do outside, you can do bejhijak. Main hu Jikash, Sunday Night Melodies mein main aapka saath de raha hoon.

0: ऑफिशियल ब्रांच नहीं है।
1: अटेंशन एवरीवन, हम बोर्डरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
2: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
1: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
2: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
1: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बोर्डरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
2: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
1: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
3: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर। There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.hz. Terms and conditions apply.
4: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
5: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
4: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
5: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
6: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
3: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
6: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today.
3: Available at selected branches. T's and C's apply. Ha ha ha.

अभी ये बीता हुआ हफ्ता इसमें सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड स्टील पेन डे एंड इंटरनेशनल यूथ डे विच वॉज ऑन द 12th of August. नाउ 19th of August इज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे. आज है 16, सो वेंसडे को वर्ल्ड वाइड अंडर यूनेस्को या फिर अंडर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कैलेंडर वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे सेलिब्रेट या फिर ऑब्जर्व किया जाएगा 19th August. और क्या है इसका लक्ष्य? 19th August वी मार्क वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे. इट इज़ अ टाइम टू ऑनर ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स एंड टू स्टैंड विद पीपल अफेक्टेड बाय क्राइसिस अराउंड द वर्ल्ड. व्हेन लाइव्स आर एट रिस्क द पीपल हु कम टू हेल्प शुड नेवर बी टारगेट्स. येट ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स कंटिन्यू टू बी किल्ड, injured, abducted, detained and obstructed while carrying out their work. Most are national staff serving their own communities and under international humanitarian law, civilians including humanitarian and medical personnel must be respected and protected. Parties to armed conflict must allow and facilitate humanitarian relief for people in need in accordance with international humanitarian law. Attacks on humanitarian personnel have consequences far beyond the individuals directly affected. They interrupt food deliveries, healthcare, protection, and other life-saving services, leaving communities with even fewer ways to survive and recover. Concern is not protection. Condemnation is not accountability. Let's make protecting each other our greatest achievement. 2026 campaign message hai, the time for concern is over. The time for consequence is now. Jo log ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स को तकलीफ पहुंचाते हैं और इनको टारगेट बनाते हैं, दे शुड फेस कॉन्सिक्वेंसेस. एंड यू कैन जॉइन द कैंपेन विद द हैशटैग एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी. हैशटैग एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी आप यूज़ कर सकते हैं टू शो योर सपोर्ट फॉर ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स. आप जाए UN.org पर और वहाँ पर यू कैन रीड ऑल द आर्टिकल्स कि किस तरह से यू कैन यूज़ योर वॉइस, यू कैन शेयर वेरीफाइड कैंपेन इन्फॉर्मेशन एंड कॉल फॉर प्रोटेक्शन विद द हैशटैग एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी. यू कैन सपोर्ट ह्यूमैनिटेरियन एक्शंस, यू कैन स्टैंड फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड रिमेंबर द पीपल बिहाइंड द नंबर्स. तो चेकआउट करें, इट्स अ गुड गुड डीड, इट्स अ गुड मूवमेंट. और 19th of August वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, वी कैन स्टैंड इन सोलिडेरिटी विद ह्यूमैनिटेरियन एड वर्कर्स.

It's time for me to get out of here. कार्यक्रम की समाप्ति पर हम आ पहुँचे हैं. आई होप यू हैव एन्जॉयड टुनाइट्स प्रोग्राम. और जितना हो सका मैंने तो कोशिश की कि आपके लिए अच्छे कंटेंट्स लाओ. अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ हो तो डू लेट मी नो. अपना फीडबैक हमें दे ऑन 5599. एंड कोशिश तो यही रहेगी कि कंटिन्यूसली इम्प्रूव करे ताकि एक और भी बेहतर मोर एन्जॉयबल कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए, ताकि वी कैन स्टे एज योर फेवरेट रेडियो स्टेशन, द नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन ऑफ न्यूजीलैंड. मिलते हैं हम आपसे अब बाद में, नेक्स्ट वीक या फिर आफ्टर नेक्स्ट वीक, जो भी हो. आप अपना ख्याल रखें, हम भी अपना ख्याल रखने की कोशिश करेंगे और मिलेंगे दोबारा इन रेडियो पब अगर खुदा ने चाहा तो. तब तक के लिए आप सभी को हैव अ ग्रेट वीक अहेड, हैव अ ग्रेट नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर.

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप। वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: हुनुआ और वेटाकरे।
2: अच्छा, हुनुआ वेस्ट में।
3: किधर है हुनुआ?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Amsterdam AM.
1: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
2: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
3: अब हमारा क्या होगा?
4: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना,
2: तो क्या करें?
5: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।

0: Attention everyone, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
0: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
1: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
0: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूटरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर।
3: Hey नेहा, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
4: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
3: नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
5: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
6: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
7: Does your floor need a makeover? Adore your floor for less with Flooring Extra's Affordable Floor Makeover Sale. For a limited time, you can save on their best-selling range of carpet and hard flooring, including 15% off all Quickstep laminate and timber. Plus, enjoy 36 months interest-free with QCard. To get your flooring makeover underway, visit your locally owned Flooring Extra showroom today. TC's fees and credit criteria apply.
8: Flooring Extra. Adore your floor.
9: The beat of Bollywood.
10: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: लिसन अप यो यो यो यो यो It's Valentine's Day. Groove.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक, स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: अंडा अंडा अंडा अंडा हम सब ने देखा है कई बार देखा है पर क्या कभी सोचा है इस अंडे का क्या फंडा है ये कितना गहरा है इस टकले सर के अंदर एक ब्रेन सुनहरा है ये कुछ समझाता है ये कुछ सिखलाता है जरा गौर से सुनिएगा हम गा के सुनाता है।

Pinterest पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका

0: Sandy and Rizvi on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
1: Craving हो रही है उस thick और creamy दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश natural yogurt से, जिसका हर spoon है एकदम delightful, 100% vegetarian, gelatin and gluten free. Perfect है smoothies बनाने के लिए, tangy dips बनाने के लिए, पनीर या chicken marinate करने के लिए, या बस सीधा टब से खाने के लिए, क्योंकि ये है naturally delicious, always desi. Available now at your favorite Indian supermarket across New Zealand. Bring home the taste of tradition. Kashish, natural yogurt.
2: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है.
3: हाँ, अच्छा
2: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं.
3: मिसेस सिंह,
4: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने.
5: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहूहू. कॉल 09281 3050 और विजिट फोकस किचन.co.in. Z.

0: driving you home.
1: Drive Show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं है उसको.
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया
3: अभी. ब्रांड हो गया ना.
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: डॉक्टर ने क्या बोला?
6: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए.
5: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता.
7: दैट कन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन मोर टीवी होम्स देन यू थिंक. हाय, आई एम नितेश हीरा फ्रॉम अ शोर वन. माय जॉब इजंट टू जस्ट सेल पॉलिसीज, इट इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस एंड मेक श्योर योर फैमिली इज प्रोटेक्टेड.
8: बुक योर फ्री इंश्योरेंस रिव्यू टुडे. कॉल अ श्योर वन ऑन 0800-77-HEERA. दैट्स HIRA. और विजिट ashurevan.co.nz. नॉर्थ इंडियन एडवाइजरी लिमिटेड, ट्रेडिंग एज अश्योर वन, इज अ लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइडर.
9: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sinbinning. And you need to know about it.
10: Join the Tribe!
9: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and...
10: Join the Tribe!

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
2: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया.
3: नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
4: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु.
5: व्हाई जस्ट गेट थ्रू विंटर व्हेन यू कैन स्पार्कल थ्रू इट. कम एंड एंजॉय द विंटर स्पार्कल सेलिब्रेशन एट मलाबार गोल्डन डायमंड्स. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
6: The beat of Bollywood.
7: World's best, hamari koi branch nahi hai. Hum.
8: Night flight on Hum.
9: Gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na gigina na g

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: सब बोर्डरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
0: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
1: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
0: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बोर्डरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स, बॉटनी टाउन सेंटर।
3: Playing Bollywood's biggest hits.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather.
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Living.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m.
2: There's a reason the Big Ben six-pack is a go-to in Kiwi homes. Everyone gets hungry, just not at the same time. Someone's just walked in, starving. Someone's heading out, also starving. Someone said they weren't hungry, now they are. Someone's just eaten, and somehow hungry again. Waves of hunger just keep coming, but so do the pies. That's the genius of a Big Ben six-pack. So if hunger's a constant force at your place, grab a pack. Big Ben, feed your mission.
3: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
4: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
5: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सबडिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 or visit legalassociates.co.nz.
6: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Centre, Auckland.
7: Andy didn't think he needed a DVS system.
8: Nah, we're all right, aren't we?
7: But Andy forgot about his daughter who suffered from asthma and allergies.
9: Yeah, Dad.
7: So Andy got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work making their rooms drier, healthier and more comfortable. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
10: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.nz
11: Owning a rental shouldn't feel stressful. Nesto makes property management simple with proactive support, better communication, and evening and weekend viewings. Visit nesto.co.nz. Nesto Property Management. Comfortably nested.
12: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
1: Time check. Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
13: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. An expert believes some people need different treatment for equal outcomes. The ACT Party wants to end what it calls race-based hiring in public service roles, but political professor Richard Shaw questions the end goal.
14: The ACT Party are not really talking about equal treatment, they're talking about uniformity of treatment, which sounds lovely, but only works if you are entirely prepared to accept that history is completely irrelevant.
13: Alarm bells are ringing about the overuse of antibiotics in children. A New Zealand study found 96% were prescribed some at least once by the age of 5. Massey University's Sharan Rahn says it impacts gut health, which can increase the risk of diabetes and ADHD.
15: There is sufficient evidence now that antibiotic use in early life can result in chronic conditions such as this.
13: The death toll from a powerful earthquake in Indonesia has risen to more than 50. About 5,000 people are displaced after the 7.7 magnitude tremor on the island of Flores at the weekend. Officials say more than 900 homes have been severely damaged. To rugby with Shift 4, the All Blacks attackers humming, heading into Sunday's first test against the Springboks at Ellis Park. They've scored 142 points in three tour matches so far. Attack coach Mike Blair's pleased with where the game is at.
16: We've created a huge amount. We've scored some great tries. We're aware against South Africa we're going to get less opportunities.
13: And Kyron Tomoifalo scored 5 tries as Tasman thumped Counties Manukau 50-35 to complete week 3 of the NPC.
0: Sports News. News.
1: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
9: सुपर सिटी ऑकलैंड में आज के मौसम के लिए कहा जा रहा है कि द वेदर विल बी फाइन अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू शावर्स जो आज शाम के समय होने की संभावना है. वैसे सनसेट होगा 5:49 PM पर एंड सनराइज अगले घंटे 7:02 AM पर. टेम्परेचर राइट नाउ 8.6 डिग्रीज है. हाई ऑफ 12 एक्सपेक्ट किया जा रहा है. बाद में चलकर ओवरनाइट टेम्परेचर 5 डिग्रीज तक रहेगा आज.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
1: Breakfast catch up.
9: हेलो कियरा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और आज है मंडे 17th of August. 4 मिनट हो रहे समय हमारे स्टूडियोज में 6:00. गुड मॉर्निंग आपको, कैसे हैं आप?
17: गुड मॉर्निंग, आई एम गुड, हाउ आर यू?
9: आई एम ऑल गुड एंड ऑल सेट फॉर मंडे, एक नई सुबह के साथ, एक नए वीक की शुरुआत के लिए.
17: और अब देखिए भाई, आज 17 तारीख का अगस्त हो चुका है. होपफुली वीकेंड आपका अच्छा गया होगा और अब उसके बाद एक नए हफ्ते की शुरुआत करने का ये अवसर, ये मौका हमें मिला है. और शुक्रगुजार हैं कि 104.2 एफएम पर और रोवर पर आप एक बार फिर हमारा साथ देने के लिए शामिल हो गए हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
9: एब्सोल्युटली ब्रेकफास्ट कैचअप के साथ कर रहे हैं आज की सुबह की शुरुआत. एंड डेफिनेटली जबकि हमारे साथ अभी बने हुए हैं तो खबरों में क्या कुछ है ये देखेंगे थोड़ी देर बाद. आपके मंडे को बनाएंगे एकदम एक्साइटिंग और आपको रखेंगे अपडेटेड. तो चलिए शुरू करते हैं आज के सफर की

0: सनी साइड अप।
1: आज की सनी साइड अप स्टोरी इज ऑल द वे फ्रॉम आयरलैंड और आई मीन ओरिजिनेट जो है कि आयरलैंड में हुआ, जिसके बाद चलकर द स्टोरी मूव्स टू मैनचेस्टर। और ये कहानी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं अबाउट अ 75 ईयर ओल्ड व्यक्ति जिनका नाम है डेविड व्हाइटहेड। डेविड जो है इन्होंने अपनी लाइफ के काफ़ी साल डॉग्स को रेस्क्यू करने में बिताया विद हिज वाइफ जो नॉर्दर्न आयरलैंड में रहते थे। लेकिन जब उनकी पत्नी का देहांत हुआ तो वो यानी डेविड जो है ये मैनचेस्टर मूव हो गए एक रेंटेड घर में। एंड ही वॉज नो लॉन्गर अलाउड टू कीप पेट्स, क्योंकि रेंटेड घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना।
2: ओके,
1: सो ही वॉज मिसिंग दैट कंपेनियनशिप एंड ही हैड ऑलवेज नोन कि उनका हार्ट जो है इट वॉज यू नो ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर दैट फ्रेंडशिप दैट कंपेनियनशिप जो इनका डॉग्स के साथ रहा है। ही हैज दिस वेरी स्पेशल सॉफ्ट कॉर्नर फॉर डॉग्स। और जब उनको ये पता चला कि उनके पास अराउंड 14 नेबर्स है और इन नेबर्स में से किसी न किसी के पास तो डॉग्स होगा ही होगा, तो इन्होंने अराउंड 14 नेबर्स को अपने एक चिट्ठी जो है ये लिखी एंड दिस हार्ट फेल्ट लेटर वेंट ऑनलाइन, जिसके बाद चलकर डेविड जो है इनकी कहानी ऑनलाइन वायरल हुई। इन्होंने लिखा, हेलो, डू एक्सक्यूज दिस अनसॉलिसिटेड लेटर फ्रॉम अ वेल मीनिंग नेबर। Last month, I came to live at, और उन्होंने अपना एड्रेस लिखा, because my house is rented, I am prohibited from keeping a dog, or indeed any kind of pet, which saddens me. In an earlier life, फिर उन्होंने अपने जो previous घर का एड्रेस बताया, कहाँ से वो है ये बताया, और उनकी जो पत्नी है जब वो जिंदा थी तो कैसे वो रेस्क्यू डॉग्स को अपने घर में लाकर उनकी लुक आफ्टर करते थे। और उन्होंने ये कहा, I very much miss canine contact. I am writing to ask therefore whether you have a dog or dogs yourself, and if you do, whether you might allow me to meet him or her or them. Beyond that, occasionally joining you on a walk, not too strenuous, I am 75, इन्होंने लिखा, would mean a lot to me. Again, my apologies if you find this approach intrusive. It is certainly not meant to be. If you don't, please consider me texting. फिर अपना इन्होंने नंबर दिया so that we can discuss how to proceed. Thank you and best wishes. तो ये चिट्ठी जब इनकी जो है ये सामने आई, a few of the neighbors जो है इन्होंने ये चिट्ठी तो वायरल की ही की, लेकिन साथ ही साथ इनको अप्रोच भी किया और इनके जो पेट डॉग्स हैं उनके साथ डेविड को इंटरेक्ट करने का मौका भी दिया। डेविड गोज ऑन वॉक्स, ऑफ कोर्स नॉट वेरी लॉन्ग वॉक्स, बट उनके साथ वो टाइम स्पेंड करते हैं। और ही हैड ऑलरेडी मेट 5 डॉग्स जब ये स्टोरी जो है सामने आई थी उससे पहले, अपने अलग अलग नेबर्स के थ्रू, जिनके साथ कॉफ़ी कैचअप्स, प्लैंड प्ले टाइम्स और साथ में वॉक्स, इस पर ये गए हैं ऑलरेडी। एंड ही सीम्स टू बी वेरी हैप्पी एंड ही सेज कि लाइफ ना ऐसी होती है, कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं लाइफ में जहाँ पर आपको सर्टन चीज़ें करने का मौका नहीं मिलता बिकॉज ऑफ सर्टन रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन यू कैन फाइंड योर वे आउट और योर वे अराउंड।
2: And the thing is कि ऐसे लोग भी लाइफ में आपको मिलने चाहिए।
1: बिल्कुल, अभी लाइफ इज सच अ डिफिकल्ट, आई मीन सच अ डिफिकल्ट सिचुएशन में कुछ लोग होते हैं कि वो अपने नेबर्स के साथ इंटरेक्ट करना भी पसंद नहीं करते। एंड हियर दिस गाय अप्रोच्ड हिज नेबर्स, 40 प्लस नेबर्स, नॉट ऑल ऑफ देम रिस्पोंडेड, वो भी एक चीज है, बट एटलीस्ट सम ऑफ देम डिड, और वो एक अच्छी बात है ना। सो देयर यू गो, अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, अ स्टोरी दैट मेक्स यू फील हैप्पी एंड पॉजिटिव इन द मॉर्निंग। आज सनी साइड अप में आपके लिए लेकर आ रहे थे। 17 मिनट हो रहे हैं 6:00 और 17 अगस्त है आज मंडे। आपको बहुत बहुत बार मुबारक हो। थोड़ी देर बाद ग्लोबल हेडलाइंस आपके लिए लेकर आएंगे।
3: Gentlemen,
0: unfiltered with Sandy and Rusbe. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: Crispy on Rova, Spotify, or anywhere you get your podcast.
1: Coffee? The usual?
2: How about the unusual?
3: Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
4: At Bunnings, we've got gifts built for Dad, like the Jack Garden Upwall System, only $85.95. Ryobi 1 Plus 18-volt pruning saw, tool only, just $149. That's Father's Day sorted at Bunnings. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
5: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Beery. Call 24/7 on 0927-88600.
6: Dibba khul gaya!
7: Bharat bhai, tiffin khul gaya chhe! Sanjana ka dibba khul gaya!
8: Jab Kashish Spices se khana banega, to saare office ki nazar mein rahega. Phir yahi to hoga. Dibba khul gaya! Haldi, mirchi, garam masala. Kashish Masale. अच्छे वाले Buy any Kashish product and be in the draw to win up to $10,000 worth of cash prizes, gold coins and gift vouchers. Terms and conditions apply.
9: It's dream season at Beds R Us. Save up to 50% on selected sleepyhead beds like the Swiss Tech Precision. Half price, queen size, now 4299. Check out these dream deals and more at Beds R Us Manukau and Kukekwe, where dreams begin.
0: The beat of Bollywood.
10: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Beds R Us Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
12: Global headlines.
13: आज सुबह के मुख्य समाचारों में इंडोनेशिया में आए 7.7 मैग्नीट्यूड के खौफनाक भूकंप में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1,300 से ज्यादा घर, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स तबाह हो गए हैं। बहुत सारे आफ्टरशॉक्स के बीच हजारों लोग बेघर हो गए हैं और कई लोग घायल हुए हैं, जिसके चलते रेस्क्यूअर्स अभी भी सर्वाइवर्स को ढूंढ रहे हैं। रशिया के मुताबिक उन्होंने रात भर में 800 से ज्यादा यूक्रेनियन ड्रोन्स को शॉट डाउन किया है, जिसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा एरियल अटैक बताया जा रहा है और इसमें कम से कम 6 लोगों की मौत हुई है। दोनों ओर से हवाई हमले जो है और बढ़ा दिए गए हैं, जिसमें यूक्रेन अब रशिया के अंदर इंडस्ट्रियल प्लांट्स, रिफाइनरीज और वेयर हाउसेस को निशाना बना रहा है। भारत के अमृतसर रूरल पुलिस ने 690 ग्राम आईईडी और इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर बरामद करके एक पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करने की टेरा प्लॉट को नाकाम कर

0: फैसिलिटीज के मालिक नहीं बन जाते। स्पोर्ट्स में अगर देखें तो ओएफसी चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल्स इसी बुधवार को खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल 3 बजे ऑकलैंड सिटी और रेवा एफसी के बीच खेला जाएगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल रात 9 बजे गैलेक्सी एफसी और सेंट्रल कोस्ट के बीच होगा। कल हुए मैचेस में ऑकलैंड सिटी की जीत आईएस वीनस के खिलाफ 4-3 से हुई, जबकि सेंट्रल कोस्ट ने टीगर स्पोर्ट को 2-0 से हराया। इंडिया और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंडिया टीम बैटिंग कर रही थी। अभी तक 9 खिलाड़ी खोकर इंडिया ने 460 रन्स बनाए हैं, जबकि श्रीलंका को बैटिंग करना बाकी है। फिजी में बैटल ऑफ द जायंट्स सॉकर टूर्नामेंट के पूल रोज सप्ताहांत किए गए। पूल ए में लंबासा, नसीनू, सुवा और नावुआ की टीमें हैं, जबकि पूल बी में रेवा, बा, लोटोका और नांदी हैं। एक्स्ट्रा बैटल ऑफ द जायंट्स सॉकर टूर्नामेंट अगले महीने गोविंद पार्क मुंबा में या फोर स्टेडियम पर गोविंद पार्क मुंबा में खेला जाएगा। और साथ में एफआई कम्युनिटी शील्ड के एक मैच में आज सुबह आर्सेनल की जीत मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ 3-0 से हुई। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
1: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड
2: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ
3: मैं लाऊं अपना ए गेम
1: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: Missed it? Monday.
1: आज है मंडे 17th of August और आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं मिस्ड इट मंडेज, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपने ओवर द वीकेंड मिस की हो एंड इट हैज़ हैपेंड एंड वी टॉक अबाउट इट ऑन मंडेज. तो आज आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हम लेकर आए हैं जो लास्ट वीकेंड हुई है, फ्राइडे 14 से लेकर संडे 16th of August के बीच में. सबसे पहली चीज़ तो जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन जो है उनके बारे में कहा जा रहा है, स्टिल फेसिंग क्वेश्चंस अबाउट हिज लीडरशिप, क्योंकि एक डिफिकल्ट पीरियड जो है ये नेशनल पार्टी ने फेस किया. Another thing on the list is All Blacks जिनकी भिड़ंत हुई बुल्स के साथ, और साउथ अफ्रीका में मेरे ख्याल से मैच खेला गया ना, तो इसमें जीत हुई All Blacks की with 50 points to 19, और they scored 8 tries and are now preparing to face the much stronger Springboks. और इसके लेकर इस मैच को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, लुक फुट किया जा रहा है ना, what will the result be. और इसके साथ साथ कहा गया है कि कुछ प्रोटेस्ट्स जो है ये भी हुए ओवर कंजर्वेशन लॉ. पीपल अराउंड न्यूजीलैंड टुक पार्ट इन डिफरेंट प्रोटेस्ट्स जो हुए थे गवर्नमेंट के प्रपोज चेंजेस को लेकर टू द कंजर्वेशन लॉज. प्रोटेस्टर्स का कहना है कि जो चेंजेस हैं ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को और वीकन कर देंगे एंड दैट इज व्हाई दे वांटेड टू पुट देयर पॉइंट आउट देयर. ऑकलैंड सिटी एफसी जो है इनकी जीत हुई, दे केम फ्रॉम बिहाइंड टू बीट आईएस बेनिस 4-3 से, स्कोरिंग 2 लेट गोल्स एंड दे टॉक अबाउट लीविंग इट अंटिल द लास्ट मिनट. तो ये मैच जो है ये भी काफ़ी टॉक ऑफ द टाउन जो है ये रहा. और इसके साथ साथ एक बड़ा टॉपिक जिसके बारे में हम बातें कर सकते हैं इज द फार्मर्स रिमेन अब द गवर्नमेंट एंड अपोजिशन पार्टीज जो है ये कंटिन्यू कर रहे हैं टू डिबेट ऑन फार्मिंग कॉस्ट, रेगुलेशंस और एनवायरमेंटल रूल्स को लेकर. ये काफ़ी बड़ा पॉलिटिकल इशू जो है ये बन चुका है. और वहीं पर एक्ट पार्टी के बारे में भी ओवर द वीकेंड कुछ खबरें आई जहां पर कहा गया कि एक्ट इज पुशिंग फॉर चेंजेस एज टू हाउ पब्लिक सर्विस जो है ये ऑपरेट करता है, बट द पब्लिक सर्विस एसोसिएशन का कहना है इट हैज़ कंसर्न्स अबाउट द प्लान्स. जो एक्ट पार्टी जो है ये प्लान्स प्रपोज कर रहे हैं उसको लेकर उनके कंसर्न्स हैं. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आज मिस्ड इट मंडेज में आपके लिए लेकर आ रही थी जो हुआ है ओवर द वीकेंड, एंड इफ यू माइट हैव मिस्ड आउट ऑन दीज डिटेल्स और दीज अपडेट्स तो ये आज आपको हम बता रहे थे.
2: हाँ, वैसे और भी चीजें हैं जो 7:30 न्यूज हेडलाइंस में हम आपके लिए लेकर आएंगे.
1: डेफिनेटली फिलहाल गुड मॉर्निंग मैसेजेस आपके आए हैं तो जो थोड़ी देर बाद हम जरूर देखेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये भी याद दिला दे कि आज का जो बॉलीवुड न्यूज अपडेट ये भी रहेगा और पहला सवाल आपके लिए ये भी हम लेकर आएंगे.
0: Breakfast show with Vijay and Pooja.
3: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
4: Attention, hum passengers. Your next boarding call could take you to paradise. Listen out for your special hum boarding call for your chance to win to return a tickets to Vanuatu.

0: visit flysolomons.com. Accurate traffic.
1: Get up and Gold Coast.
2: Quite cloudy, but fine spells increasing today. A high of 13 degrees here. Cool day. Into the city, fast on motorways. Northern building at Silverdale and around Constellation Drive. 18 minutes from there to the city. Northwestern, 20 minutes. Massey to town. Bit of traffic west of Massey and building at Te Aratu and close to the city. Southern, 22 in from Mataco. Slow Papakura to Manurewa and building overall. Southwestern, fine.
1: Trade the winter chill for Gold Coast sunshine with great low fares at jetstar.com.
3: Kya baat hai us khane mein? जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के लिए
4: When customers are harder to win, visibility matters more than ever. If your signage is tired, unclear, or outdated, you're making it easy for people to walk on by. Speedy Signs helps businesses clean up their look with beautiful, professional signage that demands attention. From illuminated storefronts to full fleet graphics, they make sure people can see you, trust you, and remember you. Call 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz and grow your business faster.
5: बूढ़ा हो गया हूँ माते घर ढूंढते ढूंढते
6: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा
7: अब हमारा क्या होगा
8: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना फालतू की बातों से बचना
9: तो क्या करें
10: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन
11: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना
12: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
13: And award goes to Indelible Homes.
12: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite Master Builder.
14: Kahani of Indelible Homes.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
2: Let's go.
0: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4-NZPMI.
3: 23 मिनट रह गए हैं फिलहाल अब 7 बजने में और आज मंडे है तो शायद धीरे धीरे कई लोगों की सुबह हो रही है. मिस्टर माटा माटा का मैसेज 4:15 बजे सुबह आया. राम राम, जय श्री कृष्णा, हैप्पी मंडे एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे. आपको भी ये सुबह बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो.
4: आई फील लाइक व्हेन ही वेक्स अप और ये अपने सुबह की शुरुआत करते हैं तो जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठते होंगे स्विचेस ऑन द रेडियो तो वैसे इनको मैसेज कर देते ना. और उसके अलावा आज हमारे पास बॉबी मान जी, इनका भी मैसेज आया. ही ऑल्सो मैसेज अस क्वाइट अर्ली, 4 मिनट जब हो रहे थे सुबह 4 बजकर तब इनका मैसेज आया. इन्होंने कहा गुड मॉर्निंग पूजा एंड विजय, हैव अ लवली वीक अहेड, महादेव्स ब्लेसिंग्स, हर हर महादेव. थैंक यू सो मच बॉबी जी आपके भी मैसेज के लिए.
3: और आज काफी दिनों बाद गुड मॉर्निंग भाई विजय एंड अपीजे सल्लू गल्फ हार्बर फंगे पर उसे, हैव अ ग्रेट डे. आपको भी सल्लू, ये सुबह बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो.
4: गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग सुबह सुबह हमारे साथ शामिल हुए हैं 104.2 FM पर या फिर रोवा ऐप के जरिए अगर आप हमें सुन रहे हैं. थैंक यू सो मच आप सभी के साथ के लिए.
3: बॉलीवुड की कुछ लेटेस्ट खबरें हैं. काफी समय से शायद आप इंतजार कर रहे थे कि क्या हुआ, OTT प्लेटफॉर्म्स पर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है. तो अगर आपने वीकेंड पर मिस किया तो आपको बताएं कि फ्राइडे को OTT रिलीजेस में या फिर कौन कौन सी चीजें आई हैं. कॉकटेल 2, कृति सनोन, रश्मिका मंदना और शाहिद कपूर की जो फिल्म है ये आ चुकी है नेटफ्लिक्स पर.
4: ओके.
3: एंड इसके अलावा एक मेडिकल ड्रामा है जो कि 2611 मुंबई अटैक्स के बैकग्राउंड में सेटअप किया गया है. डॉक्टर्स, नर्सेस, हॉस्पिटल एम्प्लॉयज, जो एक अस्पताल है आई थिंक द कामा एंड एल्बलेस हॉस्पिटल, जिन्होंने एंट्रेंस ब्लॉक किया था, पेशेंट्स को कंसील किया था एंड यू नो लोगों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत कुछ किया था, उस पर ये कहानी है. कंगना रनौत ने जिसमें काम किया है.
4: भारत भाग्य विधाता
3: ऑन Z5. इसके अलावा एक अन्य जो मूवीज है उसकी ओर अगर देखें, सनी सैंडला की फिल्म जो है डोंट से गुड लक, इट्स ऑन नेटफ्लिक्स. आखिरी सवाल ये फिल्म जो है ये लाइन्स गेट प्ले पर आ चुकी है. इसमें संजय दत्त काम कर रहे हैं साथ में अमित साध जो है. इनका काम जो है काफी कमाल का है. सो इफ यू वांट यू कैन चेक दिस आउट.
4: वेरी इंटरेस्टिंग. तो याद रहे आप भी ये जरूर चेकआउट कर सकते हैं. और आज आपको बता दें एक और एक खबर जो आई इधर पड़ोस यानी ऑस्ट्रेलिया से भी. आफ्टर 30 years इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री रानी मुखर्जी जो है इन्हें एक ऑनररी डॉक्टरेट के खिताब से नवाजा गया ऑस्ट्रेलिया के ला ट्रोब यूनिवर्सिटी द्वारा, जिन्होंने रिकोगनाइज किया इनका कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा. एंड यू नो जो मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, इसके तहत इस साल इनको ये रिस्पेक्ट जो है ये दिया गया है. वाइल शी वॉज एक्सेप्टिंग हर अवार्ड और साथ ही साथ जहाँ पर ये एक स्पीच दे रही थी तो शी सीम्ड क्वाइट इमोशनल इन टीयर्स और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो है इसके जरिए ये भी शेयर किया. सो रानी मुखर्जी ये मेलबर्न या इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न जो है यहाँ पर आई थी और ऑफ कोर्स इससे जुड़ी डिटेल्स जो है ये आपने ओवर द वीकेंड काफ़ी देखे ही होंगे. बट राइट नाउ बॉलीवुड की बातें जो हमने की तो अब चलिए आज का पहला सवाल आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं. यू नो हम आपके साथ एक गेम खेलते हैं जहाँ पर यू हैव टू आइडेंटिफाई द मूवी. द लास्ट मूवी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन दैट वी डिड वाज फिजा, मेरे ख्याल से फ्राइडे को ना, आई थिंक फ्राइडे को हमने फिजा किया था कि जोश किया था, कुछ तो था, दोनों में से कोई एक था. बट एनीवेज आज चलिए देखते हैं क्या आज की हमारी फिल्म आप पहचान पाते हैं या नहीं. ये एक ऐसी फिल्म है जो इतिहास के पन्नों में शामिल हुई है फॉर द रॉन्ग रीजंस आई वुड से.
3: ओके.
4: और क्या आप इस मूवी को पहचान पाते या नहीं, आपको हम बताएंगे आज एक एक्टर का नाम, जिसके बाद आपको फिर दूसरे एक्टर का नाम और फाइनली तीसरे एक्टर का नाम हम रिवील करेंगे. एंड लेट्स सी क्या आप पहले एक्टर के नाम से इस मूवी को गेस कर पाते हैं या नहीं. सो द वेरी फर्स्ट नेम दैट वी हैव फॉर यू फॉर आवर बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे टुडे इज आमिर खान.
3: अच्छा,
4: आमिर खान तो ये पहला नाम है और देखते हैं कि क्या आप कोई भी फिल्म यू नो बता पाते हैं जो आज हमारी बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे है जिसमें आमिर खान हो और जो मूवी हमने यहाँ पर लिस्ट करके रखी है. और उसके बाद मतलब ये गाना जब फिनिश होगा विल सी, अगर किसी का सही जवाब नहीं आया तो हम दूसरा नाम रिवील करेंगे. एंड आई एम काइंड 100% श्योर कि अगर मैंने दूसरा नाम रिवील किया तो लोगों को आसानी
3: एक नाम से कैसे पता चलेगा, इतनी सारी फिल्में हैं आमिर खान की.
4: आई नो इट्स लाइक द गेसिंग गेम ना.
3: नहीं, बट इट बिकम्स वेरी अनफेयर आई फील.
4: इट्स नॉट अनफेयर, इट्स अ बिट डिफिकल्ट, दैट्स द थिंग.
3: इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स यू नो आप इतना बड़ा वो दे रहे हैं कि
4: लिस्ट.
3: हाँ, कि आमिर खान.
4: अच्छा चलो मैं एक और एक नाम दे देती हूँ. फैसल खान.
3: आमिर खान, फैजल खान. आई थिंक आई हैव सीन अ मूवी.
4: राइट, बी ए फियांसे, योर नेम 5599 पर भेजें.

0: अरिजीत सिंह की आवाज में बहुत ही खूबसूरत ये गाना आज आपके लिए हम पेश कर रहे थे और उम्मीद है कि आज का स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये आपने एंजॉय किया। फिलहाल समय की ओर देखिए तो बस 13 मिनट बाकी है 7 बजने में। जो सवाल हमने किया इंटरेस्टिंग आंसर्स आ रहे हैं इसके लिए और आई डिडंट थिंक कि ऐसे ऐसे आंसर्स भी इस फिल्म आज के हमारे बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे के लिए आएंगे। किसी ने हमारे पास अपना आंसर जो है ये भेजा है एस दिल, तो किसी ने हमारे पास मैसेज किया है अच्छा ये भी दिल है, किसी ने खौफ लिखा है, किसी का जवाब आया है एज राजा को रानी से प्यार हो गया, तो ऐसे ऐसे आंसर आप भेज रहे हैं। आई डोंट नो कि आप फैसल खान जो है कैसे इस नाम को रिलेट कर रहे हैं विद आमिर खान और कैसे आप किस मूवी का नाम जो है ये हमारे पास भेज रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, हमने आपसे कहा था ना कि हम आपको बताएंगे पहले एक नाम फिर दूसरा नाम और फिर तीसरा नाम, तो दो नाम हमने रिवील कर दिए आमिर खान एंड फैसल खान, अब तीसरा और सबसे ज़रूरी नाम रिवील करते हैं बिकॉज दिस विल मेक इट वेरी ईजी फॉर यू टू गेस। आज की हमारी बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे आमिर खान, फैसल खान एंड ट्विंकल खन्ना, कौन सी ये फिल्म हो सकती है? आमिर खान, फैसल खान एंड ट्विंकल खन्ना कौन सी फिल्म हो सकती है? बी ए फियान से ये नहीं 5599 पर आप जरूर भेजे।
1: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
2: चुप हो जाओ पापी हो, चुप हो जाओ।

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Accurate traffic.
2: Baby Bargains at the Warehouse.
3: Cloudy start, could be some light rain. Fine spells coming, a high of 13. Into the city, Northern Motorway, 20 minutes to town from Constellation Drive, 38 from Silverdale. Slow at Silverdale, Greville to Milford and Desmond. Northwestern, 20 in from Massey, bit of traffic from Greyland to the city. Southern, 26 in from Monaco, 50 from Drury. Slow Papakura through to Mount Wellington. Southwestern looking okay.
2: Stock up on all things baby at great bargain prices. On now at the Warehouse.
4: Professional Financials has saath aapke. Loan or insurance, ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
5: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process was simple and frank.
4: Business finance ya income protection ho. Har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
5: Professional Financial Solutions. Your future, our priority. Call 09846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
6: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
7: मुझे भी।
6: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
8: It's dream season at Beds R Us. Save up to 50% on selected sleepyhead beds like the Swiss Tech Precision. Half price, queen size, now $4,299. Check out these dream deals and more at Beds R Us Manukau and Phukeque, where dreams begin.
9: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Beds R Us Manukau. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
9: Breakfast catch up. Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
11: तो चलिए अब बारी है थ्रोबैक की, और थ्रोबैक से पहले आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं आज का हमारा बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे। हमने कहा था कि आपको गेस करना है। मैसेजेस काफ़ी आए। सनी जी थोड़ा नाराज़ हो गए सुबह सुबह। उन्होंने कहा कि माय नेम इज़ सनी, आई ऑलरेडी सेंट यू द आंसर बट यू डिडंट मेंशन माय नेम। तो सनी जी, कभी कभी क्या होता है कि मैसेजेस जब हमारे पास आते हैं उसे रिफ़्रेश करते हैं हम, तो बाय द टाइम वी डू द लिंक उसके बाद आता है। और कभी कभी क्या करते हैं हम कुछ मैसेजेस तब तक नहीं पढ़ते जब तक वी डोंट रिवील द करेक्ट आंसर। एंड आपके सिचुएशन में आपने सही जवाब भेजा था इसीलिए आपका नाम हमने नहीं पढ़ा, बिकॉज वी डिडंट रिवील द करेक्ट आंसर ना।
12: हाँ हाँ, so, अभी हम बिल्कुल नहीं बताएंगे। अभी भी हम आपका नाम रिवील नहीं करेंगे,
11: बिकॉज अभी भी कंपटीशन जारी है।
12: हाँ, आप किसी को नहीं बताएंगे कि आपका नाम सनी है, आपने टेक्स्ट किया।
11: वो नहीं कि इन्होंने क्या जवाब भेजा है। बट ऑन द अदर हैंड आपको गेस करना था कि आज की बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे कौन सी है। आमिर खान, फैसल खान, ट्विंकल खन्ना, क्लूज में ये नाम हमने दिए। कुछ मैसेजेस आए हमारे पास। राज ने जवाब भेजा है। सलू फ्रॉम गल्फ हावा फंगपुरवा, आपका भी मैसेज आया है। फजीलत है पापा टोयटोए से, आपने भी अपना जवाब भेजा है। नितिका का भी आंसर आया है। बट अगर आप सोच रहे हैं यू नो द आंसर एंड यू स्टिल हैव नॉट सेंट इन, आप बीएफ लिखे सबसे पहले, फिर अपना आंसर, अपना नाम और 5599 पर हमारे पास सेंड कर दें।
12: वक्त है अभी भी आपके पास, जिस दौरान अपने आंसर्स जो है ये आप हमारे पास भेज सकते हैं। वैसे आज 17th of August है। अगर आपका या आपके किसी स्पेशल का बर्थडे है या शादी की सालगिरह है तो मैसेजेस हमें जरूर भेजें।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 7.6 degrees temperature Super City Auckland mein filhal hum feel kar rahe hain. High of 12 expected hai baad mein chalkar. Overnight temperature rahega 5 degrees tak. Mausam ke liye kaha gaya hai partly cloudy aur sunset hoga 5:49 PM par.
0: Breakfast show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Good morning. Morning Madness.
1: Hello, Kiara. Good morning. Namaste and welcome to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. The Breakfast Show with Vijay and Pooja. Aapke liye hum lekar aa rahe hain. Aur filhal 4 minute ho rahe hain. 7 bajkar hamari studios mein Monday 17th of August ki ye subah. Aap sabhi ko bahut bahut baar mubarak ho.
3: Abhi इस घंटे आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है ये हम लेकर आने वाले हैं. 7:30 बजे न्यूज़ हेडलाइंस तो है ही, उसके अलावा कई अन्य खबरें जो है ये भी हम आपको देंगे. बट स्टार्टिंग ऑफ दिस आवर, एक स्टोरी मैं पढ़ रहा था एंड उसके बाद, क्योंकि मैंने ऐसी कोई खबर अपनी लाइफ में कभी नहीं सुनी
1: है. हाँ, ऐसा क्या है?
3: एक पोलर बेयर जो है उसको नींद से उठाने के जुर्म में एक व्यक्ति को तकरीबन 4.5-5 लाख रुपए का फाइन किया गया है.
1: तो नींद में से उठाया क्यों उसको?
3: क्योंकि वो सो रहा था.
1: हाँ, but why bother an animal who's sleeping? Like, उससे आपका क्या लेना देना?
3: वो सारी चीजें मुझे नहीं पता. कभी आपने सुना है किसी जानवर को उठाने के लिए,
1: जगाने के लिए फाइन
3: हुआ?
1: नहीं, मैंने ये तो नहीं सुना. बट आई डू अंडरस्टैंड कि अगर आप किसी भी जानवर को उनके नेचुरल हैबिटेट में जाकर डिस्टर्ब करते हो, इट्स नॉट समथिंग एडवाइजेबल, एंड उस वजह से जरूर फाइन वगैरह हो सकता है.
3: तो एक बोट ऑपरेटर है, इनको 50,000 नॉर्वेजियन क्रोना, जो वहाँ का करेंसी है, ये फाइन किया गया है. क्योंकि उस बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार उसने अपने बोट का जो हॉर्न है ये बजाया था. हॉर्न बजाया था जिसकी वजह से ये पोलर बेयर जाग गया. इसी महीने पूर्व ये घटना जो है ये घटी ऑफ द कोस्ट ऑफ स्वालबार्ड, जो कि एक छोटा सा आइलैंड है नॉर्वेजियन रीजन नॉर्वे में. और ये सेल कर रहे थे थ्रू लोकल एरिया एंड इंडिविजुअल्स ऑन द शिप, इन्होंने पोलर बेयर को देखा जो किनारे पर रेस्ट कर रहा था. वांटिंग टू सी द एनिमल मूव अ पर्सन ऑन द वेसल, उन्होंने जानबूझकर
1: ये हॉर्न बजाया और जिसकी वजह से उनका नींद डिस्टर्ब हुआ एंड वो जाग गए
3: और अचानक से उठकर भाग गए वहां से.
1: शॉक हो गए होंगे ना उस आवाज से.
3: इस इंसिडेंट के बाद लोकल अथॉरिटीज को इसकी जानकारी दी गई और वहां के जो गवर्नर है उन्होंने इमीडिएट लीगल एक्शन लिया. और जो गवर्नर है लास फोर्स, उन्होंने कहा कि व्हेन द वेसल सेल्ड पास्ट द एनिमल, उसके ऑक्युपेंट्स आर सेड टू हैव स्पॉटेड अ पोलर बेयर स्लीपिंग ऑन द लैंड. अ पर्सन ऑन बोर्ड देन यूज्ड द शिप्स फॉगहॉर्न, वेकिंग द एनिमल व्हिच मूव्ड टू अनदर लोकेशन. और वहां का जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत इट इज स्ट्रिक्टली इलीगल टू नीडलेसली डिस्टर्ब, पर्सू और अट्रैक्ट पोलर बेयर्स.
1: तो देयर यू गो, क्यों आपने ये हरकत की, फाइन तो भाई करना ही पड़ेगा. फिलहाल 6 मिनट हो रहे हैं 7 बजकर और वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग अगर अभी भी हमारे साथ आप शामिल हुए हैं. रिमाइंडिंग यू ऑल, हमारा हम बोर्डिंग कॉल इज अप फॉर यू ऑल कि आप इसमें पार्ट ले और जीत सके टू रिटर्न एयर टिकट्स टू वनवातु विद सॉल्मन एयरलाइंस प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी थैंक्स टू सॉल्मन एयरलाइंस फ्लाइंग 4 times ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू वनवातु. विजिट flysolomons.com flysolomons.com और टर्म्स एंड कंडीशंस जो है ये दे डू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर प्रमोशन. पर ये याद रखें कि 8 AM टू 9 AM के बीच, 11 AM टू 12 PM के बीच, 1 PM टू 2 PM के बीच और 5 PM टू 6 PM के बीच एनी टाइम आपके लिए प्ले हो सकता है एक स्पेशल बोर्डिंग कॉल. एंड व्हेन दैट प्लेज आपके पास होगा 60 मिनट्स का टाइम टू रश टू रोवा, जहां पर आपको एंटर कोड नाउ एक टैब जो ये दिखेगा और उसमें आपको जाकर टाइप करना होगा बोर्ड नाउ. और ये टाइप करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन टू सबमिट. वंस यू सबमिट दिस पर्टिकुलर बोर्ड नाउ कोड तो आप जो है इस ड्रो का हिस्सा बन जाएंगे, जहां पर टू रिटर्न ईयर टिकट्स टू वनवातु और $1,000 स्पेंडिंग मनी जो है इस ड्रो में आप शामिल हो सकते हैं टू विन दिस. नाउ रिमेंबर, ये स्पेशल बोर्डिंग कॉल आपके लिए जब प्ले होगा तो ऐसा नहीं कि हम आपको बताएंगे कि अच्छा चलो नेक्स्ट हम आपके लिए स्पेशल बोर्डिंग कॉल प्ले करने जा रहे हैं. इट विल जस्ट प्ले इन बिटवीन. हो सकता है जैसे हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं उसके ठीक बाद गानों के बीच में कभी भी प्ले हो सकता है. सो दैट्स व्हाई यू नीड टू पे अटेंशन. एंड 60 मिनट्स का टाइम फिर हम आपको देते हैं ना कि आप जाकर कोड एंटर
3: करें. कोड बस इतना ही है. बोट ना अलग अलग कोड नहीं होता है
1: और एक ही कोड है.
3: हाँ, और अगर आप को पेज ढूंढने में डिफिकल्टी हो रही है कि कहाँ पर जाकर आपको कोड एंटर करना है तो पहले से लिंक आप हासिल कर ले. यू विजिट आवर फेसबुक पेज, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा. या फिर आप BC बोर्डिंग कॉल का जो शॉर्ट फॉर्म है वो लिखकर 5599 पर हमें भेज दे और लिंक आपके पास मिल जाएगा. यू विल बी रेडी एज सून एज यू हियर द बोर्डिंग कॉल. हर दिन में 4 मौके आपको मिलते, जैसे हमने आपको आई थिंक फ्राइडे को बताया था ना कि दे आर टू पीपल
1: जिन्होंने हर बोर्डिंग कॉल के दौरान बोर्ड किया है, मतलब बोर्ड नाउ कोड जो है ये एंटर किया है.
3: इतने ध्यान से वो सुन रहे थे कि दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने हर एक दे हैवंट मिस्ड आउट अ सिंगल बोर्डिंग कॉल. और जितनी ज्यादा आपकी एंट्रीज होती है उतने ज्यादा जीतने के
1: चांसेस. एग्जैक्टली. सो मेक श्योर आप बोर्डिंग कॉल जो है ऑन द ब्रेकफास्ट शो, आपको हमने टाइम बता दिया 8 AM to 9 AM के बीच, जरूर सुनिएगा. एंड वंस यू हियर दैट आप अपना अपना जो बोर्डिंग कॉल है इसके लिए स्पेशल कॉल कोड बोर्ड नाउ ये एंटर कर सकते हैं. बट लिंक चाहिए कि कहां पर ये करना है तो BC लिखना है सबसे पहले, फिर आप हमारे पास 5599 पर भेज दें. पिछले घंटे बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे हमने कहा था आपको गेस करने को और 2000 में आई थी एक ऐसी फिल्म जो साल की मोस्ट हिस्टोरिकल मूवी साबित हुई फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस बिकॉज ये फिल्म बहुत बुरी तरह से बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर पिटी. और दिस इज द मूवी जिसकी वजह से कहा जाता है अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की शादी हुई थी. बिकॉज अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना को प्रपोज किया एंड ट्विंकल खन्ना हैड सेड कि अगर ये फिल्म चल गई, बिकॉज शी वॉज एक्चुअली श्योर कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी चलेगी, तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी. और अगर ये फिल्म जो है पिट गई तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी. एंड अपेरेंटली द फिल्म डिडंट डू वेल एट द बॉक्स ऑफिस एंड शी गॉट मैरिड टू अक्षय कुमार एज शी हैड सेड और शी हैड प्रॉमिस्ड. और उसके बाद इन्होंने एक्टिंग भी छोड़ दी बिकॉज शी रियलाइज्ड कि शी इज नॉट अ गुड एक्ट्रेस. वो हर बार ये कहती है कि वो अच्छी एक्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं है. एंड द मूवी आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे इज मेला, जिसमें काम किया था आमिर खान, फैसल खान और ट्विंकल खन्ना ने एक साथ, राज, सनी, सल्लू और फजीलत, साथ में नितिका. आप ही वो लोग थे जिन्होंने हमें सही जवाब जो है ये दिया था.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chup ho jao, papi ho. Chup ho jao.
0: Rashi Vibes.
2: सबसे पहले मेष यानी एरिस ऑफिस जो है जहाँ तक हो सके ऑफिस में जो ऑफिस पॉलिटिक्स चलता रहता है उससे आप दूर रहें. बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए दिन अच्छा है और आज लोन्स वगैरह से छुटकारा आपको मिलेगा या फिर कोई रास्ता आप निकालेंगे इससे छुटकारा पाने का.
3: वृषनी टोरस आपके लिए कहा गया है जहाँ पर नौकरी करते हैं वहाँ पर थोड़ा सावधान आपको रहना पड़ेगा. कोई भी फैसला करने से पहले कोई भी काम में खुद को इन्वॉल्व करने से पहले आज आपके लिए ये भी बताया गया है कि कुछ गलत फहमियां थी जो आपके लाइफ में मुश्किलें बढ़ा रही थी तो ये सुलझेंगी. लेकिन साथ में कुछ और गलत फहमियां हो सकती है जिससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं. सो इससे बचने की पूरी कोशिश करें. अचानक से कुछ बड़े खर्चे सामने आएंगे जिसकी वजह से फाइनेंशियली आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है.
2: मिथुन यानी जेमिनी आज काम पर अच्छा खासा दिन आपका गुजरेगा और आज आपकी कैपेबिलिटी की वजह से कोई बड़ा डील हो सकता है. संबंधों में मजबूती आप नोटिस करेंगे और पैसों का फायदा भी हो सकता है.
3: वैसे आज कर्क यानी कैंसर आपके लिए कहा गया है जीवन साथी और भाई और बहनों के सहयोग से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट जो है कि प्राप्त होगा. आपके लिए कहा गया है कि आपका हेल्थ एकदम अच्छा है और यू नो यू जस्ट ऑन द राइट पाथ. प्रोबेबली आज आपने कुछ जरूरी फैसले लिए हैं अपनी तबीयत को लेकर तो इसी तरह से इस रास्ते चलते रहिए आपको सफलता जरूर मिलेगी. और नौकरी में जिस तरह से आप अपने काम को अंजाम दे रहे हो जितनी मेहनत और लगन से आप काम कर रहे हो मेक श्योर टू कीप डूइंग दैट बिकॉज यू आर बीइंग नोटिस्ड.
2: फिर कन्या यानी वेगो या सिंह यानी लियो आज ऑफिस में आपके काम को प्रेस किया जाएगा. खर्च जो है कुछ ज्यादा बढ़ सकते हैं और फाइनेंशियली वैसे दिन ठीक ठाक ही होगा.
3: आज कन्या यानी वर्गो आपके लिए कहा गया है कि काम का दबाव जो है ये आप पर बढ़ सकता है ये रह सकता है इनफैक्ट जिसकी वजह से थोड़ा प्रेशर आप फील करेंगे. एंड इफ यू कैन शेयर द लोड तो डेफिनेटली अप्रोच सच पीपल जो आपकी मदद कर सकते हैं. उधारी के मामले में लेन देन के मामले में आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा. इफ यू कैन गो विदाउट टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ लोन्स तो मेक श्योर यू डू दैट और इससे जितना आप दूर रहेंगे उतना आपके लिए फाइनेंशियली फ्यूचर वाइज अच्छा रहेगा.
2: तुला यानी लिब्रा पार्टनर्स के साथ विश्वास और मजबूत होगा. फंसा हुआ पैसा आपको मिल सकता है और आज हो सकता है कि आपको सोने में कुछ डिफिकल्टीज का सामना करना पड़े. ऑफिस में आज क्रिएटिविटी आपकी काफी बढ़ेगी.
3: आज वृश्चिक ने स्कॉर्पियंस के लिए कहा गया है कि कठिन से कठिन प्रोजेक्ट जो है ये आप अपनी सूझबूझ से पूरा कर पाएंगे. बिजनेस के मामले में उम्मीद से ज्यादा फायदा आपके हाथ लगेगा और जीवन साथी का सपोर्ट आपको मिलेगा.
2: सजिटेरियस नए ऑफिस या नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है. लव लाइफ आपका बढ़िया रहेगा. पैसों का फायदा हो सकता है और टेंशन से छुटकारा मिलेगा.
3: मकर यानी कैप्रिकॉर्न जहां पर नौकरी करते हैं वहां पर कुछ हटके काम जो है ये आज होंगे एंड यू'ड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन दीज थिंग्स. बिजनेस है अगर जो आपका खुद का तो आर्थिक मजबूती जो है आपकी होगी बिकॉज दिस डे कुछ जरूरी फैसले आप लेने वाले हैं अपने सर्टन चीजों को अंजाम देते हुए प्रॉफिट कमाने के लिए.
2: कुंभ यानी एक्वेरियस आज कुछ नया काम जो है ये कर सकेंगे और फैमिली ज़रूरतों पर पैसे स्पेंड होंगे. हो सके तो अपनी आंखों को थोड़ा आराम दें, नींद पूरी कर ले और व्हीकल चलाते समय इस बात का ख्याल रखें स्टे विद इन द स्पीड लिमिट्स.
3: और आखिर में मीन यानी पाइसेस आपके लिए कहा गया है कि कुछ नए प्लान्स आप बना रहे हैं स्पेशली जहाँ पर आप नौकरी करते हैं वहाँ पर नोटिस होने के लिए तरक्की हासिल करने के लिए तो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस यू आर गेटिंग things done the right way. और साथ में आपके लिए ये भी कहा गया है कि अचानक पैसे के मामले में फायदा हाथ लगेगा जिससे you'd be able to receive some financial benefits जिसकी वजह से कुछ चीज़ें थी जो आप करना चाहते थे but financially you were stuck, you were you know lacking behind तो ये आप पूरा आप कर पाएंगे. ये थे आज के आपके राशि वाइब्स. उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही अच्छा और कमाल का गुजरे और इसी उम्मीद के साथ साथ याद दिला दे इट्स 21 मिनट्स आफ्टर 7 फॉर नाउ. कमिंग अप नेक्स्ट आपके लिए हम लेकर आएंगे सेलिब्रिटी अलार्म.

0: something to look forward to with the American Express Gold Rewards business card. You can earn 100,000 bonus points worth up to $750 in Amex travel. Plus, enjoy 2 priority pass visits each year in over 1,300 airport lounges worldwide. Search Amex Business and turn payments into points. Offer ends 14th of December 26, 1.5K minimum spend in the first 3 months. New Amex card members only. T's and C's for membership rewards and lounge exclusions apply. Priority pass enrollment required.
1: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, e-waste हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे तमाकी तुरुकी ओल्टुगेदर ओकलैंड।
2: Don't miss the Volkswagen 5-day sale on now at your local dealership. Get exclusive offers across the range and go in the draw to win one of 40 Samsung OLED TVs worth 7699. Offer ends August 22nd. T's and C's apply.
3: Volkswagen.
4: It's dream season at Beds R Us. Save up to 50% on selected sleepyhead beds like the Swiss Tech Precision. Half price, queen size, now 4299. Check out these dream deals and more at Beds R Us Manukau and Phukeque, where dreams begin.
5: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
6: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Beds R Us Manukau. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
7: Celebrity Alarm. Hit it.
8: चलिए सेलिब्रिटी अलार्म की बारी आई है और अभी फिलहाल 25 मिनट्स आफ्टर 7 थोड़ी देर बाद वैसे न्यूज़ हेडलाइंस ये भी आपके लिए हम लेकर आएंगे. तो आज का सेलिब्रिटी अलार्म बहुत ही छोटा होने वाला है और थोड़ा ट्रिकी होने वाला है बिकॉज इट्स अ वॉइस दैट इज नॉट ऑफ समवन जो अभी राइट नाउ
9: एक्टिव है.
8: आई थिंक एक्टिव है, आई थिंक, बट ऐसे एकदम नई नई आवाज़ नहीं है ये. ये जो भी जिनकी भी आवाज़ है काफ़ी एक्टिव थी पहले.
9: Okay.
8: बहुत वेल नोन थी पहले, लेकिन अभी उतना शायद आपको देखने सुनने को नहीं मिलता होगा, लेकिन फिर भी अ वेल नोन पर्सनैलिटी सेलिब्रिटी. क्या आप इनकी आवाज पहचान पाते या नहीं? एंड हियर वी गो.
10: आ गए ना आंखों में आंसू छोटी बच्ची की तरह, दूध तो आपको पीना चाहिए.
8: तो कौन हो सकती है ये, क्या लगता है आपको?
9: सुनी सुनी आवाज है,
8: बहुत बहुत पॉपुलर आवाज है ये बाय द वे.
9: हाँ, मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन
8: किसकी आवाज है.
9: हाँ, किसकी आवाज हो सकती है.
8: अच्छा, कितना सोच रहे हैं आप?
9: बहुत.
8: अच्छा. तो अगर आपको अंदाजा लगा है थोड़ा थोड़ा कि ये किसकी आवाज है, आप हमारे पास अपना जवाब जो है ये भेज सकते हैं. BF space आपका आंसर, आपका नाम, 5599 पर आपको सेंड करना होगा. आई हैव जस्ट ट्राई टू प्ले अ ट्रिक. द ट्रिक इज कि नॉर्मली हम इतने यू नो इजी वॉइसेस लेकर आते हैं या कुछ ऐसे लोगों की आवाज लेकर आते हैं वो वेरी रेलेवेंट, वेरी एक्टिव इन टुडेज टाइम. तो इसीलिए वो थोड़ा इजी हो जाता है पहचानने में. तो सेलिब्रिटी अलार्म है. अब जरूरी नहीं कि ये जो सेलिब्रिटी है ये अभी राइट नाउ इन योर फेसेस हो तभी आप इनको ये वॉइसेस जो है ये सुने. सेलिब्रिटी का मतलब समवन यू नो हु इज बीन अ सेलिब्रिटी. तो इसीलिए हमने सोचा आज इनकी आवाज आपको सुनाए. देयर वी गो, एक बार फिर आपको सुना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा. दिस इज द वॉइस, यू हैव टू गेस कि ये कौन है.
10: देख देख देख देख, आ गए ना आंखों में आंसू छोटी बच्ची की तरह, दूध तो आपको पीना चाहिए.
8: तो जल्दी जल्दी बताइए कौन है ये. अपना आंसर, अपना नाम हमारे पास आपको भेजना है 5599 पर. आज देखना ये है कि क्या कोई भी इनकी आवाज पहचान पाता है या नहीं.
11: Hollywood's most wanted.
12: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ.
13: मैं लाऊं अपना A game.
11: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: News Headlines.
1: सुबह के मुख्य समाचारों में वैतोमो के एक रूरल इलाके में मुकावीती रोड पर एक जलती हुई कार के अंदर से एक व्यक्ति की लाश बरामद हुई है, जिसे पुलिस अनएक्सप्लेन्ड डेथ के रूप में ट्रीट कर रही है। सुबह लगभग 6 बजे आग की खबर मिलने पर फायर एंड इमरजेंसी टीम ने मौके पर पहुंचकर कार के अंदर से या कार के अंदर व्यक्ति की लाश देखी और तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। उधर हैमिल्टन के एक इलाके में लार्ज स्केल इंसिडेंट के दौरान 4 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक व्यक्ति की कंडीशन अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है। इंसिडेंट के दौरान एक विक्टिम जान बचाने के लिए पास के घर में घुसा, जहां ऑफेंडर ने उसका पीछा किया था, जिसके बाद घर के एक ऑक्युपेंट ने फायर आर्म से शॉट फायर कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 23 साल के एक आदमी को अरेस्ट किया है, जिसे आज हैमिल्टन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनपीसी के मैचेस जो है ये सप्ताहांत एक बार फिर खेले गए। नॉर्थलैंड की जीत तरनाकी के खिलाफ 42-0 से हुई। कैंटरबरी 33, बे ऑफ प्लेंटी 28। ऑकलैंड की हार होक्स बे के खिलाफ 44-31 से हुई और ओटागो ने मनवातु को 29-27 से हराया। वाइकाटो की हार साउथलैंड के खिलाफ 32-31 से हुई, जबकि टेस्मन ने काउंटीज मेनकाउ को 50.235 से हराया। एनआरएल के एक मैच में वॉरियर्स ने सप्ताहांत ब्रोंकोस को 40.26 से हराकर एक बड़ी जीत हासिल की और पॉइंट्स टेबल पर टीम फिलहाल तीसरे स्थान पर बनी हुई है। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
3: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
4: Your holiday boarding pass could be waiting.

0: Papakura traffic.
1: Papakura Toyota mid-year sale.
2: Fine spells increasing, but a cool high of 13. Into the city, Northern Motorway, 25 minutes from Constellation Drive to town, 45 from Silverdale. Heavy at Silverdale, slow Constellation to the bridge, a little heavy at Takapuna. Northwestern, half an hour from Massey to the city, slow patches from there, heavy at Te Aratu and St. Luke's. Southern 37, Manukau to town, slow from Papakura, bit heavy at Manukau. Southwestern, slow northbound at Whitty.
1: Big savings in store on quality used and selected demo Toyotas. Visit Papakura Toyota today.
3: Knock knock, it's me Dash, helping rugby fans get ready early for game day. Get your official Adidas All Blacks supporters gear on DoorDash, and you could win an epic All Blacks watch party delivered by rugby legends. Adidas on DoorDash. Now that's a good call. T's and C's apply.
4: At Woolworths, we're helping you get more value every day. Like New Zealand-grown loose pre-ripened avocados, a fresh deal at just 99 cents each. And Huggies Jumbo Nappies 64 to 108 pack, just $26.89 per pack. T's and C's apply.
5: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
6: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर ले लें.
5: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
6: पर डेवलपमेंट के पैसे
5: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा. NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800 4NZPMI.
7: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम.
8: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
7: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है.
8: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है.
7: और दैट्स नॉट गुड. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर. और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं.
9: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800 787 111. रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
10: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए. वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस. बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है. तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए.
11: The beat of Bollywood.
12: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
11: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
13: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
11: Birthday greetings.
14: Iska birthday bhai?
15: Mera bhi birthday hai, chalo line mein aa jao.
14: Happy birthday to you.
16: A very happy birthday, many many happy returns of the day. आपको विश करने का समय हो रहा है. तो आज सबसे पहले हैप्पी बर्थडे मीनाक्षी लक्ष्मीदास पटनी जी. ग्लेन इडन में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं आप. और सुनंदा इनाम के जी, आप ब्लॉक हाउस बे में अपना बर्थडे मना रही हैं. आप दोनों को अ वेरी हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे. हमारी पूरी हम टीम की ओर से, आपके दोस्तों की ओर से, रिश्तेदारों की ओर से, ये दिन आपको बहुत बहुत पार मुबारक हो.
17: Happy birthday to my hubby Munesh. बहुत सारा प्यार मिला है from your two boys, माहिर और माविक. पत्नी है आपकी कामिनी. और जितने भी परिवार वाले हैं, जितने भी दोस्त हैं, सभी मुनेश आज आपको याद कर रहे हैं. हम सभी की ओर से भी आज का ये स्पेशल डे आपको अनेकों बार शुभ और मुबारक हो.
16: अगर आज 17th अगस्त को आप भी अपना बर्थडे, अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं, तो हमारी ओर से ये स्पेशल दिन खास आपके नाम करते हैं.

0: true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4NZPMI.
1: काफी इंटरेस्टिंग रहा आज का सेलिब्रिटी लाम. आंसर्स तो कई आए लेकिन किसका सही किसका गलत ये अभी बताने का टाइम हो रहा है. नीतू कपूर ये 8610 आपने लिखकर भेजा है. मीनाक्षी शेषाद्री, राहुल पांडे आपने कहा है. भारती का जवाब है बिंदु. शेल्विन आपने पता नहीं क्या ही लिखा है. स्टमक आनंद, आई डोंट नो,
2: मे बी वो शोमा आनंद लिखने की कोशिश कर रहे थे.
1: ऑटो टाइप भी ना है. शोमा आनंद का स्टमक आनंद अगर बना दिया तो इट्स रियली हिलेरियस. बट शेल्विन आपके भी जवाब के लिए थैंक यू. पद्मनी कोलेपुरे ये विक्की आपने लिखकर भेजा है. गुड मॉर्निंग विजयन पूजा फ्रॉम सुख एंड कुश, थैंक यू सो मच आपके भी मैसेजेस के लिए. मैंगरी ईस्ट से आपने अपना मैसेज हमें सेंड किया है. सो कमाल की बात ये है कि हमने आज आपको एक आवाज़ सुनाई सेलिब्रिटी अलार्म में. हमने कहा इनको आप गेस कीजिए. कहीं ना कहीं अ लॉट ऑफ यू हैव गॉट द ईरा करेक्ट, द टाइम करेक्ट कि अच्छा उस टाइम की कोई एक अदाकारा हो सकती है. एंड यू ऑल्सो अंडरस्टूड कि कोई एक्ट्रेस है बिकॉज ऑफ द डायलॉग डिलीवरी. लेकिन नाम किसी ने भी अभी तक सही नहीं दिया.
2: अच्छा, ये सारे के सारे आंसर्स गलत हैं.
1: सारे के सारे जवाब गलत हैं.
2: फिर से आवाज सुनाओ मेरे को.
1: हियर वी गो.
3: देख देख देख देख, आ गए ना आंखों में आंसू छोटी बच्ची की तरह. दूध तो आपको पीना चाहिए.
1: तो ये कौन हो सकती है आपको बताना है. मैं कोई क्लू नहीं देना चाहती बिकॉज इट विल बी लाइक हेल्पिंग यू आउट टू गिव द आंसर ऐसे ही. और मजा आएगा अगर ये आवाज कोई नहीं पहचान पाया तो मैं कल एक बार फिर इनकी आवाज लेकर आऊँ ना.
2: तो अभी आपके पास अगले गाने तक का टाइम है. आप कोशिश करें, लेट्स सी आप में से कोई सही जवाब दे सकता है या नहीं. नीतू कपूर नहीं है, मीनाक्षी नहीं है,
1: मैंने बता दिया वो.
2: बिंदु नहीं है.
1: हाँ.
2: स्टमक आनंद भी नहीं है.
1: स्टमक आनंद
2: शोमा आनंद नहीं है. पद्मिनी कोलापुरी नहीं है.
1: राइट,
2: कौन हो सकती है ये. BF आंसर
1: और नाम 5599% करें. बट ये याद रखे कि यू गाइज आर ऑन द राइट ट्रैक. राइट ट्रैक इज इन टाइम. जिस जमाने की एक्ट्रेसेस को आपने पकड़ा है वो सही है और एक्ट्रेस है ये आपने सही पकड़ा है. लेकिन कौन है ये देखते हैं क्या कोई आज पहचान पाता है या नहीं. बिकॉज वी हैव नॉट गॉट अ सिंगल करेक्ट आंसर. अगर कोई भी इनकी आवाज नहीं पहचान पाया तो मजा आएगा क्योंकि इनकी आवाज के साथ हम कंटिन्यू करेंगे तब तक जब तक कोई इनको पहचान डाले.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. इधर उधर जाने से बचना. Call करो 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: गुड मॉर्निंग. हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स पर आपके लिए लेकर आ रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और आज है मंडे 17th of August. मॉर्निंग मैडनेस आपके लिए जारी है. और इधर हमने आज के सेलिब्रिटी अलार्म के बारे में आपसे बातें की, आवाज़ सुनाई. लास्ट मैसेज जो हमने पढ़ा था तब तक किसी का भी सही जवाब नहीं आया था. फिर उसके बाद में कुछ और मैसेजेस आए हैं. जीना तमान ये लिखकर भेजा है 1690 आपने,
3: और उसके बाद आपने भी अपना जो जवाब है ये हमें भेजा है. मोनू श्रीदेवी आपने लिखा है, और 4945 आपने भी श्रीदेवी लिखा है.
2: और इसके अलावा रिबेका ने कहा है करिश्मा कपूर, साथ में मौशमी चैटर्जी, पिंकी का आंसर आया है.
3: मोविन टीना मुनीम, और साथ में अमृता ने बिंदु जी का नाम दिया है. हाँ, वो शोमा आनंदी लिख रहे थे ना शलवीन.
2: हाँ. फिर विनील ने मनुरेवा से हमारे पास मैसेज किया है एज जयश्री. कौन है जयश्री?
3: जयश्री टी.
2: मतलब?
3: मतलब क्या नाम है एक एक्ट्रेस का जयश्री टी?
2: अच्छा, I'm sorry, I didn't know that.
3: मुझे लगा you don't know जयश्री टी?
2: No, I didn't know that. मुझे लगा कि जो खिचड़ी में जो कैरेक्टर नहीं है जयश्री.
3: आपको पता ही नहीं है कि जयश्री क्या नाम है?
2: जयश्री टी.
3: हाँ, आपको पता नहीं है कि जयश्री टी कौन है?
2: नहीं,
3: इससे पहले आपने कभी भी जयश्री टी नाम जो
2: देखा है ये इनको? अरे ये तो वो है यार,
3: जयश्री टी.
2: हाँ, ये अर्नब सिंह रायजादा की नानी है. वो कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में नहीं आएगा, खैर छोड़िए. उसके बाद हमारे पास किसका मैसेज आया है? चरिशा का.
3: हाँ, चरिशा ने कहा है, क्या कहा है?
2: हिमानी शिवपुरी.
3: ये कौन है?
2: ओहो, अच्छा आपको ये नहीं पता. एनीवे, सलेशनी ने मनुरेवा से मैसेज किया है हेमा मालनी, दिनेश ने कहा है श्रीदेवी, राहुल पांडे ने कहा है शिल्पा शेट्टी. क्या बात है भाई. और देव ने कहा है पद्मनी कोल्हापुरी, और शेल्विन ने एक और एक जवाब हमारे पास भेजा,
3: रति अग्निहोत्री.
2: मैं बहुत खुश हो रही थी, आपने बड़े बड़े भी दिया, लाइक कांट यू जस्ट वेट फॉर वन मिनट.
3: एक लाइन से हम पढ़ते जा रहे, मैंने भी पढ़ दिया.
2: मैंने उनका मैसेज फॉर अ रीजन इग्नोर किया था दैट टाइम ना. बट एनीवेज, सो या आई थॉट कि शायद ये आवाज हम पूरे वीक कंटिन्यू करेंगे, बट शेल्विन यू वुडंट लेट मी डू दैट. एंड आपने सही सही पहचाना, इट वाज रति अग्निहोत्री. इनकी एक फिल्म आई थी जिंदगानी, उसी फिल्म का ये एक डायलॉग था, एक लाइन थी छोटी सी जो उन्होंने बोली थी. So, रति अग्निहोत्री द करेक्ट आंसर. आपने आज की सेलिब्रिटी को पहचाना. द ओनली पर्सन हु गॉट इट राइट वाज शेल्विन, व्हिच इज व्हाई कल एक नई आवाज लानी पड़ेगी यार.
3: तो आप तैयार रहें कल. इन द मीन टाइम याद रखें कि हमारा फेसबुक पेज जो है ये विजिट करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू विन $300 कैश रक्षाबंधन के मौके पर.
2: हमारा सोशल मीडिया कंपटीशन, जहाँ पर आप बस बताइए कि कोई एक ऐसी चीज जो आपके पास हो और वो बहुत ही मीनिंगफुल है, ये स्पेशल है, बिकॉज उससे आपके यू नो कुछ मीठे मीठे यादें जो ये जुड़ी हुई है विद योर ब्रदर और योर सिस्टर, यू नो दैट सिबलिंग वाला जो रिश्ता होता है, उससे उस ऑब्जेक्ट की कुछ चीज़ें हैं, कुछ वैल्यूबल मेमोरीज हैं जो उससे जुड़ी हैं, अगर वो अगर अभी भी आपके पास हो. जैसे फॉर एग्जांपल,
3: आपके पास है कुछ ऐसी चीज जो आपके भाई ने आपको दी हो?
2: मेरे भाई ने, हाँ मेरे भाई, मतलब मेरे भाई ने मुझे, नॉट मेरी, मैंने कहा मेरे भाई ने, उन्होंने मेरे को साड़ियाँ गिफ्ट की है रक्षाबंधन के लिए काफ़ी साल पहले. तो वो सारी साड़ियाँ मेरे पास आज भी है. एक साड़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने बहुत बार पहन ली उसको, बट आई स्टिल हैव इट.
3: ओके.
2: हाँ, तो वो एक चीज़ है. जब वो बहुत छोटा था तब पैसे नहीं कमाता था, तो उस टाइम का कुछ है नहीं उसके पास, आई मीन उसका मेरे पास. बट या देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हम सब रखते हैं ना. एंड कभी कभी ये भी होता है भाई और बहनों के बीच में, लाइक आजकल तो यार यूनिसेक्स कपड़े आते हैं, पहले भी ऐसा था, जो जैकेट्स हुआ करते थे, जो टी शर्ट्स होते थे, इट वॉज बेसिकली दोनों पहन सकते हैं. तो अगर आपने कभी कोई टी शर्ट वगैरह चोरी करके रखी हो अपने भाई की जो आपको पसंद है, आपने उनको वापस नहीं की है बिकॉज यू लव्ड वेयरिंग इट, और वो भी अगर आपके पास हो, नो इट्स अ मेमोरी बिकॉज यू केप्ट इट बिकॉज यू लव्ड इट, बट इट डजंट बिलोंग टू यू इनिशियली, वो आपका था ही नहीं. तो ऐसे ही कुछ चीज़ों के फोटोज आपके पास, चीज़ें हैं तो उनके फोटोज लीजिए और फोटोज को पोस्ट कीजिए हमारे रक्षाबंधन सिबलिंग्स बॉन्ड वाले इस पोस्ट के कॉमेंट सेक्शन में.
3: और वहाँ पर इसकी छोटी सी कहानी भी आप डाल दे दो तीन लाइन का, और अपने भाई या बहन को टैग कर दिए. गोइंग टू द ड्रॉ, फ्राइडे 28 अगस्त को ड्रॉ होगा, जिसमें $300 कैश आप जीत सकते हैं.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: तो आज का मौसम सुपर सिटी ऑकलैंड के लिए बताया जा रहा है पार्टली क्लाउडी रहेगा और आज थोड़ी बहुत यू नो लिटिल बिट ऑफ शावर्स इधर उधर जो है ये जरूर आप एक्सपीरियंस करेंगे. सनसेट 5:49 PM पर. राइट नाउ टेम्परेचर इज 8 degrees. हाई ऑफ आज एक्सपेक्टेड 12 degrees बाद में चलकर ओवरनाइट टेम्परेचर 5 degrees रहेगा.
2: फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी विन, बिग और स्मॉल. ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एंड हैरिंगटन लिविंग एट बेजरस मनको. इंग्लिश हेरिटेज इंस्पायर्ड फर्नीचर फॉर एवरीडे लग्जरी लिविंग.
0: द रश आवर brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
3: Good morning and welcome to the Rush Hour on Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. और रश आवर में हम ट्रेंडिंग चीज़ों के बारे में बातें करते रहते हैं. इंडिया में टॉप 5 थिंग्स दैट हैव बीन ट्रेंडिंग इन द पास्ट 24 आवर्स और सो. UFC कल जबरदस्त मैचेस जो है ये हुए UFC के. आई डोंट नो एनी ऑफ देम बट मेरे घर पर
1: फॉलो होता है,
3: फॉलो करते हैं UFC. इसके अलावा दिस वाज ऑन नंबर 5 एंड नंबर 4 एंड ऑन इन इंडिया. उसके अलावा नैशविल वर्सेस इंटर मायामी और ये आई थिंक बास्केटबॉल होगा. नंबर 2 पर Schalke versus Real Madrid football. And number 1 with over 200,000 searches in the last 7 hours in India, Arsenal versus Manchester City.
1: Yeah, lagta hai soccer bahut follow hota hai na.
3: Can you just imagine? Yeah.
1: But I'm just wondering, like, local soccer is not that popular there. International level par log kafi follow karte hai, which is kind of, you know, it doesn't add up.
3: Yeah. और न्यूजीलैंड में इन द लास्ट 24 आवर्स अगर देखें तो मेलनी लिंस्की न्यूजीलैंड होम, इन्होंने न्यूजीलैंड में घर लेने के बारे में कुछ बातें जो है ये की इन द लास्ट 24 आवर्स. वेदर वार्निंग्स जो है ये नंबर 4 ट्रेंडिंग्स लोग सर्च कर रहे हैं. और उसके अलावा फाउंड जो है शायद कुछ पाया लोगों ने, वो ये भी काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं. ओलिविया टेनेट, इनसे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जो है ये किया गया. ओवर 10,000 सर्चेस इन न्यूजीलैंड. और इसके अलावा द मोस्ट ट्रेंडिंग थिंग इन न्यूजीलैंड इन द लास्ट 24 आवर्स विद ओवर 20,000 वेब सर्चेस ऑन नंबर 1 UFC.
1: अच्छा, यहाँ पे भी. वेरी इंटरेस्टिंग. देयर यू गो, 5 मिनट हो रहे हैं 8 बजकर. ट्रेंड पेट्रोल में आज आपको बता रहे थे कुछ ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में, चीज़ों के बारे में जिसके बारे में चर्चा हो रही है. नाउ रिमाइंडिंग यू ऑल, दिस इज द आवर जहां पर आपके लिए प्ले होगा स्पेशल बोर्डिंग कॉल. और जैसे ही ये बोर्डिंग कॉल प्ले हो, आपको विजिट करना है रोवा ऐप. 60 मिनट्स का टाइम है वैसे आपके पास, बट रोवा ऐप पर जाकर आपको जहां पर लिखा होगा एंटर कोड नाउ, वहां पर टाइप करना होगा बोर्ड नाउ और सबमिट करना होगा. वंस यू डू दैट, यू विल बी पार्ट ऑफ दिस ड्रॉ जहाँ पर आप जीत सकते हैं 2 Returnair टिकट्स टू वनवातु और साथ में $1,000 स्पेंडिंग मनी थैंक्स टू सॉल्मन एयरलाइंस, फ्लाइंग 4 times ईच वीक नॉनस्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू वनवातु. विजिट flysolmans.com और टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए hum.rova.nz आप विजिट कर सकते हैं. दिस इज द आवर जहाँ पर स्पेशल बोर्डिंग कॉल प्ले होगा, आपको हम बार बार याद दिला रहे हैं. एंड डोंट फॉरगेट, अपने रक्षाबंधन एंट्रीज भी हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर करते रहे बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है $300 कैश जीतने का. वंस द ड्रॉ एंड्स और द कॉम्पिटिशन फिनिशेज जो कि नेक्स्ट फ्राइडे को रहेगा, तो ये मौका भी हाथ से निकल जाएगा. अभी तो मैं बोलती हूँ भाई, जहां से आपको जीतने के मौके मिले खासतौर पर पैसे लपेट लो. व्हाई लेट गो ऑफ द अपॉर्चुनिटी ना, एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं उसमें क्या बुराई है?
3: कुछ नहीं बुराई है, अच्छा ही है.
1: एग्जैक्टली, एंड वी आर नॉट चार्जिंग एनी एंट्री फी ऑर एनीथिंग फॉर यू टू पार्टिसिपेट इन दिस. आप बस अपने मोबाइल फोन के जरिए इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले सकते हैं. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रमोशन, जस्ट इन केस आपने पिछले घंटे डिटेल्स मिस कर दिए, हम 104.2 FM हमारा फेसबुक पेज विजिट करें. वहां पर फीचर फोल्डर में आपको पोस्ट दिखेगा, एवरीथिंग इज रिटन देयर, अच्छे से आप समझ सकते हैं कि क्या करना है आपको.
3: ओके, एंड हम बोर्डिंग कॉल अगर पेज का लिंक आपको चाहिए BC लिखकर अभी 5599 पर भेज दें, सो दैट यू हैव द लिंक विद यू रेडी एज सून एज द बोर्डिंग कॉल इज प्लेड ऑन रेडियो. बस आपको जाकर एंटर करना होगा बोर्ड नाउ.
1: बिल्कुल. बाय द वे, इसी घंटे व्हाट्स योर टेक टॉपिक भी लेकर आएंगे, सो होपफुली यू आर रेडी फॉर दैट.

0: Get ready.
1: Passengers, stand by. The next humboarding call could be your ticket to paradise. Listen out and get ready for your chance to win 2 return air tickets to Vanuatu and $1,000 spending money.
2: Thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
3: Bunnings Trade is here to help trade customers with 134 Trade. Get quick quotes and pricing on a wide range of supplies, plus stock inquiries, delivery updates and more. Call 0800 134 872 or jump online and we'll help you get what you need fast. Bunnings Trade.
4: Why switch to Tower? Get covered in minutes and enjoy 2 months on us when you buy new comprehensive car insurance online. Use promo code 2 months. T's and C's and eligibility criteria apply. Excludes GST and levies. Switch to Kiwi. Switch to Tower.
5: The sleepless nights. The aching knees. The energy that's never quite there. They may be linked to excess weight and shouldn't be ignored. Talk to your doctor about your weight and what support is available to you. Weight management takes time and effort to be successful. People should seek professional advice on diet, exercise, and lifestyle changes. Medicines have risks and benefits. Individual results may vary. Eli Lilly New Zealand Limited, Auckland.
6: Radio pe gaano ki farmaish ki ja sakti hai. Apno ke naam sandeshe bheje ja sakte hain. Magar radio pe apne tradition ki khushbu bhejni ho to nahi bhej sakte na. Uske liye apno ko khane pe bulaye. Rishton ko aur kareeb laaye. Kashish Premium Basmati Rice. Eat better, live better. For more information, log in to www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
7: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
8: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
9: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सबडिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz
10: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
10: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
12: What's your take?
13: तो एज प्रॉमिस्ड हमने कहा था कि आज का व्हाट्स योर टेक टॉपिक आपके लिए हम लेकर आएंगे और इसके लिए अपना अपना कंट्रीब्यूशन आप हमें दे सकते हैं 0800 004866 पर कॉल करते हुए या फिर आप हमारे पास टेक्स्ट कर सकते हैं 5599 पर बट वी विड प्रीफर कि आप कॉल करें ताकि एक दूसरे से बात करने के अलावा आपसे भी हम बात कर लेना आपकी भी आवाज़ सुन ले थोड़ी बहुत
14: बड़ी मेहरबानी होगी आपकी अगर आप ऐसा करते हैं आज सोशल मीडिया के बारे में हम कुछ बातें करेंगे इफ यू डोंट माइंड
13: आई डोंट माइंड
14: You need to have one.
13: I have one and I don't mind. It's okay.
14: 5 trends that could reshape what you see online.
13: Trends. Okay.
14: Social media ke baare mein kaha ja raha hai ki it's changing in 2026.
13: How?
14: Jo ekdam perfectly polished posts aa rahe hain, they are losing their charm.
13: Aesthetic cheezon ka value hai na aajkal.
14: Bahut bhari bhakam English tha. Ye aesthetic kya hota hai?
13: Google. मैंने भी किसी से सुना था तो मैंने आपको चिपका दिया
14: या एग्जैक्टली क्या है कि पहले बहुत ज्यादा ये यू नो लोग एंश्योर करते थे लाइटिंग एकदम सही हो बैकग्राउंड क्लीन हो आउटफिट जो है ये एकदम प्रॉपर हो लेकिन अब जो नेचुरल है वो लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है शायद थोड़ा ब्लरी भी हो तो भी चलेगा
13: एग्जैक्टली
14: इसके द सेकंड थिंग यू डू नॉट नीड अ मिलियन फॉलोअर्स टू बी नोटिस्ड जिसके पास कुछ फॉलोअर्स भी हो एक सुबह वो उठेगा रात को कुछ पोस्ट किया ही विल हैव थाउजेंड्स ऑफ व्यूज तो कहा जा रहा है कि द क्वालिटी ऑफ कंटेंट आल्सो मैटर्स दिस डेज
13: राइट
14: एंड नंबर थ्री इज पीपल आर सर्चिंग ऑन सोशल मीडिया इंस्टेड ऑफ जस्ट स्क्रॉलिंग यू नो सेल हो प्रोडक्ट्स हो न्यूज हो वो सारी चीजें भी लोग सोशल सोशल मीडिया पर ढूंढ रहे हैं
13: मतलब जिस पर्पस के लिए सोशल मीडिया को शायद बनाया गया था उसका अब सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है
14: नंबर चार AI ये फास्टर कर सकता है कंटेंट को लेकिन बीइंग ह्यूमन मैटर्स मोर. AI आपके कंटेंट को फास्टर जनरेट कर सकता है लेकिन उतना नेचुरल नहीं लगेगा ये.
13: राइट.
14: एंड लोग नोटिस कर लेते हैं कि इट्स AI जनरेटेड और समथिंग. और सोशल मीडिया नंबर 5, सोशल मीडिया इज बिकमिंग पार्ट ऑफ शॉपिंग डिसीजंस.
13: शॉपिंग डिसीजंस ये ऑनलाइन कुछ दिखता है एंड देन यू डिसाइड एंड यू डू रिसर्च एंड देन यू डिसाइड कि ये लेना है यहां से लेना है.
14: और फिर क्या है ना कि लोग देखते हैं किसी ने किस तरह के जूते पहने हुए हैं. And they get influenced.
13: Okay.
14: So that was number 5.
13: Right.
14: Yeah.
13: So these are the 5 cheeses.
14: 2026 में social media कहते हैं एक change हो रहा है. तो 4-5 चीजें जो है कि हमने आपको बताई हैं. Do you think ये चीजें आपके लिए matter करती हैं? For example, AI generated content over जो natural content है. What would you prefer?
13: Natural. Any day natural content.
14: तो ये सारी चीजें आज हम आपसे जानना चाहते हैं. लोग नोटिस कर रहे हैं, शॉपिंग के लिए, न्यूज के लिए भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और झगड़ा करने के लिए भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं.
13: मुझे तो लगता है आजकल उसी चीज के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, झगड़ा करने के लिए, एक दूसरे को धमकियां देने के लिए, लेकिन वो धमकियां कोई पूरी नहीं करता.
14: एंड एक और चीज है कि यू डू नॉट नीड लोड्स ऑफ फॉलोअर्स.
13: राइट, दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग. मतलब यू डोंट नीड टू बी अ वेरी बिग name as far as
14: social media is concerned.
13: हाँ, content creation is concerned, social media is concerned. बस आप के जितने भी followers हैं उस हिसाब से भी आप you know you can get that information across. Interesting. तो आज आपको क्या पूछना है लोगों से?
14: भाई आप इतनी सारी बातें सुनने के बाद कुछ तो आया होगा आपके मन में, वही बता दो.
13: मेरे मन में
14: नहीं नहीं आपके नहीं, बस भाई आप आपको आपको सुन रहा हूँ मैं.
13: हाँ, तो 800-00-4866 पर आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं, 5599 पर मैसेज कर सकते हैं. गुड मॉर्निंग, कैसी हो परविंदर?
0: गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हो?
13: एकदम बढ़िया. आप जा रही है स्कूल की पहुँच गई है? जा रही है. चलो अच्छी बात है. आप बताइए, ये सारी चीजें सुनकर आपके मन में क्या ख्याल आया?
0: मेरे को ऐसा मतलब आई डोंट नो कि मैं कैसी हो गई हूँ आजकल, मुझे कुछ भी नहीं मैटर करता. पर क्योंकि आई थिंक ये लोगों के उस पर डिपेंड करेगा कि उन लोगों को क्या पसंद है. जैसे मुझे मुझे थोड़ा डांसिंग अच्छा लगता है तो मैं डांस वाले वीडियो थोड़ा देख लेती हूँ, और थोड़ा अगर मुझे कोई स्टेप सीखना है तो मैं वो स्टेप सर्च भी कर लेती हूँ कि ट्यूटोरियल. अदरवाइज मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, पर वो AI जनरेटेड जो वीडियो होते ना, वो मेरा नाम है लॉकी, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं.
13: मेरा नाम है लॉकी. मुझे पता है आप क्या बोल रहे हो यार, बट वो ना बहुत ऐसे दिमाग की दही कर देते हैं वो वीडियोस.
0: अननोइंग लगते हो बहुत.
13: फिर भी देखते हैं हम. आई डोंट नो व्हाई.
0: एक मुझे शो आ रहा था, मैं हूँ सैलिसिलिक एसिड, मैं स्किन के पोर्स को टाइट करता हूँ.
13: अच्छा यार.
0: मैं हूँ हाइलुरोनिक एसिड ऐसे वाले. हाँ, तो मुझे लगता है लोगों के उस पर डिपेंड करता है कि लोगों को क्या पसंद है इंडिविजुअल को.
13: ट्रू. Thank you परविंदर आपके कॉल के लिए. Have a wonderful day. तो सोशल मीडिया आज का हमारा टॉपिक है, और 800-00-4866 पर आप कॉल कर सकते हैं.
14: टेलीफोन लाइंस तो इस तरह से ठंडी पड़ी हुई है कि ऐसा लग रहा है विंटर का असर टेलीफोन लाइंस पर भी पड़ गया.
13: हाँ, ये हो सकता है. आप चाहे तो टेक्स्ट कर सकते हैं जस्ट इन केस इफ यू कांट गिव अस अ कॉल. हो सकता है मंडे है तो लोग मूड में ना हो ना.
14: हाँ, अभी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे.
13: हाँ, तो व्हाट वी विल डू इज आपके पास टाइम है टू टेक्स्ट 5599 पर आज के टॉपिक ऑफ द डे के लिए अपनी राय जो ये शेयर करने के लिए, और हमारे पास अपना जो मैसेज है ये आप भेज सकते हैं. एंड फिर हम क्या करेंगे कि आपके जो मैसेजेस हैं ये जैसे जैसे हमारे पास आएंगे हम वो आपके लिए पढ़ते जाएंगे, ठीक है? बिकॉज कॉल्स शायद अभी आप करने में थोड़ा हेसिटेंट हो, यू फीलिंग अ बिट शाय, या फिर आपके पास अभी टाइम नहीं है कॉल करने का, व्हाटएवर द सिनेरियो इज ना.
14: जो भी हो आप 5599 पर अपना जो व्यू है वो शेयर कर लें, और फिर वी विल

0: अरिजीत सिंह और साथ में ओह गॉड अरिजीत सिंह और साथ में शालमली कोलकड़े को आप सुन रहे थे ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजन पूजा. आपके लिए आज का चैट बस्टर हमने पेश किया. इधर बोर्डिंग कॉल प्ले हो चुका है. इफ यू हैव मिस्ड आउट ऑन इट, आपके पास अभी भी टाइम है. 60 मिनट्स में से कितना टाइम बाकी है, वेल आई कांट रियली टेल यू दैट बिकॉज मैंने कैलकुलेट नहीं किया, बट आप जरूर इस टाइम का सही इस्तेमाल करें. और याद रहे, BC लिखकर अगर आप 5599 पर भेजेंगे तो आपको बोर्डिंग कॉल एंटर करने के लिए जो टैब है ये डायरेक्टली यहाँ से भेज दिया जाएगा.
1: और आप बस जाकर एंटर करें बोर्ड नाउ, जहाँ पर लिखा होगा एंटर कोड, वहाँ आप बोर्ड नाउ टाइप करके सबमिट कर दें. टर्म्स एंड कंडीशंस भी वहीं पर आपको मिल जाएंगे. रिमेंबर, 2 रिटेन एयर टिकट्स टू वनवातू विद $1,000 स्पेंडिंग मनी, ये आपका हो सकता है. एंड साथ ही में लगे हाथों आपको ये भी याद दिला दें, बॉलीवुड में भी तमाम चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि रणवीर सिंह.
0: क्या हो रहा है रणवीर सिंह को?
1: धुरंधर जो फिल्में हैं, दे रेक्ड इन ओवर $5 बिलियन. और आज से न्यूजीलैंड समय अनुसार आज से रणवीर सिंह अपने अगले फिल्म की शूटिंग जो है ये शुरू कर चुके हैं.
0: ओके, इंटरेस्टिंग.
1: एंड द मूवी जो है इसमें रणवीर सिंह इज आल्सो वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑफ द मूवी.
0: ओह,
1: मां कसम फिल्म्स,
0: उनकी फिल्म का प्रोडक्शन हाउस का नाम है मां कसम फिल्म्स.
1: हाँ,
0: क्या बात है यार,
1: मां कसम फिल्म्स इज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स.
0: बिल्कुल इनके अंदाज का प्रोडक्शन हाउस नाम है इनका.
1: हाँ, और ये फिल्म जो है इसका बजट है न्यूजीलैंड $540 मिलियन. जस्ट इमेजिन $540 मिलियन. और ये फिल्म जो है इसका टाइटल है प्रलय.
0: वेरी नाइस.
1: प्रलय जो है एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक ज़ॉम्बी सर्वाइवल थ्रिलर है.
0: नो, आई डोंट नो मैन, आई हैव माय डाउट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर मूवी नाउ कि ये इंडियन सिनेमा के हिसाब से चलेगा नहीं चलेगा. बट नेवरदलेस लेट्स सी, अभी तो आई नहीं है, वंस ये रिलीज होती है तो देखते हैं क्या होता है. आई हैव गॉट सम अपडेट. और ये है अबाउट वन ऑफ दिस अमेजिंग एक्टर्स इन द इंडस्ट्री, जिन्होंने जब शुरुआत किया तो उनको एक टैग मिला था सीरियल किस्सा का. बट धीरे धीरे धीरे धीरे पीपल एक्चुअली स्टार्टेड नोइंग द गुड साइड ऑफ हिम, कि ही इज एन अमेजिंग एक्टर और वो अपना काम करते हैं इस डेडिकेशन के साथ कि कहीं ना कहीं ये टैग उनको मिल गया. बट ऑन द अदर हैंड ही इज समवन हु इज एब्सोल्युटली चार्मिंग एंड लविंग इन रियल लाइफ. इनके बारे में बोला जाता है इज वन ऑफ दोज लॉयल स्टार्स इन द इंडस्ट्री. डिस्पाइट बींग समवन विद द टैग ऑफ अ सीरियल किस्सा, इन्होंने या इनके बारे में आज तक कभी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की खबरें नहीं आई. ही इज मैरिड द लव ऑफ हिज लाइफ, जो इनकी इनका पहला प्यार बेसिकली थी, उनसे इन्होंने शादी की. ही इज सच एन अमेजिंग डैड. इनका बेटा जो है ये कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहा था, ही वॉज सपोर्टिव. फिर अपने बेटे को उन्होंने इनकरेज किया. द सन हैज इवन रिटन अ बुक ऑन द होल जर्नी जो उन्होंने कैंसर के साथ लड़ाई की. एंड आजकल ये वापसी कर रहे हैं. आई थिंक ड्यू क्रेडिट इनको देना चाहिए था, बट ऑल थैंक्स टू बेड्स ऑफ बॉलीवुड, जिसके जरिए कहीं ना कहीं जो इन्होंने जो ये डिजर्व करते वो इनको मिला. बट राइट नाउ इनकी फिल्म आवारापन 2 रिलीज हुई है और इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर जाकर एक स्टोरी जो है ये शेयर किया. एंड ही हैज़ एक्चुअली रिटन दिस स्टोरी और पोस्टेड दिस स्टोरी ऑन हिज सोशल मीडिया. टू ऑल माई फैंस, इट वॉज 15th August 2003 वेन माई फर्स्ट फिल्म फुटपाथ रिलीज्ड. And with it began a journey I could never have imagined. Today, 23 years later, I find myself looking back with a heart full of gratitude. There have been highs and lows, success and failures, applause and silence. But through every phase, you have stayed. You've grown with me, supported me, sometimes forgiven me, and continued to show up with a kind of love that I can never take for granted. 23 years in this industry and I still feel the same excitement, the same nervousness and the same hunger every time a film of mine reaches you. Whatever I've achieved, a huge part of it will always belong to all of you. 23 years, countless memories, one incredible journey. Thank you for walking it with me. And somewhere inside me, that guy from Footpath is still here, still dreaming, still learning, still finding its way. Here's to the journey ahead. Ye inhone badi beautifully apne fans ko tribute karte hue thank you kaha.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Chup ho jao, papi ho. Chup ho jao. Hum. accurate traffic.
4: New limited edition sweet sriracha chicken parma.
5: Cool today with a high of 13, but should stay fine now. Into the city, Southern Motorway, 42 minutes, Manukau to town, 52 from Drury. We're slow from Manukau, heavy Otahu to the city, maybe a little slow at Manurewa as well. Northwestern, 35, Massey to town, slow from Te Gāra to heavy patches, Point Shep to Grey Lynn. Northern, heavy at Silverdale and Constellation to the bridge, 30 minutes in from Constellation Drive.
4: Lips will tingle. Enjoy the sweet sriracha chicken parma at Peter Pit, Egged and Bold.
3: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Enjoy a stopover in sunny Fiji on your way to epic destinations. Live your California dreams in LA or San Fran. Relax in Honolulu. Head to Dallas and experience Southern hospitality at its finest. Or take a trip to Asia, Tokyo, Singapore, or Hong Kong. Fiji Airways on sale now. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
6: Boat plus ute equals butte. Get Dad a $5 The Real Deal instant Kiwi ticket for a chance to win a Toyota Hilux and Stabycraft 1450 Frontier combo. Get your Father's Day gift sorted at your local Lotto NZ store. R18 T's and C's apply.
7: Rebel's 30th birthday continues with $30 deals on now. That's selected kids' clothing, hydro flasks and Nike equipment for only $30. Plus save $30 off selected casual running and kids' shoes. $30 deals and so much more on now at Rebel Sport. See online for T's and C's.
8: Get dinner sorted with fresh deals at New World North Island. Like whole chicken legs, $7.99 per kilo. Or Pam's stir fry kits, $4.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
9: The all-new Mazda CX-5 is big on the road ahead. With 5 years of Mazda care included, it's big on servicing, big on warranty, big on roadside assistance, and big on peace of mind. Mazda.
10: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes Bombay biryani हो या butter chicken korma या chana masala recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian Shan recipe mixes हर dish को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए Shan Foods असली स्वाद हर घर के लिए
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
2: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
11: Let's go.
2: Straight from the heart.
12: Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local developer.

0: Punjabi swag is on.
1: Hey, hey.

0: Smile right dear.
1: Streaming on Rover.
2: Hum. Accurate traffic.
3: Flixieven, you're skipping a bag.
4: Staying mainly fine now, but a cool high of just 13. Into the city, Northern Motorway 28 minutes, Constellation Drive to town, 40 from Silverdale. Slow at Silverdale, heavy patches, Constellation to the bridge. Northwestern 33 and from Massey, fine to the causeway, heavy there to Grey Lynn. Southern 38 from Monaco, slow from Papatoetoe, heavy Otahuhu to Rimuera. Southwestern slow northbound from Wiri to the airport link.
3: Visit flixieven.co.nz for stockists, TCs and collection areas.
5: At Bunnings, we've got Father's Day sorted. Jumbuck 3-piece barbecue tool set, only $10.20. Trojan 33-piece keyring compact toolkit, just $45.98. Make Dad's Day at Bunnings.
6: Bunnings Warehouse.
5: Lowest prices are just the beginning.
7: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewellery making charges. साथ ही $2,000 की हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेज पर पाइए फ्री गोल्ड कॉइन प्लस हैव ओल्ड गोल्ड ऑफ 18 कैरेट और मोर तो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कीजिए हरी विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स एट बॉटनी टाउन सेंटर ऑकलैंड
8: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
9: Skinny will do anything to keep prices low and customers happy. Switch to Skinny and get $30 credit on all four weekly plans, $27 and above. $30 credit available to new customers only. In September 4th, T's and C's apply.
10: Get the Skinny!
1: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
1: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
12: फिलहाल 14 मिनट रह गए हैं 9 बजने में 9 पर न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए हम लेकर आएंगे और द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा में कई दिलचस्प जानकारियां आज क्या वक्त हो बहुत ही कमाल की स्टोरी होगी 9 बजे के बाद इस प्रोग्राम में
13: तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा बट फिलहाल के लिए अब बारी है कि आपको हम मौका दें हमारे साथ कॉम्पिटिशन में भाग लेकर इनाम जीतने का टोटल ऑफ $500 कैश हम गिव अवे करने वाले हैं दिस रक्षाबंधन हमारे सिबलिंग्स परफॉर्मेंस रिव्यू कॉम्पिटिशन के तहत
12: और इसमें क्या करना होगा कि आपको हम पूछेंगे आपको कॉल करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल 0800-004-866 पर और कोई एक चीज जो है इसके बारे में आपसे हम पूछेंगे आप अपने भाई या बहन का परफॉर्मेंस जो है उससे रिलेटेड रिव्यू करें एंड यू गोइंग टू द ड्रॉ जैसे कि आपकी बहन जो है फिल्म देखने के वक्त कितना शोर मचाती है
13: और जैसे पिछले वीक हमने पूछा था ना कि हाउ गुड अ बैड इज योर सिबलिंग इन कीपिंग योर सीक्रेट्स तो ऐसे कुछ सिंपल सिंपल चीजें हम आपको बताएंगे और आपको बस बताना होगा हमारे पास कॉल करते हुए हाउ गुड अ बैड दे आर इन दैट पर्टिकुलर मैटर एज अ सिबलिंग उनका रिव्यू जो है कि आपको करना होगा उनकी परफॉर्मेंस का रिव्यू करना होगा 0800-004-866 पर अभी आप कॉल कर सकते हैं वंस यू कॉल विल गिव यू अ टॉपिक उस टॉपिक पर अपने सिबलिंग्स को आप रिव्यू कीजिए एंड वंस यू रिव्यू देयर परफॉर्मेंस आप उस ड्रॉ का हिस्सा बन सकते हैं जहां पर यू कैन विन योर शेयर ऑफ $500 टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई जिसके लिए आप hum.rover.nz विजिट कर सकते हैं
12: लाइंस खुले हुए हैं और हमें आपके कॉल का इंतजार है यू हैव गॉट अ मिनट टू कॉल 800-004-866 दो दो लोग होंगे आप में से जिनको $250 ईच जीतने का मौका हम दे रहे हैं अब इनाम तो हमने पहले जैसे हमने कहा इनाम हमने आपके लिए एलोकेट कर दिया है बट ये आप तभी जीतेंगे जब कॉल आप करेंगे और रिव्यू जो है ये आप करेंगे
13: बिल्कुल और ऐसा ना हो कि आज भाई पहला शो है मंडे का एक पहले वीक का द ब्रेकफास्ट शो और इसमें किसी का नाम रोमे ना जाए
12: And that would be sad.
13: That would be really sad. Yaar, hum aapko paise dena chahte hain. Bas aapko bata rahe, you have to let us know that you want to win it in a particular way. Because that's the way aap is draw mein shamil ho sakte hain. And ye paise hum to jeet nahi sakte, na hi hum bacha kar rakh payenge. Ye chale jayenge company account mein wapas.
12: Bilkul.
13: To agar aapko jeetne hain, iske liye thodi mehnat karni hogi. Good morning, kaise hain aap?
0: Hello. Good morning, Vijay and Pooja ji, kaise ho?
13: Badhiya ji, aap kaise ho?
0: मैं भी फैंटेस्टिक.
13: किन से बात हो रही है?
0: मैं केवल बोल रहा हूँ, केवल सिंह.
13: केवल सिंह जी, तो केवल जी, आज आपको अपने सिबलिंग के परफॉर्मेंस रिव्यू जो है ये करना होगा. और आपके
12: वैसे पहले ये बताइए केवल, आप कितने भाई बहन हैं इन टोटल?
0: मेरी एक बहन है बस.
12: एक बहन, यही न्यूजीलैंड में है या फिर बैक इन इंडिया या कहीं और पर?
0: वो इंडिया में भी है, शी इज इन इंडिया.
12: आपसे बड़ी है या छोटी?
0: से 3 साल छोटी है.
12: 3 साल छोटी है.
13: बड़े भाई हो
12: आपने तो. उनको
0: बड़के भैया.
13: बड़के भैया. बहन का नाम क्या है केवल?
0: बेयंत कौर.
13: बेयंत कौर, ओके. सो आज आपको बेयंत के बारे में एक चीज बतानी होगी. टॉपिक हम आपको देंगे पर वो इस मामले में कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है व्हेन इट कम्स टू यू नो दिस पर्टिकुलर सिचुएशन आपके साथ. और आपको फनी अंदाज में अगर आप बताना चाहे कोई फनी मेमोरी जुड़ी हो इस मामले से, इसी वजह से आप बोल रहे हो कि वो इतनी अच्छी है इतनी बुरी है इस मामले में, तो वो भी स्टोरी भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. ठीक है?
0: नो वरी.
13: ठीक है, तो आज आपको बताना है आपकी बहन बेयंत किस इस मामले में ये कितनी ज्यादा अनोइंग है, कितनी कम अनोइंग है व्हेन इट कम्स टू आपको एकदम परेशान कर देना. मतलब एकदम आपको इतना परेशान कर दे कि इरिटेट हो जाओ आप. और इरिटेशन में
0: वो उसका क्या है कि वो जो वोल्वो बसेज नहीं होती अपनी,
13: क्या होती है
0: वोल्वो बसेज होती हैं, जो एसी वाली बसेज होती हैं. हाँ, उनमें वो सफर नहीं कर सकती, तो एक उसको चाहिए जिसके शीशे खुलते हैं.
12: अच्छा, जो शीशे बंद
0: है. हाँ. तो हाँ, तो एक बार हमारा दिल्ली जाना हुआ मेरे साथ, तो वो वोल्वो बस थी, तो वो उसमें बैठ गई. अब क्या वो बोलती, भाई मेरे को तो साथ नहीं आ रहा, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, इसके शीशे खुलवा. मैं क्या, इसके शीशे नहीं खुलते, वो फिटेड होते. तो फिर वो बोलती नहीं बस रुकवा, मैं तो नीचे उतरूंगी. मैं रात को इतनी तो कहाँ नीचे उतरेगी ना. तो फिर वो मैं उसको आगे बस वो जो कैबिन होता है ड्राइवर का, उसके वहां बैठा के आया उसको. तो पूरी रात कभी आ जा कभी सो जा, कभी मेरे को यहाँ लेके जा, कभी मेरे को ड्राइवर के साथ बैठना है, वहाँ शीशे खुले हुए हैं, ये वो पूरा रात हम ऐसा ही करते रहे भाई. मेरे को बहुत खिंच चढ़ी भाई. वो ड्राइवर भी बेचारा हाथ जोड़े, बहन यहाँ मत बैठो, यहाँ पे बहुत अच्छे बुरे लोग आते रहते हैं मेरे कैबिन में. हाँ. बस स्टॉप्स पर आप जाओ. बोलती नहीं मैं तो यहीं बैठूंगी.
13: ये कितने साल पुरानी बात आप हमें बता रहे
0: हैं? ये हुआ था 2017 में.
13: मतलब अभी से करीबन
12: 9 साल.
13: 9 साल पहले.
0: हाँ जी. इसी चक्कर की वजह से वो न्यूजीलैंड नहीं आई मेरे पास. बोलती नहीं मैं वो जहाज बंद होता है, मेरे को सांस ही नहीं आएगी.
13: तो आप जाते हैं इंडिया उनसे मिलने के लिए क्योंकि वो नहीं आ रही.
0: तो फिर मेरे को जाना पड़ता है हर बार एवरी ईयर.
13: देखो ना क्या बात है, 9 साल पुरानी बात आज आप याद करके अब आज भी हंस रहे हैं, हमें भी हंसा रहे हैं और बदले में ड्रोमे भी शामिल हो रहे हैं.
0: पूछो मत, मैं उसको कैसे दिल्ली लेके गया और कैसे लेके आया वापस.
13: चलो अच्छा नहीं पूछेंगे.
12: वापस में कैसे आया, किस किस तरह की बस में आया?
0: ऐसे ही भाई, ऐसे ही रोते पीटते आए वापस.
13: वेरी नाइस केवल, थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए. आपका नाम हम डेफिनेटली ड्रो में शामिल कर रहे हैं. विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट.
0: थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे.
13: यू टू. मजा ही आ गया. सी दिस इज व्हाट वी मीन, आप जब कॉल करते हो शायद आपको अंदाजा ना हो कि आपकी कहानी जो है या फिर आपकी जो एंट्री है ये आपको जिता सकती है.
12: हाँ हाँ.
13: और शो भी इतना इंटरेस्टिंग बना देती है ना.
12: या ऑब्वियसली पूरे शो का मूड चेंज हो जाता है.
13: बिल्कुल. तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए सुनते रहिएगा क्योंकि हमारा रक्षाबंधन प्रमोशन आपके लिए जारी है.

0: Accurate traffic.
1: Refreshingly juicy, yummy lemonade apples.
2: A high of just 13, but fine spells increasing through the day. Into the city, motorways are easing. Northern at 26 minutes, Constellation Drive to town. Bit slow at Silverdale. A few heavy patches, Constellation to the bridge. Northwestern, 30 minutes in from Massey. We're fine to the causeway. Heavy from Point Chef to Grey Lynn. Southern, 35, Mataco to town. Slow from Papatoetoe. Got heavy patches from Otahu.
1: Hello, yellow. Yummy lemonade apples. The yellow apple that's sweet and refreshingly juicy. Yummy lemonade.
3: Coffee? The usual?
4: How about the unusual?
5: Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
6: It's dream season at Beds R Us. Save up to 50% on selected sleepyhead beds, like the Swiss Tech Precision. Half price, queen size, now $4,299. Check out these dream deals and more at Beds R Us Manukau and Kukekwe, where dreams begin.
7: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑनसाइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑनसाइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए
8: Hi, Stephen Fleming here. I used to be a captain, but most people know me as the Fujitsu guy. We're now General. We've changed our name, but not who we are. You can expect the same trusted quality and service that has made us New Zealand's favourite air. So, there you have it. Other than our name, nothing's changed. Not even me. Except now I'm the General guy. Come home to comfort. Just get a General. It's New Zealand's favourite air.
9: Get a General.
10: I know about framing, but not how to keep our team connected on all the sites.
11: When you're a Spark Business customer, you get the number one mobile network coverage in New Zealand as awarded by Open Signal. Spark, the best bench in business.
12: Kia ora. If you're enrolled to vote, you'll soon receive an enrolment pack in the mail. Keep an eye out for yours.
13: Your enrolment pack should arrive by 22 August. Open yours and check your details to make sure they're correct. Learn more at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
14: Time check.
15: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
16: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. A plea to stay at home if you're unwell as ambulance and hospital services feel the strain. St John saw its biggest day of demand on record earlier this month, while in Auckland, flu-related hospitalisations doubled in a week. The College of GPs says the most helpful thing people can do costs nothing. That's stay away from others and call your GP or Healthline for early advice. Concerns are being raised about ACT's plan to get rid of cultural hiring requirements in the public sector. If elected, the party promises to ensure people are hired on merit alone. Politics professor Richard Shaw questions how that will be defined.
17: Cultural competence, knowing languages, knowing histories, knowing ways of being, knowing people fundamentally is what public service is about.
16: President Trump's son-in-law Jared Kushner has reportedly held rare talks with the leader of Hamas in Egypt. It's over the Gaza ceasefire plan that Israel rejects. Axios reports former British Prime Minister Tony Blair was also in the meeting. Kushner is expected to meet Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu tomorrow. The death toll from a powerful earthquake in Indonesia has risen to more than 50. About 5,000 people are displaced after the 7.7 magnitude tremor on the island of Flores at the weekend. To rugby with Shafour, 19-year-old Jimmy Taylor is the toast of Southland, who have snapped a 7-game losing streak in the NPC. The Stags pipping Waikato 32-31 with a sideline conversion. Captain Sean Withy told Sky Sport that Taylor loves the big moments.
18: Yeah, he's a special kid, Jimmy. He kicked a 50-metre drop goal or something in the top four final when he was 15 years old, so there's nothing new for Jim.
16: The Stags next face Tasman, who thrashed counties at 50-35 to complete week three.
15: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
19: World's best, hamari koi branch nahi hai.
15: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
20: Aaj ka mausam yaad rahe, partly cloudy weather with little bit of showers here and there. Sunset 5:49 PM par hoga. Temperature right now 8.9 degrees hai. High of 12 expected hai baad mein chalkar. Overnight temperature 5 degrees rahega.
15: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
21: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small.
0: Hall, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Mungo, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
3: What's going on? Kya bakte ho?
14: Are kehna kya chahte ho?
20: क्वाइट एक्साइटेड आज के क्या बकते हो स्टोरी के लिए. आज जानेंगे कि ऐसा क्या है जो थोड़ा वियर्ड है, थोड़ा अलग है, लेकिन आपको ये सुनने में भी मज़ा आ जाए और आपको बोलने में मजबूर कर दे कि क्या बकते हो.
21: एक जगह है शेंजेन चाइना में और इस जगह का नाम है डमेशा. डमेशा जो है एक्चुअली एक बीच है. हेलो,
20: बीच है?
21: हाँ
20: ओके,
21: बीच है. और ये इवन चाइनीज स्टैंडर्ड से भी लिया जाए तो इट्स वेरी वेरी बिजी. 1.8 किलोमीटर लंबाई है इस बीच की. एंड ऑन द वीकेंड्स इट टर्न्स इनटू अ सी ऑफ पीपल. इतने लोग आ जाते हैं कि अथॉरिटीज को लिमिट करना पड़ता है कि एक टाइम पर कितने लोग जा सकते हैं वहां. इंटरेस्टिंगली अगर आप समझना चाहते हैं कि डमेशा बीच कितना बिजी हो जाता है स्पेशली ड्यूरिंग द समर मंथ्स, इट्स इनफ. आप जाकर यू नो ट्रिप एडवाइजर या ऐसी जगह पर जाकर रिव्यूज पढ़े लोगों के, किस तरह से लोग नाराज होकर रिव्यू लिख रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं कि वो बीच तक पहुंचे ही नहीं. गए तो लेकिन दे कुडंट इवन रीच द वाटर. अथॉरिटीज जो है उन्होंने लिमिट करने का फैसला किया है. बिटवीन मई एंड अक्टूबर द नंबर ऑफ पीपल दैट कैन गो देयर एट वन पर्टिकुलर टाइम इज 80,000. एक बीच पर 1.8 किलोमीटर बीच पर
20: 80,000 लोग एक टाइम पे जा सकते हैं.
21: हाँ, 80,000
20: ये लिमिट है इनका.
21: हाँ, और लोगों को शायद मैंडेटरी रिजर्वेशन सिस्टम भी यूज करना पड़े ताकि वो एक्सेस कर सके. 80,000 सुनने में काफी ज्यादा लग रहा है ना.
20: Obviously.
21: लेकिन डमेशा बीच हैज होस्टेड एज मेनी एज 200,000 पीपल एट वंस.
20: वाओ,
21: जस्ट इमेजिन 200,000 पीपल एट वंस. तो वहां पर तो हिलना डुलना मुश्किल हो जाएगा, सनबाथ करना, स्विमिंग करना. तो
20: मतलब बीच का जो वाइब होता है वो एंजॉय करना इज नॉट पॉसिबल इतने सारे लोगों के बीच.
21: और उनमें से अगर आपका बच्चा सेंड पर खेलते होलते कहीं
20: गुम हो गया तो ओह माय गुडनेस,
21: 80,000 लोगों में कहां ढूंढने
20: गया. नहीं मिल पाएंगे यार.
21: तो वही जब मैंने पढ़ा इसके बारे में कि 80,000 पीपल समर मंथ्स में एक टाइम पर उस बीच पर जा सकते हैं, दैट्स 1.8 किलोमीटर, यू नो That's a lot.
20: Very, very scary, I would say. मेरे लिए तो I'll never go to this beach because अगर मेरे को एक time पे इतने सारे लोग एक जगह पर दिख गए, I will never be able to, you know, handle myself properly. मेरे को anxiety attack आ जाएगा because I can't see a lot of people at once एक साथ में. And in fact अभी malls वगैरह भी आप जाओ जो वहाँ पर भी भीड़ भाड़ होती है, वहाँ पर moving crowd होता है, right? ऐसे नहीं कि एक जगह पर आपको सारे लोग मिलेंगे. Unless until you go into the cinemas, but even then, मुझे वो चीज़ feel होने लगती है. I'm just thinking 200,000 लोग at once, और $80,000 लोगों का एक limit है ये. It's like such a large number.
21: So, you know, अगर आप उसको break down करते हैं, तो एक किलोमीटर में 44,444 लोग आएंगे.
20: Still a very big number to digest. Anyways, quite interesting updates जो है ये होते हैं. दुनिया भर में ऐसी interesting चीज़ें होती हैं. If you come across any such story जो आपको लगे कि हमारी breakfast show की क्या बकते हो story ये बन सकती है, तो वो आप हमारे साथ ज़रूर share कर सकते हैं. आप हमारे पास email कर सकते हैं vijayvarma@hamfm.com पर या फिर poojakumar@hamfm.com पर, और हम आपके लिए ये, या माफ़ कीजिएगा, vijayvarma@mediaworks.co.nz पर या फिर poojakumar@mediaworks.co.nz पर आप ईमेल कर सकते हैं. मैं कुछ 5-6 साल पीछे चलेगी मुझे लगता है. तो अपने अपने यू नो डिटेल्स आप सेंड कर सकते हैं. वी लव टू ब्रिंग दी स्टोरीज टू यू गाइज ऑन द ब्रेकफास्ट शो. एक मैसेज आया है, इन्होंने मैसेज किया है, हाई पूजा विजय, कैन यू प्लीज लेट मी नो इफ आई कैन गो बैक एंड लिसन टू योर प्रोग्राम दिस मॉर्निंग अगेन ऑन रोवा. 6035 इनका नंबर है. अनफॉर्चुनेटली अभी तो ऐसा कुछ नहीं है ना.
21: क्या नहीं है? नहीं, आप रिवाइंड करके तो नहीं सुन सकेंगे. यू कैन लिसन लाइव,
20: या बट
21: ऑन डिमांड लिसनर. ऑन डिमांड जो हमारे शोज है ये अभी अवेलेबल नहीं है, अनलेस वी कट आउट एंड यू नो share certain portions of the show.
20: Yeah, but right now aisa kuch possible nahi. But agar, if you've got any questions jo shayad aapne kuch suna tha, if you've got any concerns or issues to raise, to aap wo mein bata sakte hain. We'd love to address it with you ki ye chahiye, ye cheez thi ya aisa aisa tha, and we'll help you understand the whole scenario. So aap hamare paas 0800 00, hum 0800 00 4866 par call bhi kar sakte hain.
21: Aur agar aapne pichle ghante enter nahi kiya tha apna code, aapke paas final 2-3 minuton ka time shayad hoga.
20: Okay.
21: हाँ, मैं आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं रोवर पर, और बोर्ड नाउ एंटर कर सकते हैं उस जगह पर जहां पर लिखा हो एंटर कोड नाउ.

रक्षाबंधन का मौका है और बहुत से मौके हम आपको दे रहे हैं हम पर विजेता बनने की, जहां पर एक और आप हमारा जो सोशल मीडिया कंपटीशन है इसमें पार्ट लेकर $300 कैश जीत सकते हैं। डिटेल्स के लिए हम 104.2 FM विद ब्लू टिक ये पेज आप विजिट कर सकते हैं। और दूसरी ओर हमारा जो ऑन एयर कॉम्पिटिशन सिबलिंग्स परफॉर्मेंस रिव्यू, हर एक शो में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी पार्टिसिपेट करने की, सो मेक श्योर यू गेट दैट डन ताकि आप भी ड्रो में शामिल होकर योर शेयर ऑफ $500 जो है ये जीत सके। और अगले फ्राइडे को यानी 28 अगस्त को जबकि रक्षाबंधन मनाया जाएगा, इट्स द डे, तो चलिए आज एक बहुत ही खूबसूरत राखी गीत आप सभी के नाम।

0: going on.
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
3: तो चलिए देखते हैं क्या कुछ हो रहा है हमारे आसपास, हमारी कम्युनिटी में. सबसे पहले न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन अपना फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट लेकर आ रहे हैं और ये इसी वीक रहेगा, 22nd को एंड 23rd को, यानी कि सैटरडे एंड संडे को. आप इसका हिस्सा बन सकते हैं एट बर्कनहेड स्काउट्स हॉल, जहाँ पर अलग अलग लेवल के प्लेयर्स को इन्वाइट किया जा रहा है टू पार्टिसिपेट. आप किसी भी स्किल लेवल के प्लेयर हैं, इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट, तो आप ज़रूर इसमें भाग ले सकते हैं. और आपको हम याद दिला दें, दूसरी ओर अगर आपको भाग लेना है तो आप न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पंकज मोंगा को 02109085067 पर भी कॉल कर सकते हैं. बाय द वे, आपको याद दिला दें कि रूजबेन सैंडी ने कुछ बातें भी की पंकज मोंगा के साथ, जहाँ पर कैरम के बारे में, कैसे कैरम को ये न्यूजीलैंड में एज अ नेशनल टूर्नामेंट लेकर आए हैं और इस क्लासिक स्पोर्ट को जिंदा रखने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें इन्होंने शेयर की है. और अगर आपको ये पूरा कॉन्वर्सेशन सुनना है तो CB लिखकर 5599 पर आप सेंड करोगे, डिटेल्स में आपको ये मिल जाएगा. दूसरी ओर ऑकलैंड भक्ति सत्संग आपके लिए लेकर आ रहे हैं ग्रैंड त्रिकोणा कीर्तन नाइट. अच्युतन नायर सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, नितिन गाउंडर ऑकलैंड न्यूजीलैंड के और अश्विन कुमार अप्पा लोटो कफीजी से इसमें भाग लेने वाले हैं. ये इसी फ्राइडे 21st ऑफ अगस्त को रहेगा वैदिक सेंटर पापाटोईटोई में. टिकट्स आर ओनली $20 और अगर आप चाहें तो बातें कर सकते हैं अश्नील से 02106672 36 पर टिकट्स पर डिटेल्स के लिए, या फिर जय फ्रेश मार्ट पापाटोईटोई, यहां से भी आप अपने लिए टिकट्स जो है ये ग्रैब कर सकते हैं. साथ ही साथ आपको हम याद दिलाना चाहते हैं अबाउट खादी बियॉन्ड बॉर्डर्स, जो न्यूजीलैंड फैशन वीक में कल ज़रूर सेलिब्रेट किया जाएगा. एक बहुत ही इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी है, इंडियन फैशन कल्चर और क्रिएटिविटी को न्यूजीलैंड फैशन वीक में सेलिब्रेट किया जा रहा है. और ये इंडियन फैशन जो है न्यूजीलैंड के न्यूजीलैंड फैशन वीक रनवे के तहत खादी बियॉन्ड बॉर्डर्स इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के तहत लोगों तक पहुंचाया जाएगा, जहां पर 4 जाने माने इंडियन डिज़ाइनर्स ऑकलैंड में शोकेस करने वाले हैं इस ट्रेडिशनल हैंडस्पन हैंड वोवन फैब्रिक खादी को, जो कि रीइमेजिन किया गया है एक कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न स्टाइल में इसे प्रेजेंट करने की. सो ये एक मेजर इंटरनेशनल फैशन नेम है जिसके बारे में आपको बता दें, रजेश प्रताप सिंह इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डिज़ाइनर्स में से एक, और इन्होंने इस फैशन को शुरू करना है या फैशन शो को शुरू करना है. खादी बियॉन्ड बॉर्डर्स को ये प्रेजेंट करने वाले हैं अपने बहुत ही क्रिएटिव क्रिएशंस के साथ. और अगर आप न्यूजीलैंड फैशन वीक में भाग लेते हुए खादी बियॉन्ड बॉर्डर्स को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इसके लिए याद दिला दें, ये कल होगा 18th of August को 8:30 PM, शेड 10 क्वींस वॉर्फ 89 क्वीन स्ट्रीट ऑकलैंड CBD में. और टिकट्स अगर आपको चाहिए तो आप nzfashionweek.com/tickets/khadi ये विजिट कर सकते हैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Hey, देखो आ गए.
0: March 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
5: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए.
6: तो फिर देर किस बात की?
7: बाली बुला रहा है.
5: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
6: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
5: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
8: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
9: हेलो एवरीबॉडी.
0: 2 शहर, 1 सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
10: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजवे, ओनली ऑन हम.
11: Jackie didn't think she needed a DVS system.
12: Our home is brand new.
11: Does your new home have condensation? And can it get a bit stuffy sometimes?
12: Yeah, it does.
11: New homes are built tight. They don't breathe very well. DVS can help with that. We have innovative ventilation solutions for all types of homes, new or not so new. Say yes to DVS for a drier, more comfortable home.
13: The heart of a healthy home.
14: Blood and plasma donors are always precious, but in wintertime, with sickness about, NZ Blood needs even more donors to fill the gaps others leave. So, if you're well right now, we'd love you to step up and help us out. When you become a donor, you're giving a priceless gift to someone in need. You could help them get better and make yourself feel good. Just head to nzblood.co.nz and book in a time to donate today. Give blood. Give plasma. Save lives.
11: Before you can vote, you need to be enrolled. We're making it easy, with Electoral Commission teams popping up at events and venues across Aotearoa New Zealand, so you can enrol, check or update your details without any fuss. Find out where our teams will be at vote.nz.
4: And if you're just joining us after the break, we're talking about... Holy... $10 deals on Uber Eats! Find $10 ding-dong deals on Uber Eats. T's and C's and fees apply. Contact support if promo not applied.
15: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
16: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर लेने.
15: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी. अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
16: पर डेवलपमेंट के पैसे
15: आपको नहीं लगाने. NZPMI सब संभाल लेगा. NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
17: Right now, your team could be winning. Sprinting, pitching, kicking, sin-binning. And you need to know about it.
18: Join the Tribe!
17: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport.

0: प्रोग्राम जो स्पेशली आपके लिए लेकर आ रहे हैं साउथ ऑकलैंड ड्राइविंग लिमिटेड और एनजेड कल्चरल ट्रस्ट, इन्होंने ये पूरा प्रोग्राम तैयार किया है और यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं नन अदर देन रवितेश देव और इनके इनक्रेडिबल लाइव बैंड के साथ डिवोशनल म्यूजिक. भजन और कीर्तन दो अलग फॉर्म ऑफ डिवोशनल म्यूजिक होते हैं, टोटली डिफरेंट, लेकिन इन दोनों का एक फ्यूजन जहाँ पर आपको कंटेम्प्रेरी कॉन्सर्ट लाइक एनवायरमेंट मिले तो वो तो टोटली अलग वाइब होगा. और ऐसा ही कुछ आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिलेगा क्योंकि बहुत से टैलेंटेड वोकलिस्ट्स होंगे, लाइव म्यूजिशियंस यहाँ पर आपके लिए परफॉर्म करेंगे और साथ में सब कुछ लाइव होगा. नथिंग इज़ प्री रिकॉर्डेड एंड वहाँ पर सिर्फ प्ले किया जाएगा एज अ गिग, नहीं, एवरीथिंग विल बी परफॉर्म फॉर यू लाइव, जिसका मजा आप ले सकते हैं. हैपनिंग दिस सैटरडे एट वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो एफ पापाटोइटो. वी आर नॉट श्योर हाउ मेनी टिकट्स आर लेफ्ट, बट टिकट्स अगर आप चाहिए तो eventbrite.com, रिमेंबर eventbrite.com से ले सकते हैं ऑनलाइन, या फिर जय फ्रेश मार्ट पापाटोइटोए और वेली फ्रेश पापाटोइटोए एंड शिव प्रसाद इन सन स्केल्स्टन से आप टिकट्स जो है ग्रैब कर सकते हैं. दे ओनली $30 और जो बच्चे हैं 5 years एंड अंडर उनके लिए एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री.
1: तो इस सैटरडे को मेक श्योर यू बी एट वैदिक सेंटर ताकि आप जाकर इस भजन जेम्स का मजा जो है ये ले सके अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली मेंबर्स के साथ. और भी कई चीज़ों के बारे में बातें होंगी. खतरों के खिलाड़ी बिल्कुल नया सीजन जो है ये आया है, आपने देखा है कुछ?
0: मैंने एक एपिसोड देखा मुझे लगता है.
1: ओके, आई थिंक लास्ट वीक आई सॉ वन और टू एपिसोड्स एंड माय गॉड द वे दे हैव रेज्ड द बार इज
0: Really?
1: Serious, हाँ.
0: आपको पसंद आया मतलब?
1: हाँ, I liked it. In fact, गौरव खन्ना जो है is one of the participants this season. और वो एक और थे बिग बॉस में आए थे, अरे क्या नाम है उसका?
0: Most of the contestants who come on खतरों के खिलाड़ी वो बिग बॉस से ही आते हैं.
1: विशाल.
0: ओ विशाल, अच्छा
1: विशाल नाम,
0: विशाल सिंह,
1: हाँ वो भी है. और एक एक एपिसोड के बारे में या एक क्या बोलते हैं चैलेंज टास्क जो भी आप कहना चाहे इसके बारे में है, जहाँ पर चार लोगों के ऊपर जो है ये रबर पैलेट्स जो है ये चलाए गए थे.
0: आई थिंक आई हैव सीन अ पोस्ट इन रिगार्ड्स. करण वाही थे और गौरव खन्ना, ऋतिक धनजानी, नहीं
1: एक लड़की थी कोई,
0: नहीं आई डोंट रिमेम्बर द,
1: एक लड़की थी और ये विशाल थे.
0: ओ विशाल थे, ओके.
1: हाँ, एंड गौरव खन्ना क्योंकि उसके बाद दे टुक ऑफ देयर टी शर्ट्स एंड यू कैड वेरी वेरी क्लियरली सी कितने पेन में ये लोग थे
0: और उनको उनको बॉडी पे इंजरीज भी आई थी ना.
1: हाँ बहुत, यू नो द पैलेट मार्क्स जो है ये अभी भी दिख रहे हैं, दे स्टिल इन पेन. इन जिस तरह से इस सीजन का जो फर्स्ट आई थिंक टू एपिसोड्स मैंने देखे थे लास्ट वीक, माय गॉड It is खतरों के खिलाड़ी रियली में.
0: Right. Anyways,
1: और वो फनी सा लड़का है, क्या नाम है उसका छोटा सा?
0: हर्ष.
1: नहीं, वो
0: ओरी.
1: ओरी, हाँ ओरी.
0: फनी सा लड़का.
1: हाँ ओरी.
0: नहीं but हर्ष is also there. He's a very good comedian. बहुत कमाल के comedian है वो.
1: अच्छा मुझे नहीं पता उनके बारे में.
0: अरे उन्होंने वो फिल्म में भी काम किया था, पति नहीं कौन सी फिल्म थी वो, पति पत्नी और वो नहीं
1: पता नहीं, ढूंढ कर भी पता लगा लेंगे.
0: एक अर्जुन कपूर की फिल्म आई थी जिसमें अर्जुन कपूर, भूमि पेडनेकर और रकुल प्रीत सिंह थे.
1: अच्छा.
0: या आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द मूवी, समथिंग टू डू मेरे हस्बैंड की बीवी, आई डोंट नो व्हाट वाज द नेम ऑफ द मूवी, मुझे नहीं पता, बट उसमें उन्होंने अर्जुन कपूर के दोस्त का रोल प्ले किया था. एनीवेज काफी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें एंटरटेनमेंट की दुनिया में हो रही है. बट ऑन द अदर हैंड लेट अस टेल यू, न्यूजीलैंड में भी काफी कुछ हो रहा है. आपने सुना ना वो खबर जहां पर केमार्ट में अब जो AI ग्लासेस ये मिल रहे हैं फॉर $99, तो इसको लेकर भी कुछ बातें जो है सामने आई हैं और इस पर कुछ डिटेल्स आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे.
2: Bollywood's most wanted.
3: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ.
4: मैं लाऊं अपना A game.
2: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: with Vijay and Pooja.
1: We gotta go. Are you ready?
2: Come and take a trip with me.
3: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
4: Hum boarding call, thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu.
5: Let's go.
4: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
6: Knock, knock. It's me, Dash, helping rugby fans get ready early for game day. Get your official Adidas All Blacks supporters gear on DoorDash, and you could win an epic All Blacks watch party delivered by rugby legends. Adidas on DoorDash. Now that's a good call. T's and C's apply.
7: This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunizations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider.
8: डॉक्टर ने क्या बोला?
9: BP और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए.
8: Good thing हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता.
10: That conversation is happening in more TV homes than you think. Hi, I'm Nitesh Hira from Assured One. My job isn't to just sell policies, it is to help you understand your options and make sure your family is protected.
11: Book your free insurance review today. Call Assured One on 0800-77-HIRA. That's HIRA. Or visit assureone.co.nz. Northendale Advisory Limited Trading as Assured One is a licensed financial advice provider.
12: Rebels 30th birthday continues with $30 deals on now. That's selected kids' clothing, hydro flasks, and Nike equipment for only $30. Plus, save $30 off selected casual running and kids' shoes. $30 deals and so much more on now at Rebel Sport. See you online for T's and C's.
13: Reliance Ventilation System.
14: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
13: Moisture और ventilation का problem लगता है.
14: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
13: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
15: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
16: Hi everyone, New Zealand's 2026 general election is coming soon, and this time it's different. You now need to enroll before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup?
17: Remember, if you want to vote, you need to enroll first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
18: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फ्रॉम मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
19: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
20: What's going on?
21: डेली राउंडअप का वक्त अब हो चुका है. सबसे पहले अगर देखें तो जिस चीज़ के बारे में आज हम बातें करने जा रहे हैं, पुलिस का एक मैटर जो है ये सामने आया है. आज तड़के सुबह दे हैव एक्सिक्यूटेड मेजर ऑपरेशन, ये वेस्ट ऑकलैंड में हुआ है और कुछ ज़्यादा डिटेल्स तो अभी रिवील नहीं किए गए हैं. बस इतना पता है कि हैंडरसन में लोगों ने रिपोर्ट दी है सीइंग सेवरल आर्म्ड ऑफिसर्स, एक लो flying eagle helicopter and up to 20 police cars on Universal Drive near River Park. Abhi police ke ek pakte ne bataya ki the response was part of an ongoing operation jo aaj subah 7 baje ke waqt kiya gaya. Jaise hi kuch aur jankariyan milengi ye aapke liye hum par hum zarur lekar aayenge.
1: और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एक अपडेट जो है ये हम शेयर करेंगे. एज यू ऑल मस्ट हैव हर्ड इन द न्यूज कि केमार्ट अब मेटा ग्लासेस जो है या AI ग्लासेस जो ये सेल करने वाले हैं $99. और बिफोर इट कम्स इनटू द मार्केट कहा गया है कि मोर न्यूजीलैंडर्स आर गिविंग अप देयर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस बिकॉज जो कॉस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है. इस मामले में हमने इनफैक्ट बातें की थी, फिर रिमेंबर हमने इसके बारे में लास्ट वीक फ्राइडे को जो बातें ही की थी, वी हैड शेयर डिटेल्स अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टोरी एज वेल कि इंश्योरेंस महंगा पड़ रहा है इसलिए लोग उसे कैंसिल कर रहे हैं. बट दिस इज अ सेपरेट स्टोरी. I mixed it with something else. But on the other hand,
5: confused होकर मैं देख रहा हूँ कि भाई क्या Meta glasses बेच रहा है तो insurance give up कर रहे हैं लोग.
1: I know, but I had this story with me जो मुझे share करना था, पर मैंने गलत page open कर दिया गलती से.
5: अच्छा चलो कोई नहीं, जो है वही बता दो.
1: हाँ तो ये story जो है it's about glasses, AI glasses जो है, Meta glasses जो है, इसके बारे में. Apparently कहा गया है कि ये जो AI glasses है इसकी वजह से बहुत से लोग अपनी privacy खो रहे हैं. Because if you put it on and if you're walking it like a casual glass pehen kar aap chal rahe ho, but and you can record anyone and everyone in any situation. So there has been an increase in number of court cases jahan par secret filming in public spaces such as public pools ya changing rooms jo hai ye shamil hain. Aur is mamle mein kayi baatein jo hai ye samne aa rahi hai and people are actually saying it's quite disturbing ki is tarah ki situation ka samna jo hai ye kiya ja raha hai. According to the Ministry of Justice, 52 people were convicted of making an intimate visual recording without concern between 1st of July 2024 and 30th June 2025. This is the highest number of people jinhe convict kiya gaya tha for such a charge since the same period in 2020 and 2021. Jo finalized charges hai and convictions hai for the year 1st of July 2025 से लेकर 30th June इस साल यानी 2026 के लिए ये सितंबर महीने में रिलीज किया जाएगा. लेकिन इन 2022 मार्च महीने में हार्मफुल डिजिटल कम्युनिकेशंस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया था एन ऑफेंस टू पोस्ट इंटीमेट विजुअल रिकॉर्डिंग्स विदाउट कंसर्न. अब ये कहा जा रहा है कि जब ये इतना ईजी हो जाएगा फॉर पीपल टू एक्सेस दीज AI ग्लासेस तो लोगों के लिए ऐसी हरकतें करना जो है और ईजी हो जाएगा. And on the other hand, people who will be the victims of such situations, उनके लिए situation difficult हो जाएगा. So there is some actions being called कि कुछ strict rules जो है ये होने चाहिए because there are hundreds of silent, unaware victims क्योंकि उनको पता ही नहीं कि इनको record किया गया है. They have no idea and ऐसा हुआ है पहले भी. और ऐसे situation में ऐसे कुछ rules जो है ये implement करने चाहिए जिसके तहत ऐसे हालातों से fight करने की ज़रूरत जो है ये भी ना पड़े. But let's see what can be done because concerns are being raised, issues are being raised about this particular situation. और कब तक इस मामले में कोई भी डिटेल सामने आता है.
21: आज सुबह डेजर्ट रोड को एक बार फिर बंद करना पड़ा स्नो की वजह से. रंगीपो और वयूरो के बीच न्यूजीलैंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी का कहना है कि डेजर्ट रोड को कल रात 9 बजे के बाद बंद कर दिया गया था एंड एक आज सुबह भी एक डिटूआ जो है ये इन प्लेस था. नॉर्थ बाउंड ट्रैफिक जो है उनको अलग रास्ते से, साउथ बाउंड ट्रैफिक को अलग रास्ते से वहाँ से निकाला गया था. और मेट सर्विस ने पहले भी कहा था इट्स गोइंग टू बी अ फ्रॉस्टी स्टार्ट टू द वीक एंड इट्स अ कोल्ड स्टार्ट. यू नो टेकअप में टेम्परेचर्स प्लंच डाउन -8 डिग्रीज और -4 डिग्रीज के बीच. क्वींसटाउन वाज -4 डिग्रीज. तो कई जगहों पर बहुत ठंड आज महसूस की गई.
1: And that's the daily roundup for today. आपके लिए कुछ और भी जरूरी डिटेल्स ड्यूरिंग द प्रोग्राम हम डेफिनेटली लेकर आते रहते हैं अलग अलग शोज में. इफ देयर इज एनीथिंग यू वुड लाइक अस टू टॉक अबाउट तो मेक श्योर वो आप हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं और अपने ईमेल्स हमारे पास buzz@hamfm.com पर जरूर सेंड कर सकते हैं.
20: Let's go. Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZ

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction. Do baate.
2: हम तो दो बातें कर निकल जाते हैं, पता नहीं आप पर कितना असर करता है, लेकिन सोचे ज़रूर हो सके तो वक्त मिले कि कहाँ टिकना है, कहाँ अटकना है और कहाँ छटकना है।
3: आए, टिकना है, अटकना और छटकना है।
2: यदि पता चल जाए तो कभी भटकना नहीं पड़ेगा।
3: वेरी नाइस।
2: और दूसरी बात
3: जी,
2: मसला ये नहीं कि लोग परवाह क्यों नहीं करते, मुद्दा ये है कि आखिर हमें उम्मीद क्यों है।
3: Very true. Umeed nahi rahegi. I mean, umeed is a good thing. It's not a bad thing. It keeps you going in difficult situations. But you have to understand ki umeed lagani kisse aur kahan pe hai. Chaliye inhi baaton ke saath saath ab aap se chahenge ijazat jaane ki apna aur apno ka khayal rakhiyega. We'll see you tomorrow sharp 6 a.m. on the Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
2: Attention everyone. हम बोर्डरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
3: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
2: क्या आपकी

0: एक्सपर्ट्स अड्डा।
1: सीरियसली मुझे भी आय हाय करना पड़ेगा, लेकिन लाइन पर आ गए हैं जो हमारी आय हाय को क्वाइट कर सकते हैं। एंड दिस इज नन अदर देन राज प्रदीप सिंह जी फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, एंड इनका हम वेलकम करते हैं। गुड मॉर्निंग टू यू सर, कैसे हैं आप सर?
2: गुड मॉर्निंग कशिका जी, एंड मॉर्निंग टू योर ऑल लिसनर्स।
1: थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। एंड मुझे आप बताइएगा कि क्या कोई ऑप्शन है फॉर वर्क वीजा होल्डर्स फॉर रेजिडेंस?
2: काफ़ी वर्क वीज़ा होल्डर्स हैं अभी, क्योंकि जैसे आपको पता अभी 24 को जो बैचलर डिग्री होल्डर्स हैं या जिनके पास क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री, उनके लिए बहुत अच्छी रेजिडेंस ऑप्शंस आ रही हैं। एंड काफ़ी लोग हैं जो वर्क टू रेजिडेंस वाले ट्रांसपोर्ट सेक्टर, यू नो केयर सेक्टर एज वेल, जो हेल्थ सेक्टर है तो उसके अंदर भी काफ़ी हैं। अब काफ़ी लोग हैं कि ना तो हमारे पास क्वालिफिकेशंस हैं, ना हम किसी सेक्टर के हैं, और हमारे पास जो लाइसेंस है वो भी नहीं है। तो क्या करें, हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकती है? तो उनके लिए एक ऑप्शन है हमारे पास, वो है एक्सकवेटर, जो डिगर ऑपरेटर्स होते हैं उनके लिए। इसमें जो ग्रीन लिस्ट का ये है, इसके अंदर वर्क टू रेजिडेंस नहीं, स्टेट टू रेजिडेंस है स्टेट अवे। और जो आपका जो एक्सकवेटर है या डिगर ऑपरेटर्स हैं, इनको क्योंकि ये ऑफ रोड होता है, ये कंस्ट्रक्शन साइट पे ही ऑपरेट करता है या जहां कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, वेदर इट्स अबाउट रोडिंग और यू नो सब डिविजन या फार्मिंग में, तो इसके अंदर कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब आप पब्लिक रोड पे चलाते हो तो आपको सिर्फ क्लास का क्लास वन कार ड्राइवर फुल लाइसेंस इसके लिए चाहिए होता है। साथ में इसकी जो पे है वो सिर्फ एक्स्ट्रा है 1.15 टाइम्स ऑफ न्यूजीलैंड मेडन वेज, जो करंटली $35 है। तो इट मींस जिनका पे रेट $40.25 पर रेट है एज एक्सकवेटर ऑपरेटर विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, लेकिन उनको प्रॉपर ट्रेनिंग डेफिनेटली होनी चाहिए कि दे आर फुली ट्रेंड टू ऑपरेट एक्सकवेटर, तो वो स्टेट टू रेजिडेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। ऑफकोर्स काफी लोग सुन के हैरान भी होंगे, सोचेंगे इसमें हम कैसे करें, तो नेचुरल है 1-to-1 डिस्कशन के लिए वो लीगल एसोसिएट्स में हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दे कैन मेक अपॉइंटमेंट विद अस एंड देन वी कैन एडवाइज देम हाउ टू qualify for this residence visa, which is state to residence with the accredited employer with $40.25 per hour.
1: Wow.
2: Without a qualification.
1: Wow, right. Fantastic. Level 131 East Tamaki Road, Papa Toyota पहुंच जाए, क्योंकि एक बहुत ही सुनहरा अवसर है और जहां आपके लिए लीगल एसोसिएट्स ने ये एक नई रोड नई दिशा खोल दी है। 0927994399 इज द नंबर जिस पर आप इनसे बातें करें, एंड लीगल एसोसिएट्स .co.nz इनका वेबसाइट एड्रेस। अ बिग थैंक यू टू यू सर, एंड अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी।
2: हाँ जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू जी, बाय बाय
1: बाय।
0: माय टाइम विद कशिका,
3: आजकल चल रहा है बहुत न्यूज में, आप भी तो नहीं
4: ड्राइविंग यू होम। Drive Show with Sandy and Rusby.
5: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ।
3: ये गलत बोल दिया यार।
5: और पहनता भी नहीं है उसको।
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं, अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
5: इंटरेस्ट
6: ब्रांड हो गया
3: अभी, ब्रांड हो गया ना
5: रुस्बे के बाल लगे उस।
4: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Ginny Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
7: If you've got an injury like a sprain or strain, staying active with gentle movement that's right for you can support your recovery and help you get back to what matters sooner. Find out more at acc.co.nz/recover sooner.
8: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
9: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है, सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर लें।
8: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए, मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
9: पर डेवलपमेंट के पैसे
8: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट NZPMI.co.nz या कॉल 0800 4NZPMI।
6: Rebel's 30th birthday continues with $30 deals on now. That's selected kids' clothing, hydro flasks, and Nike equipment for only $30. Plus, save $30 off selected casual running and kids' shoes. $30 deals and so much more on now at Rebel Sport. See online for T's and C's.
10: 19 saal baad, Shivam is back. A man haunted by grief and loss, searching for a purpose in life. Aawarapan 2, starring Imran Hashmi and Disha Bhatni.
11: Maut, mera usse ek purana rishta hai. एक कर्ज है जो मुझे चुकाना है.
10: आवारापन 2 नाउ शोइंग इन सिनेमास. डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फॉर अ फिल्म. आवारापन रेटिंग टीबीसी.
12: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Enjoy a stopover in sunny Fiji on your way to epic destinations. Live your California dreams in LA or San Fran. Relax in Honolulu. Head to Dallas and experience southern hospitality at its finest. Or take a trip to Asia, Tokyo, Singapore, or Hong Kong. Fiji Airways on sale now. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
13: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा. न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी. जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा.
14: मुझे भी
13: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड. खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए.
0: Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
4: Office shout out.
1: ऑफिस शाउट आउट में आज मेरे पास, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम, आपने सिर्फ अपना नंबर भेजा है और आपने कहा है 0257 दैट. थैंक यू सो मच कशिका, एंड इट्स ग्रेट टू एंजॉय सच लवली लवली टाइम. एंड दिस इज़ गोइंग आउट टू ऑल द लिसनर्स हु आर राइट नाउ हमिंग. तो कहाँ से हम कर रहे हैं, आप रोबा ऐप के ज़रिए हम कर रहे हैं, या आप हमारे किसी और तरीके से आप अगर हम कर रहे हैं तो 5599 पे आप ज़रूर टेक्स्ट कर सकते हैं. अभी के लिए आपको मैं बता देती हूँ, इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ फैशन, सो ये न्यूजीलैंड फैशन वीक आज लॉन्च हो रहा है. एंड दिस इज़ एट शेड 10 क्वींस वॉर्फ, जो कि 89 की स्ट्रीट हॉकलैंड में लोकेटेड है. और इसका एक शोकेस होने वाला है ज़बरदस्त, जहाँ पर एक कमाल के खादी, खादी बियॉन्ड बॉर्डर्स ये होगा. और यहाँ राजेश प्रताप सिंह जो हैं, ही इज़ कमिंग टू द शो विद सम इन्फ्लुएंशियल डिज़ाइनर्स फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम इंडिया. तो अगर आप इसकी टिकट्स ख़रीदना चाहते हैं तो nzfashionweek.com/tickets/khadi पर आप जा सकते हैं और ये टिकट्स ज़रूर ख़रीद सकते हैं. इट्स गोइंग टू बी a very contemporary, experimental, and seriously a very, very cool experience.
0: Top hit of the hour. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: हॉलीवुड
1: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
2: एक बात तो है, ठंड बहुत है। स्टेट हाईवे 1 बिटवीन रंगीपो एज वेल एज वायोरो, ये रोड जो है बंद कर दी गई है। और न्यूजीलैंड ट्रांसपोर्ट ने ये इन्फॉर्म किया है, डेजर्ट रोज जो है इट हैज़ क्लोज फ्रॉम लास्ट नाइट एट 9 PM, और डिटोर जो है काफ़ी लंबा होने वाला है। हाँ, इसी की वजह से लगता है अभी थोड़े दिन पहले, मतलब वीकेंड पे क्या मज़ा आ रहा था कि लग रहा था अरे गर्मी आ गई वापस, अब तो आज ठंड दोबारा आ गई, क्योंकि आज का रात का टेम्परेचर 6 degrees तक जाने वाला है।

0: passengers, your next boarding call could take you to paradise. Listen out for your special hum boarding call for your chance to win to return a tickets to Vanuatu with Solomon Airlines.
1: Let's take a vacation.
0: And $1,000 spending money.
2: Thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
3: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
4: Eat better, live better. और मैं नोट कर रही हूँ कि एक यू नो डेविड धवन, ही हैज़ टर्न्ड 75 यस्टरडे एंड इनकी बहुत बड़ी सेलिब्रेशंस जो थी बॉलीवुड जो है इन्होंने की एंड पीपल हैव बीन रियली रियली गोइंग गागा अबाउट इट कि कौन कौन जाए कौन कौन इसमें ना जाए. लेकिन अभी के लिए आपको पता है कि इतनी सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए आई हैं जो हम कहते हैं कि भाई आप मिस आउट बिल्कुल मत कीजिए. और ऐसे में एक चीज़ और मिस आउट मत कीजिए, आने वाले शनिवार को शाम 7 बजे वैदिक सेंटर में एक कमाल का एक भजन जैम होने वाला है जहाँ पे रवितेश देव लेकर आ रहे हैं कुछ कंटेम्प्रेरी अरेंजमेंट्स विद टैलेंटेड वोकलिस्ट एंड म्यूजिशियंस. और ये लाइव कॉन्सर्ट आप मिस आउट नहीं कर सकते, विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन द एड ऑफ गिफ्ट ऑफ लाइफ फीजी और एनजेड कल्चरल ट्रस्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं. $30 की टिकट है. इवेंट ब्राइट के जरिए आप ये टिकट जाकर खरीद भी सकते हैं.
5: हम फीजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फीजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फीजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फीजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स.

0: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है। कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800-862-342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।
1: So, you've been looking at adding a modular home to your property.
2: Yeah, but nothing quite reaches my standard.
1: Well,
2: within my budget?
1: Zelo.
2: Zelo?
1: Zelo by Ashcroft Homes. A range of stylish modular homes from 1 to 4 bedrooms with 1 or 2 bathrooms, all packed with premium inclusions.
2: Price?
1: $139,000 for a fully complete 1-bedroom home and $215,000 for a 3-bedroom home.
2: Zelo. I like the sound of that.
1: Discover the Zelo difference at zelo.co.nz.
3: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
4: सो ड्रीम डायरी में आपने लिख के भेजा है ना, आप काफ़ी परेशान हो रहे हैं। अरे भाई, परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि मैं आपके ड्रीम का इंटरप्रिटेशन ज़रूर करना चाहती हूँ। आपने ड्रीम किया ऑफ डेथ, एंड दिस कैन एक्चुअली सिग्निफाई योर इंटरनल फियर कि आप कहीं मर ना जाए। बट इज अनदर वे टू सी इट और लुक एट इट। इट कुड जस्ट बी गिविंग योर सेंस दैट एक नया चैप्टर, एक नई शुरुआत आपके लिए आने वाली है। एक पुरानी चीज़ जो आपकी है वो ख़त्म होने वाली है। दैट डजेंट हैव टू बी अ बैड थिंग एट ऑल। सो बी वेरी माइंडफुल। कभी ऐसे सपने आते हैं ना, डरिए मत, घबराइए मत, मैं हूँ ना आपको बताने के लिए कि कहाँ पे कौन सा ड्रीम आपका गलत जा रहा है, ठीक जा रहा है। कभी कभी आप जब ड्रीम्स जो आपकी आती हैं आप एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन एक्नॉलेज नहीं कर पाते उनको अपने कॉन्शियस माइंड में। सो हियर वी गो।
3: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4-NZPMI.
4: So it was Saif Ali Khan's birthday as well yesterday. So here is this beautiful track.

0: you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: तो एक बात ये है कि बर्थडे तो बहुत से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हाँ, थैंक यू सो मच, आपका टेक्स्ट आया और आपने बताया कि मनीषा कोराला का भी बर्थडे था. ओह यस, हाउ कैन आई एवर फॉरगेट दिस ब्यूटीफुल मूवी जिसमें उन्होंने काम किया था. एंड शी इज़ अ रियली फैबुलस एक्ट्रेस. इन्होंने हीरा मंडी जब आई थी तब उस समय भी अपने कला का प्रदर्शन भी कर दिया था. एक बीच में एक समय था जहाँ पर ये गायब हो गई थी, लेकिन उसके बाद जब ये लौट कर आई तो क्या एक पावरफुल परफॉर्मेंस संजय लीला बंसाली के साथ, जो उनके फेवरेट डायरेक्टर हैं और ये उनकी फेवरेट एक्ट्रेस भी चुकी हैं, तो उनकी एक ऐसी फिल्म जो कि बहुत ही यादगार थी. मैं कुछ कहना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि कुमार सानू कहें जिनके ऊपर ये गाना पिक्चराइज किया गया था. वो थी बर्थडे गर्ल मनीषा कोराला.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप। वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: हुनुआ और वेटाकरे।
2: अच्छा, हुनुआ वेस्ट में।
3: किधर है हुनुआ?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: Mostly a sunny day, lekin dopahar ke baad shaam ke samay shayad badal badhte chale jayenge. It feels like 11 degrees and the highs of 12, overnight temperature of 5. Aaj ka forecast bataya ja raha hai.
0: My time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: Mid morning maza.
3: My time with Kashika.
1: तो आप कहाँ से इस समय मुझे सुन रहे हैं? मैं आपकी रिमाइंडर क्लॉक कशिका आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आप अपने लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बस इसी नोट पे कशिश फूड्स को बहुत बहुत थैंक्स कह देना चाहते हैं, जिनके सौजन्य से आपके लिए मंडे टू फ्राइडे ये 10 से 12 बजे का एक जो शो होता है माय टाइम विद कशिका आ जाता है आपके लिए. तो वही आप कौन से जॉनर्स को पसंद कर रहे हैं जो हम आपके लिए भी प्ले करते हैं, या फिर आप हम रिवाइंड जूक बॉक्स, हमारे फीजी कीर्तन संग्रह, फीजी भजन, चढ़दी कला, या फिर राहत फतेह अली खान की म्यूजिक स्टेशन की तरफ भी जा सकते हैं. जब आप रोवा पर ही हैं तो हमारे आप पॉडकास्ट को भी ध्यान से सुनना चाहे मनी मेहम, ये जो है ऑर्मिस्टन सीनियर कॉलेज के जो बॉयज़ हैं, 4 बॉयज़ एंड ईयर 13 के स्टूडेंट्स, इन्होंने कमाल कर डाला है. एक कॉन्वर्सेशन हुआ अबाउट मनी, एंटरप्रेन्योरशिप, टीनेजर्स और किस तरह से क्लासरूम से बैठे बैठे इन्होंने एक कमाल की चीज़ तैयार की है. 5599 पे आप इस पूरे बातों को ड्राइव लिख कर भेजें तो सुन सकते हैं, जहां अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड्रोस पे आपके लिए आ जाता है. एंड ऑफ कोर्स नॉट टू फॉरगेट, आपके लिए अब थोड़ी देर बाद मैं कुछ और भी लेकर आ रही हूँ, यानी कि रक्षाबंधन के मौके पे आपकी नोकझोंक, आपकी टकरार. अगले हफ्ते रक्षाबंधन है भाई, तैयार हो जाओ. वैसे कम्युनिटी में क्या खास हो रहा है आपके लिए, वैसे मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि ग्रैंड 3 कॉर्नर कीर्तन नाइट जो है 21 अगस्त के दिन वैदिक सेंटर में होने वाली, $20 की टिकट्स हैं. आप ऑकलैंड भक्ति सत्संग की टीम से इस बारे में बातचीत कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स नॉट टू फॉरगेट द न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपको इन्वाइट करना चाहती फॉर द फोर्थ कैरम नेशनल टूर जो 22nd एंड 23rd को होने वाला है.

0: non-stop Bollywood.
1: हम
0: playing Bollywood's biggest hits.
2: तो थोड़ी देर बाद मैं टेरफ अलायंस खोलने वाली इस गाने के ठीक बाद आपसे आपके भाई बहन के बारे में

0: मैं खुद इतनी ज़्यादा सेंटिमेंटल हो चुकी हूँ इस गाने को सुनने के बाद, क्योंकि मेरा भी भाई यहाँ नहीं है, ही इज़ समवेयर इन नॉर्थ ऑफ इंडिया, एंड या जब रक्षाबंधन आती है तो बस भाई को पुकारती हूँ कि हाँ भाई किसी तरह से तुम मुझे आज के दिन फ़ोन ज़रूर कर लो, वीडियो कॉल कर लो, आपके साथ कोई एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली 0800 00 हम पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपका नाम ड्रॉ में ऐड करना चाहती हूँ, और देखते हैं कि आपके भाई या बहन इस पर खड़े उतरते हैं कि नहीं उतरते, कि अगर आप भी दूर बैठे हैं अपने भाई या बहन से, क्या आपके लिए आपके भाई या बहन खड़े उतर कर आते, कभी कॉल मिस की है कि कुछ नहीं, ऐसा कुछ हुआ है ज़रूर मुझे बताइए। एंड एक बात बताऊं, आप कॉल तो करेंगे और आपको एक फ़ायदा और है, $250 ईच आप भाई बहन लेके जा सकते हैं कैश में, और ये ड्रॉ होगा 28th of August के दिन। ऑफकोर्स आई एम वेटिंग फॉर द कॉल जहाँ पे आप मुझे कॉल करेंगे, बट मीनवाइल जितने लोग, अगर थोड़ी सी शर्म आ रही है आपको तो कोई बात नहीं, हमारे फेसबुक के पेज पर भी आप पहुँच सकते हैं, और वहाँ पर जाकर हमारे फेसबुक के पेज पर एक पेज है, एक पोस्ट है जिसके ज़रिए आप अपनी फ़ोटो लोड कर सकते हैं, एनी मेमोरी ऑफ ईच अदर यू हैव, डेफिनेटली आप अपने एक दो तीन सेंटेंसेस पे उन मेमोरीज को अटैच कर दीजिए और उन्हें साथ में टैग कर दीजिएगा, दैट्स अबाउट इट। ये ड्रॉ जो है ये भी 28th को होने वाला है, और $300 कैश जीतने का सुनहरा मौका है। मैं चाहती हूँ इस मौके को बिल्कुल मत गवाइए, कोशिश कीजिए, आप मुझे कॉल कीजिए, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू टॉक टू एनी वन ऑफ यू हु इज राइट नाउ लिसनिंग। आई थिंक आई हैव गॉट माय फर्स्ट कॉलर एंड हम गुड मॉर्निंग। ओह ओके, क्यों करते हो यार ऐसे, मत किया करो प्लीज। ओके, एनी अदर पर्सन हु वांट्स टू कॉल, और आपने कॉल की और शायद मैंने उठाया नहीं, बाय दैट टाइम आई वाज टॉकिंग टू यू, सो सॉरी फॉर दैट, बट अगर आप कॉल करना चाहें तो अभी डेफिनेटली मुझे कॉल कर सकते हैं। आई लव टू हियर फ्रॉम यू कि आपके भाई से या बहन से आप दूर हैं और आपको लगता है कि हाँ कभी वो आपके कॉल आपकी मिस करी है या कोई ऐसी कोई बात हुई है, तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं, मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। तो हुआ क्या था कि आई वॉज़ एक्सपेक्टिंग माई बेबी एंड शी वॉज़ बॉर्न ऑन रक्षाबंधन डे, एंड उस समय यू नो हमारे में होता है ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश में दैट हम झूठे मुँह राखी नहीं बांधते, तो मुझे तो पेन स्टार्ट हो गए थे एंड आई वॉज़ वेटिंग कि मेरा भाई आएगा तब मैं राखी बांध के फिर कुछ खाऊँ, क्योंकि पेन्स तो शुरू हो चुके थे। भाई पहुँचा नहीं, अब भाई फ़ोन पर था और कह रहा था कि तू खा ले, मैं कह नहीं भाई मैं नहीं खाऊंगी, तेरे को राखी बांधूंगी तभी खाऊंगी। तो आई वॉज़ हंग्री टिल अराउंड 12 o'clock इन दी आफ्टरनून, वो मालूम नहीं कितने फाइन्स उसने दिए होंगे, मगर वो फाइन तो पंजाब में था कहीं, उसकी पोस्टिंग थी, तो वो ड्राइव करता करता करता करता जब तक पहुँचा 12 बज गए थे, एंड फाइनली व्हेन ही टाइड द राखी तब जाके मैंने कुछ खाया पिया, बट मैं उस कंडीशन में अपने भाई का इंतज़ार कर रही थी और वो बहुत रोया कि तूने खाली पेट क्यों रही, तेरे को ऐसे में खाली पेट नहीं रहना था। अरे पेन्स थे भाई, क्या करती है।
1: मार्च 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
2: रुजबे टिकट्स बुक हो गए
1: तो फिर देर किस बात की, बाली बुला रहा
2: सनसेट बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
1: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
2: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी,
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी,
1: दो शहर एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
1: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली and Bangkok getaway with Sandy and Rusbe, only on Hum.
6: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
7: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया।
6: नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
1: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
8: कॉफी द यूजुअल,
9: हाउ अबाउट द अनयूजुअल,
10: कांट वेट फॉर कॉफी, देन डोंट Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
11: Go क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए। It's dream season at Beds R Us. Save up to 50% on selected sleepyhead beds like the Swiss Tech Precision. Half price, queen size, now 4299. Check out these dream deals and more at Beds R Us Manukau and Kukekwe, where dreams begin.
12: Elite Bathroomware help you create a bathroom you'll love.
13: With a huge range of vanities, tapware, showers and baths, Elite Bathroomware makes it easy to compare, choose and customise.
12: The team's there to help with plenty of options to suit your bathroom space, your style and your budget.
13: For quality that fits the way you live, browse online or visit the spectacular Allens Road East Tamaki showroom. It's worth the visit.
12: Elite Bathroomware.
13: A reflection of you.
14: When life becomes overwhelming, you don't have to face it alone. For over 28 years, Asian Family Services has supported Asian communities across New Zealand, offering mental health, addiction, gambling and social support by professionals who understand your language and culture. Now launching Reach In, Reach Out, a national campaign to encourage open conversations about mental health, because a simple conversation can make a real difference. Call Asian Helpline 0800 862 342 or visit asianfamilieservices.nz for free and confidential mental health support.
2: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six word story.
0: हाँ तो भाई, मेरी आज की सिक्स वर्ड्स थोड़ी थोड़ी इमोशनल है, क्योंकि आप, मुझे लगता है कई लोग इमोशनली कैरिड अवे हो गए, एंड सॉरी आपको मैंने थोड़ा रुला दिया इस गाने के बाद, एंड यू कुड नॉट कम ऑन द कॉल एंड यू डिसकनेक्टेड, बट दैट्स अंडरस्टैंडेबल। ऐसा होता है कि जब आप भाई या बहन से दूर होते हैं और जब इस तरह के गाने बजते हैं ना, तो बहुत बहुत दुख होता है। बट लेट्स टेक जस्ट अनदर कॉलर एंड सी इफ दे आर हैप्पी। हेलो, हम गुड मॉर्निंग, किन से बात हो रही है मेरी?
15: हाय, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम परिचय है।
0: सॉरी, परिचय,
15: करेक्ट।
0: हाँ जी, बोलिए परिचय।
15: आप कैसे हैं? How are you today?
0: I am good. आप बताइए, आप कैसे हैं?
15: All good. आपका वो गाना सुन के seriously आंखों में आंसू आ गई।
0: Oh, I'm so sorry. I shouldn't have done this. But
15: नहीं, पता क्या, ऐसा होता है जब आप अपनी बहन से दूर होते हो, तो हो जाता है ऐसा। मेरी बहन इंडिया में है एंड मैं यहाँ पे हूँ। मुझे आपको टॉपिक नहीं पता ज्यादा, बट देन यस, व्हेन आई हर्ड दिस सॉन्ग और आपकी बातें सुनी तो लगा जरूर कॉल करना चाहिए। तो मतलब शी इज एवरीथिंग फॉर मी, बहन, मेरी माँ, मेरा दोस्त।
0: ओह माय गॉड, यू आर वेरी इमोशनल। आई एम सॉरी, आई शुडंट हैव परिचय।
15: नहीं, आपको पता है मैं अपनी बहन को प्यार से, उसका नाम पल्लवी है।
0: अच्छा।
15: और मैं उसको प्यार से बोलता हूँ पागल लवी, क्योंकि वो सच्ची में पागल है। मेरे ख्याल से ऐसा होता है, जैसे आपने भी बताया था ना, बहनें अपने भाइयों के लिए होती ऐसी है, पागल ही होती है।
0: भाई, सही बात है।
15: भाई शायद ना हो। आपको पता है वो मेरे लिए डॉक्टर भी है। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा डॉक्टर भी है वो। मेरा बेटा, मेरी बेटी पैदा हुई, मैं उसको कॉल करता हूँ, दीदी मैं क्या करूँ, मेरा बेटे को 104 बुखार है, मैं क्या करूँ? तो देन शी विल गिव यू एवरीथिंग कि भैया ये ऐसे कर। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग ऑन प्लंकेट, पता है मैं उसको कॉल करता हूँ और उससे पूछता हूँ।
0: इट हैपेंस। ओह हाउ स्वीट। नहीं, दिस रियली मींस अ लॉट। जो आपकी बहन है, आपकी माँ बन जाती है ना,
15: डॉक्टर, माँ, भाई, और पता है भाई भी, जैसे बड़ा भाई होता है ना, आपको दुनिया में किसी से लड़ाई हो जाए तो आप भाई को आगे कर देते हो, भैया संभालना, एंड शी इज लाइक दिस। वो बहन होके उसने भाई का रिश्ता निभाया।
0: अरे वाओ, क्या बात है। ओ माय गॉड, अभी तो मुझे भी इमोशनल करे जा रहे हो आप। बस करो यार।
15: बचपन में कहीं मेरी लड़ाई हो जाती थी ना किसी से, तो शी वाज द वन। हाँ, मेरे भैया को कैसे किसी ने कुछ कहा।
0: हो जाता है। बट थैंक यू सो मच परिचय, आपने कॉल किया, इट रियली मेड माय डे, जहाँ पे मैंने एक बहन के लिए इतना खूबसूरत प्यार जो है आपके अंदर से निकला है। थैंक यू सो मच परिचय, मैंने आपका नाम ड्रॉ में भी ऐड कर दिया है। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस,
15: टेक केयर,
0: यू टू, बाय।
2: Top hit of the hour. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Kashika.
1: Wow.
2: How?
1: Angot.
3: वैसे ओवर द वीकेंड मैं क्वीन स्ट्रीट पर थी एंड आई लव्ड द वाइब्स ऑफ क्वीन स्ट्रीट. एक चीज़ जो मैंने आज पढ़ी है सुनी है, ऑकलैंड विल बी एबल टू सी दिस अगेन. और ये क्वीन स्ट्रीट की स्काईलाइन जो थी, जो एक यू नो छुपी हुई थी बाय वन ऑफ द टावर्स, लुक्स लाइक दैट वो वापस आ रही है. अगर आप नोट करते हैं तो हिस्टोरिक सेंट जेम्स थिएटर एक ऑर्नेट पीस था सिटी का. Had emerged as an ornate piece, I can say that. Originally, St. James जो थे डिज़ाइन किए गए थे on 5th of July 1928, but 1953 तक ऑकलैंड प्रिपेयर हो गया था फॉर टू वेलकम द न्यूली क्राउन क्वीन एलिजाबेथ II एंड द ड्यूक ऑफ एडिनबरा इन द सिटी. और ये थिएटर एक मॉडर्न मेकओवर पा चुका था. उसके बाद जो यहाँ पर एक अमेजिंग सा यू नो व्हेन शी हैड कम हियर, बहुत अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स यहाँ पर आई. इट वॉज वन ऑफ द कूल थिंग्स इन 50s एंड लोग कहते थे ओ माई गॉड दिस इज समथिंग विच वी शुड नॉट बी मिसिंग आउट. तो सिविक थिएटर, ऑकलैंड टाउन हॉल, ये फेमिलियर फीचर्स हैं हमारी खूबसूरती के यहाँ पर. लेकिन ये टावर जो है विजिबल होगा फ्रॉम क्वीन स्ट्रीट अंटिल 1st of September. जाइएगा ज़रूर और देखिएगा, क्योंकि ये एक अमेजिंग फ्रंटेज है ऑफ क्वीन स्ट्रीट. और इसे देखने का वो सुनहरा मौका आप बिल्कुल मत खोइएगा. सो डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई एंड सी दैट.
4: वी गॉट टू गो. आर यू रेडी? कम एंड टेक अ ट्रिप विद मी. योर अटेंशन प्लीज. वी आर नाउ इनवाइटिंग ऑल पैसेंजर्स बुक्ड ऑन फ्लाइट हम 104.2 टू द ट्रॉपिकल पैराडाइज ऑफ वनुआटू विद सॉलोमन एयरलाइंस टू बिगिन बोर्डिंग इमीडिएटली. Please have your phone ready, your Rova app open and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
5: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
6: Let's go.
5: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
7: The new Macca's Barbecue Hash Stack Burger.
8: Not new, Greg's made it before.
9: Yeah, Noah's made it.
10: Sam's made it too.
7: Oh, new for us, but you've been adding the hash brown for ages. Macca's Barbecue Hash Stack. T's and C's apply.
11: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले. जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.nz.
12: डॉक्टर ने क्या बोला?
13: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए.
12: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता.
14: दैट कन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन मोर टीवी होम्स देन यू थिंक. हाय, आई एम नितेश हीरा फ्रॉम अ शोर वन. माय जॉब इजंट टू जस्ट सेल पॉलिसीज, इट इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस एंड मेक श्योर योर फैमिली इज प्रोटेक्टेड.
15: बुक योर फ्री इंश्योरेंस रिव्यू टुडे. कॉल अ श्योर वन ऑन 0800-77-HEERA. दैट्स HIRA. और विजिट ashurevan.co.nz. Northernville Advisory Limited, ट्रेडिंग एज अ श्योर वन, इज अ लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइडर.
16: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live.

0: कभी कभी हमारे कुछ ऐसे कपड़े होते हैं ना जो लगता है कि अब फटते नहीं है, लेकिन इतने पुराने हो गए, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं आप. तो यू नो आई वॉज टॉकिंग टू समबडी ओवर द वीकेंड एंड इन्होंने कहा कि इन्होंने इनकी ओवरसाइज टी शर्ट थी, लेकिन उन्हें उससे अपने आप को जुदा नहीं करना था. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे अपने बच्चे का यू नो एक रॉम्पर टाइप होता है, उस टी शर्ट को उन्होंने रॉम्पर टाइप बना दिया जहाँ पे बच्चे के हाथ हैं और बच्चे के पैर निकल कर आ रहे, तो उन्होंने उसको बीच में से स्टिच कर दिया. सो नाउ द चाइल्ड इज़ वेयरिंग दैट अमेजिंग अमेजिंग थिंग. लेकिन अगर आप भी कुछ अमेजिंग अमेजिंग करना चाहते हैं तो बस अभी थोड़ी देर पहले ही हम बोर्डिंग का आपने अनाउंसमेंट सुन ही लिया होगा, जहाँ हम आपको भेजना चाहते हैं टू वनुआटू अप ट्रिप के लिए. लेकिन इसके लिए आपने आई होप रोवा ऐप के ज़रिए आप यू नो बोर्ड नाउ कर चुके हैं और अपना लिंक जो है जहाँ पर आपको सबमिशन करना है सबमिट कर चुके हैं. 5599 पे टेक्स्ट कीजिए अगर आप ये लिंक नहीं पा पा रहे हैं, और BC लिखकर भेजिएगा तो आपको डेफिनेटली ये लिंक मिल जाएगा. अब एक थैंक यू टू सॉलोमन एयरलाइंस जो फ्लाई करते हैं 4 बार हफ्ते में नॉन स्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू वनुआटू. और विजिट कीजिए flysolomons.com के ज़रिए, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं. चलिए इतना कुछ तो आपको बता दिया वैसे वनुआटू के बारे में. अगर आप जानना चाहते हैं ना तो इट्स एज ब्यूटिफुल एज फिजी, इट कम्स आफ्टर फिजी वेयर इट इज़ अ डेस्टिनेशन विच यू कांट अफोर्ड टू मिस आउट. सो जल्दी कीजिए, ये टाइम बहुत शॉर्ट है.
1: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: ब्रॉट टू यू बाय 0800 रचना। इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
1: तो भाई आज का दिन तो यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन अभी के लिए चलती हूँ, कल सुबह 10 बजे मुलाकात करती हूँ। तो क्या कहूंगी मैं, कीजिए स्वीकार काशिका का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है सोमवार, मेरी मुलाकात आपसे होगी दिन कहलाएगा मंगलवार। आने वाला हफ्ता आपके लिए और भी दमदार, जोरदार और शानदार बना रहे, यही मेरी मनोकामना है। और इसी के साथ साथ मैं अपने रास्ते पर चलती हूँ, क्योंकि आपके लिए रास्ता नापने के लिए आ रहे हैं अनदर दिन। अभी लुक आफ्टर योरसेल्फ, टेक केयर, दिस इज काशिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम द हम स्टूडियोज़।

0: Attention everyone, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
0: क्या आपकी

0: सिबलिंग को ले आइए हम बोर्डरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Malabar Golden Diamonds, Botany Town Center.
3: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
4: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया।
3: नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
5: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
6: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल, 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री, परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए या बस सीधा टप से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस, ऑलवेज देसी। अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड। ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन, कशिश नेचुरल योगर्ट।
7: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
8: Indelible Homes, your building expert.
9: डॉक्टर ने क्या बोला?
10: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए।
9: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता।
11: That conversation is happening in more TV homes than you think. Hi, I'm Nitesh Hira from Assured One. My job isn't to just sell policies, it is to help you understand your options and make sure your family is protected.
12: Book your free insurance review today. Call Assured One on 0800-77-HIRA. That's HIRA. Or visit assureone.co.nz. North Indian Advisory Limited, trading as Assured One, is a licensed financial advice provider.
13: It's business month at Warehouse Stationery with big deals on business essentials like 20% off lightweight whiteboards and pin boards, and buy one get one half price on WS whiteboard markers. Don't miss big deals for your business at Warehouse Stationery. Conditions apply.
14: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई-वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे तमाकि तुरुकी ऑल टुगेदर ऑकलैंड।
1: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
15: Good afternoon, I'm Glenn Stewart with the latest at midday. Mystery surrounds the case of a body found in a burning car in Waikato. Firefighters made the discovery on a road in Waitomo at around 6 a.m. yesterday morning. Formal identification is now underway, with a post-mortem expected to take place tomorrow. The Prime Minister insists that Chris Penk was working alone when he challenged his leadership of the National Party. Some commentators believe Education Minister Erica Stanford was also involved, but speaking to RNZ, Luxon says he has spoken to her privately.
16: I know I have her full support, always have, and so for me it's not a question. But I just say to you, Chris Penk was the only person to challenge for the leadership. He was working for himself.
15: Consumer spending seems to have risen in July. Electronic card transactions for the retail industries saw a 1.3% bump compared to June to $90 million. And a message from one of the groups busy rehoming greyhounds to be patient. Greyhounds as Pets has had well over 100